0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: शुरू करो या इन्वेस्टिंग सा धड़ा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना

नहीं, आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शल वॉटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो माहौल है वो बहुत ही शायराना होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बातें करने वाले हैं निदा फाजली साहब की। अब उनका नाम लिया है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं उनकी लिखी एक शायरी से। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।

जगजीत साहब की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनी। सरफरोश है फिल्म का नाम जिससे आपने इस गजल को सुना, और जो लोग भी 90s के दौर से हैं उन्हें इस गजल से बेहद मोहब्बत होगी। जी हाँ, ये गजल इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये गजल सुनाई देती है, कानों में पड़ती है, मैं सब भूल जाती हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं निदा फाजली साहब की। मशहूर शायर, भारत के अजीम शायरों में से एक माने जाते हैं निदा फाजली। उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए कई यादगार गीत भी लिखे हैं। निदा फाजली की पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुई थी और बचपन में उन्हें मुक्तदा हसन नाम दिया गया था। निदा फाजली उनका तकिया कलाम यानी कि पेन नेम है, जिसका एक खास मतलब होता है। जी हाँ, क्या मतलब होता है चलिए बता देती हूँ। निदा यानी कि आवाज, और फाजली यानी कि कश्मीर में फाजिला नाम की एक जगह है, और निदा साहब के जो पूर्वज हैं वो इसी इलाके से थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम निदा फाजली इसी जगह से जोड़ कर रखा। उनका लेखन उनके नाम और व्यक्तित्व के अनुरूप ही था। वो समाज की आवाज थे और दिलों की भी।

0: अगर निदा फाजली ना होते तो शायद ये गाना भी ना होता। जी हाँ, ये गाना है चाहत फिल्म से। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक ने इस गाने को आवाज दी है। चाहत फिल्म का ये गाना है और इसे संगीत दिया है अनु मलिक ने। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम लेने वाले हैं, उसके बाद कुछ और बातें निदा फाजली के बारे में।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आज हम बातें कर रहे हैं निदा फाजली साहब की। दोस्तों, निदा फाजली साहब को साहित्य और सिनेमा में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। 1998 में उन्हें पोएट्री कलेक्शन खोया हुआ सा कुछ के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उर्दू में, और 2003 में स्टार स्क्रीन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। बेस्ट लिरिसिस्ट के तौर पर उनका सिलेक्शन हुआ। फिल्म सुर के गीतों के लिए 2013 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। निदा फाजली एक बेहतरीन शायर और अजीम शख्सियत थे जिन्हें मोहब्बत थी अपने मुल्क से। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जब उनके माता पिता ने मुल्क छोड़ा तो उन्हें भी कहा गया कि चलो हमारे साथ, लेकिन वो नहीं गए। उन्हें अपने देश से हमेशा हमेशा मोहब्बत रही और ये उनकी शायरी से भी नजर आता है। निदा फाजली हमेशा सद्भावना और भाईचारे को सबसे ऊपर माना करते थे। उनका एक शेर भी है, घर से मस्जिद है बहुत दूर तो चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक और शेर उनका ऐसा ही, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए।

दोस्तों, ये गाना आपने सुना आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से भूपिंदर की आवाज में, और इसका संगीत दिया था खयाम साहब ने और लिखा है निदा फाजली ने। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाला प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, 2:30 पर लेकर आऊंगी आपके लिए संगीत.com। तो फिलहाल आप उर्दू में खबरें सुन लीजिए, उसके बाद समाचार आएंगे। सब कुछ सुनने के बाद फिर मुझे सुनिएगा, ठीक है।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरात से निपटने की खातिर आपदोशिकन जंगी जहाज आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने मुलाकात करने के आईएनडीआईए ब्लॉक की दरखास्त पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर भारतीय शहरी के लिए खुले हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया ने आज मुंबई में कम गहरे समंदर के तीसरे आपदोशिकन जंगी जहाज आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इसे कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएन ने तामीर किया है। मुल्क में ही तैयार किए गए इस बहरी जंगी जहाज को शामिल किया जाना साहिली और कम गहराई वाले समंदर में आपदोजों के खतरात का पता लगाने और इसकी रोकथाम के लिए भारतीय बहरिया की सलाहियत को मुस्तहकम बनाने की समत एक अहम कदम है। इसे बाजाब्ता तौर पर पानी में उतारने की तकरीब की सदारत बहरिया की मगरबी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस एडमिरल ने कहा कि इस जंगी जहाज में 80% से ज्यादा साजो सामान अंदरूनी मुल्क तैयार किया गया है। इससे भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत, तकनीकी पेशरफ्त और कौमी अज़्म की अक्कासी होती है। बहरिया की तौसी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि 2026 में 10 बहरी जहाज बेड़े में शामिल किए गए हैं और मजीद 8 जंगी जहाजों को जल्द शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बहरी जहाज का नाम मैंगरोल पर रखा गया है, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक साहिली कस्बा और माहीगीरी का एक बड़ा मरकज है। नए बहरी जहाज का डिजाइन मौजूदा बहरी सिक्योरिटी के चैलेंजों की मुनासिबत से तैयार किया गया है। आईएनएस मंगरोल जदीद तर्ज के हथियारों और सेंसर से आरास्ता है। इनमें हल्के वजन के टोरपेडोज और अंदरूनी मुल्क तैयार किया गया आपदोशिकन रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और किसी भी आम शहरी या मुंतखब इदारे के मिंबर की किसी भी दरखास्त का खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय शहरी को अदालत से रुजू करने का हक हासिल है और अदालत उनकी तशवीश की समाअत करेगी और कानून के तहत जो कुछ भी मुनासिब है राहत फराहम करेगी। नई दिल्ली में कौमी इंसानी हकूक कमीशन के 33वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आईन में हर शहरी से अजमत, वकार, बराबरी, आजादी और इंसाफ समेत वसी वादे किए गए हैं। मुलाकात के लिए

0: INDIA ब्लॉक के मुतालबे का तस्करा करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल एक मुरासला मौसूल हुआ था जिसमें मिलने का वक्त मांगा गया था और उन्होंने कल रात इसका जवाब भेज दिया और उनसे मिलने से कासिर रहने की वजह भी बताई।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक अपोजिशन के एहतजाजी मार्च के तनाजुर में दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात से नई दिल्ली में आज 6 मेट्रो स्टेशनों पर दाखिल होने और बाहर निकलने के दरवाजे शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। इनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और बाराखंबा रोड स्टेशन शामिल हैं। सभी मुतालिका मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अमन कानून की सूरत हाल के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मिंटू रोड, मंडी हाउस, गुरु नानक चौक और लोधी रोड फ्लाईओवर समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के मुतासिर रहने का इम्कान है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहम मुंसलिक दुनिया में बैन अक्वामी इश्तराक महज एक सिफारती मुतबादिल नहीं बल्कि ये दुनिया में अमन, सलामती और खुशहाली की एक कलीदी जरूरत है। आज नई दिल्ली में 66वें नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आलमी इश्तराक मुश्तरक मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज उन्हें इज्तमाही इकदाम में बदलने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और दहशतगर्दी जैसे आलमी मसाइल का तकाजा है कि इज्तमाही तौर पर कार्रवाई की जाए। नायब सद ने इस बात को उजागर किया कि वसुधैव कुटुम्बकम सिर्फ भारत का नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में कुदरती आफत या सानहा पेश आने की सूरत में भारत मदद की पेशकश करने वाले अव्वलीन मुल्कों में आगे रहा है। नायब सद ने कहा कि भारत दूसरों पर गलबा हासिल करने या हुक्म चलाने के लिए नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की खातिर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है कि कोई भी मुल्क भारत पर हुक्म न चलाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और कुर्बानी लोगों को हमेशा तहरीक देती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ख्यालात और नजरियात तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अज्म को नई ताकत फराहम करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों से सरकार ने असलाह से लेकर तकनीक, साजो सामान और तरबियत तक सभी शोबों में खुद किफालत हासिल करने और उन्हें जदीद तर्ज पर ढालने पर तवज्जो मरकूज की है। आज नई दिल्ली में भारतीय फौज और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दिफाई साजो सामान का बड़ा हिस्सा मुल्की वसायल से तैयार करता है।
2: हमारे सैनिकों का वेलफेयर हमारे लिए कोई पेरिफेरल इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। और जब हम अपने सैनिकों को अच्छा भोजन, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सुविधाएं देते हैं तो मैं मानता हूं हम एक तरह से उनके मनोबल को मजबूत करते हैं। और एक मजबूत मनोबल वाला सैनिक ही किसी भी चुनौती का बेधड़क सामना कर सकता है।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वफाकी हुकूमत के जरिए इमरजेंसी नाफिज करने और जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरबराही वाली सूबाई हुकूमत को मुअत्तल किए जाने के बाद तशद्दुद में इजाफा हो गया है। कई इलाकों में पुलिस की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी की खबरें हैं। कल सूबे में वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज फूट पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद की जानिब पीटीआई का मनसूबाबंद मार्च में भी रखना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने सवाबी जिले में पीटीआई के 59 कारकुनान को जबकि खैबर जिले में 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में यह भी कहा गया है कि साबिक वजीर आला सुहेल आफरीदी और पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है। साबिक वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि उन्हें डेरा इस्माइल खां में घर में कैद करके रखा गया है। अमेरिका की सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमलों को रोकने से इत्तेफाक किया है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई। कल रात जनाब ट्रंप की एक मुख्तसर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि जंग बंदी फौरी तौर पर रोक कर दी गई है। अलबत्ता रूस ने इस सिलसिले में कोई फौरी रायजनी नहीं की है।

और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरा से निपटने की खातिर आबदोशिकन जंगी जहाज INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्ण ने कहा है कि आलमी इश्तराक मुश्तरका मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज इन्हें इज्तिमाई इकदामात में बदलने पर मबनी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन ने तवानाई के ठिकानों पर हमले न करने से इत्तेफाक कर लिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
5: स्मैच द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैच द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
6: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
8: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। करें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
7: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहाँ आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लांबो डगलो मुठो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती। अरे लांबो डगलो मुठो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती। अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी खेल सभी लो गुजराती। अरे तन छोटू पर मन मोटू, अरे तन छोटू पर मन मोटू छे खमीर बनती जाती। अरे भले लाग तो घोड़ो।

मित्रों, बैद्यनाथ शक्तिपीठ हिंदू धर्मनु एक अत्यंत पवित्र अने अनोखू तीर्थस्थान छे। आ स्थान भगवान शिवना 12 ज्योतिर्लिंगोमानो एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग अने साथे साथे माता सतीना शक्तिपीठ साथे जोड़ायेली धार्मिक मान्यताओ पण धरावे छे। वैद्यनाथ

दोस्तों गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आज आ शक्तिपीठनी दिव्य यात्रा में मारी साथे जे जे श्रोता मित्र जोड़ाया जेमने मने फोन कर्या गीतोनी फरमाइश आपी मारा प्रश्नों उत्तर आप्यो एमना नाम आ प्रमाणे छे दिलीप भाई जोशी मलाड थी रूपल बेन नागड़ा पवई थी अरुण भाई बोरीवली थी अपना एक नॉन गुजराती लिस्नर्स छे शंकर भाई हंसाबेन सेंटाक्रूज थी भरत भाई खोना दादर थी विभाबेन महेश्वरी डोंबीवली थी जयेश भाई कांदीवली थी सुमतीबेन थाने थी उषाबेन खोना दादर थी भावनाबेन प्रजापति दाणू थी निलेश भाई दर्जी दहीसर थी अने स्मिताबेन पुणे थी आ दरेक श्रोता मित्रों खूब खूब आभार मित्रों हवे मारी आ जे स्टूडियो नी घड़ियाल छे ने ई मने कार्यक्रम समाप्ति नो संकेत करी रही छे हाँ पर आपणे फरी मळीशुं नवा विषय साथे अने नवा विचारों साथे ए वचन साथे बराबर चार वागे आप सांभळी शकशो अंग्रेजी में समाचार तो आओ समाचार नी प्रतीक्षा करिए।

0: सेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वारफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में बुधवार तक चलने वाले ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनैतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उनके प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस अवसर पर श्री सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानवाधिकारों की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देशभर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल हैं। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Indian Navy commissioned INS Mangrol, the third anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard Limited in Kochi at the Naval Dockyard in Mumbai today. The induction of the indigenous warship marks an important step towards strengthening the Navy's ability to detect and counter submarine threats in coastal and shallow waters. The commissioning ceremony was presided over by Vice Admiral Sanjay

0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप इस वक्त। चलिए आपको एफएम गोल्ड पर जो हमारे बाकी के प्रोग्राम्स हैं, अब इसके बाद आप क्या सुन पाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। चार बजकर 20 मिनट पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज इंग्लिश और रोजगार समाचार हिंदी में आप सुन पाएंगे, और 4:30 का वक्त रहता है परिक्रमा कार्यक्रम का। परिक्रमा कार्यक्रम हिंदी समाचार प्रभाग की प्रस्तुति है, और इसमें आप देश विदेश की खबरें, मेट्रो सिटीज की जानकारी, खेल के मैदान से कुछ खबरें आप तक पहुंचेंगी, व्यापार जगत की उठा पटक, क्या कुछ चल रहा है वहां की गतिविधियां आप तक पहुंचेंगी, और कुछ खास व्यक्तित्व जिनका आज जन्मदिन है या फिर उनकी पुण्यतिथि है उसके बारे में बातें। कार्यक्रम परिक्रमा 4:30।

5:10 पर आपका पसंदीदा गाते गुनगुनाते सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ ओल्ड क्लासिकल क्लासिक नंबर्स होंगे 80s और 90s के, तो उन गानों का जरूर आनंद उठाइएगा। 5:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा, हेलो फार्मर्स, किसानों के लिए ये प्रोग्राम है, सुनना बिल्कुल मत भूलेगा। और विशेषज्ञों से लीजिएगा खास जानकारी कृषि के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारियां होंगी किसान भाइयों के लिए। मार्केट मंत्रा का समय 6:30, मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको बिल्कुल सटीक तौर पर बताया जाएगा। 7:10 पर स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा। आज 8:10 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। रूपा धवन आपके साथ रहेंगी इस कार्यक्रम में। और स्पॉटलाइट का समय रहेगा 9:15।

रात 10:30 पर हर सिंगार ये कार्यक्रम सुनेगा। अब अर्पणा गांधी होंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ। ग्यारह बजकर 10 पर रात मार्केट मंत्रा रिपीट ब्रॉडकास्ट होगा, जरूर सुनिएगा। और गीत मेरे मन में आपका पसंदीदा 11:40 पर।

0: igrua.gov.in। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी और सहायक अभियंता का एक एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, तैनाती का स्थान, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.hindiviswa.org। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अनुसंधान विभाग में अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग तथा अन्य विभागों में आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए देख सकते हैं वेबसाइट home.iitd.ac.in। मंत्रिमंडल सचिवालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी वेतन स्तर 7 के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है और इसके लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 21 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं वेबसाइट cabsec.gov.in। CETF बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल्स में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कनिष्ठ अधिकारी JCO 4 पद, सिपाही सामान्य ड्यूटी 61 पद, सिपाही क्लर्क 2 पद, सिपाही रसोईया 1 पद, सिपाही हाउसकीपर 1 पद, सिपाही धोबी 1 पद, सिपाही ड्रेसर 2 पद, सिपाही दर्जी 1 पद और सिपाही स्टूअर्ड 1 पद। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक विभाग सहायक आयुक्त जहाज रानी के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। चयन के लिए आवश्यक नियम और शर्तों संबंधी विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं 10 से 16 अक्टूबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र के अंक में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में महाप्रबंधक भूमि अधिग्रहण एवं संपदा प्रबंधन का एक पद रिक्त है और पदों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.nhai.gov.in। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक निदेशक, सहायक वन संरक्षक, निरीक्षक, आशुलिपिक ग्रेड 1, आशुलिपिक ग्रेड 3, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: नमस्कार श्रोताओं, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए धैर्य, निरंतर प्रयास और अपने इरादे पर टिके रहने का हौसला। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ समाचार प्रभाग के कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
1: हेलो वैष्णवी एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। यस, यू राइटली सेड, दिस फेस्टिवल ऑफ नवरात्र ऑनर्स गॉडेस दुर्गा एंड हर वेरियस मैनिफेस्टेशंस रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ, करेज, विजडम एंड कॉस्मिक एनर्जी। हर वर्शिप टीचर्स डिविटीज द पावर ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, फोकस एंड परसिवियरेंस। It inspires seekers not to give up during hardships and to understand that meaningful growth requires time and steadfast commitment. Of course, praying with to Brahmacharini God or any other form of God of Durga, it helps us calm our mind, it builds our inner strength and cultivates self-control and in the spiritual journey of life, I would say.
0: Ji.
1: And Vaishnavi, I would like to add to it that what a beautiful morning it was today. Delhi NCR woke up to a heavy rain, thunderstorm and followed by a lovely weather in the city this morning. Enjoy the weather, friends, but yes, be alert of the traffic advisories in the central Delhi. Before venturing out, we will certainly keep you updated about what's going on latest in the city and nearby. So stay tuned to Akashvani. Shall we start with what's making news at this hour of the day, Vaishnavi?
0: बिल्कुल। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया।
1: Chief Justice of India, Justice Suryakant, says Supreme Court doors open to every Indian citizen.
0: सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई।
1: Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues for protests and demonstrations.
0: और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान।
1: And now, Vaishnavi, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about, hold on, Nemawashi, and also about World Sloth Bear Day. Nemawashi, you must be surprised what type of a connotation is this. So today we are traveling to Japan to discover a beautiful tradition that teaches us how to protect nature while making room for development. The Nemawashi tradition, which literally means going around the roots or turning the roots.
0: ये सुनने में दिलचस्प लगता है। श्रोताओं, हम अक्सर देखते ही हैं कि सड़कें, इमारतें और दूसरी विकास परियोजनाएं बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसी पारंपरिक तकनीक है जिसकी मदद से बड़े और पुराने पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह लगाया जा सकता है।
1: एब्सोल्युटली, इट्स कॉल्ड नेमावशी, अ जापानीज टर्म दैट रफली ट्रांसलेट्स टू लेइंग द ग्राउंड वर्क। इन हॉर्टिकल्चर इट इन्वॉल्व्स केयरफुली प्रिपेयरिंग अ ट्रीज रूट्स बिफोर मूविंग इट टू अ न्यू लोकेशन। इट्स अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ पेशेंस एंड प्लानिंग कैन हेल्प प्रिजर्व नेचर।
0: अनुजा, जैसे आप बता ही रही हैं, लेकिन किसी बड़े पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान नहीं होता है और इसके लिए देखभाल की भी खास जरूरत होती है, क्यों है कि
1: ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज नॉट एट ऑल इजी, इट रिक्वायर्स अ ट्रेमेंडस केयर। फर्स्ट arborists examine the tree and they gradually prune some of its outer roots, sometimes months or even years in advance. This encourages the growth of a compact root system with plenty of fine roots that absorb water and nutrients. And once the roots are ready, what happens next?
0: अनुजा, इसके लिए पेड़ की जड़ों के आसपास की मिट्टी को सावधानी से खोदा जाता है, फिर जड़ों और उनके साथ लगी मिट्टी के पूरे हिस्से को बोरी के कपड़े या पुआल से लपेटकर मजबूती से बांधा जाता है ताकि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। पेड़ के आकार और वजन के अनुसार उसे उठाने और दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्रेन और दूसरे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।
1: वाओ, एंड द न्यू लोकेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड जस्ट एज केयरफुली। द ट्री इज प्लेस्ड इनटू अ स्पेशली डग ट्रेंच वेयर द सोइल इज फ्री फ्रॉम स्टोन्स एंड डेब्री दैट कुड डैमेज इट्स रूट्स। द एंटायर प्रोसेस कैन टेक मेनी मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द ट्री एंड द कंडीशंस।
0: बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पेड़ को दूसरी जगह लगाने के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना और नई जगह पर उसके पनपने की संभावना बढ़ाना है। इससे पता चलता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है।
1: एंड देयर इज अनदर फैसिनेटिंग साइड टू दिस ट्रेडिशन। इन जापानीज कल्चर ट्रीज कैन होल्ड डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। द शिंटो ट्रेडिशन रिकॉग्नाइजेस सेक्रेड प्रेजेंसेस इन द नेचर ऑफन एसोसिएटेड विद कामी और स्पिरिचुअल बीइंग्स।
0: बिल्कुल सही कहा अनुजा आपने। जापान में कुछ पुराने पेड़ों को पवित्र माना जाता है। वहां की लोक कथाओं में कोदामा नाम की आत्माओं का भी जिक्र मिलता है, जिनके बारे में मान्यता है कि वे पेड़ों में रहती हैं। ये मान्यताएं प्रकृति और पेड़ों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाती हैं।
1: सो निमावशी इज मोर देन जस्ट अ हॉर्टिकल्चरल टेक्निक। It reflects a philosophy of working with nature rather than simply removing it whenever it stands in the way of progress.
0: बहुत सुंदर बात कही आपने। सोचिए, एक सदियों पुराना पेड़ जिसने कई पीढ़ियों तक आते जाते देखा है, उसे काटने के बजाय हम उसे कहीं और बढ़ने का मौका देते हैं। ये सिर्फ संरक्षण नहीं है, बल्कि ये भविष्य के प्रति एक प्रतिबद्धता है।
1: And perhaps that's the lesson we can all learn. Progress should not always come at the cost of nature. With knowledge, patience and a little creativity, we can find ways to protect the living world around us.
0: विकास के साथ साथ पेड़ों को बचाने के लिए हम जापान की निमावशी तकनीक अपना सकते हैं। जिम्मेदार नागरिकों के तौर पर हम पुराने पेड़ों को बचाने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। अपने समुदायों को पेड़ संरक्षण की पहलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और जब पेड़ों को बेवजह काटा जाए तो आवाज उठा सकते हैं।
1: वी कैन ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू कंसिडर इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स बिफोर रिमूविंग ट्रीज बाय वर्किंग Together, we can promote a balance between development and environmental conservation, ensuring that future generations inherit a greener and healthier India.
0: बिल्कुल, हर बचाया गया पेड़ हमें एक हरे भरे और बेहतर भविष्य के करीब ले जाता है।
1: Remember, the next time you see a tree, Vaishnavi, think of it not as an obstacle in the path of development, but as a living part of our shared heritage.
0: तो आइए प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास की राह पर साथ साथ आगे बढ़े। और अनुजा, आप समय है कि हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं।
1: Absolutely. So moving on to our next topic of Dateline today, it's World Sloth Bear Day.
0: श्रोताओं, अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एक अनोखे भालू की। इसके शरीर पर घने बाल और पंजे लंबे होते हैं। ये जीव कीड़े भी खाते हैं। और क्या पहचान पाए हैं कि ये कौन सा भालू होगा?
1: In fact, I already said it. It's Sloth Bear Day today. जी. So a bear that loves insects. Aren't we talking about the sloth bear today then? So the aim is to generate awareness and strengthen conservation efforts around the unique bear species endemic to the Indian subcontinent. So we have more on the in this report right now.
2: Sloth bear is one of the 8 bear species found across the globe. They are identified by their very distinct long, shaggy dark brown or black fur, distinct white V-shaped chest patch and 4-inch long ivory-colored curved claws used for digging out termites and ants from rock-hard mounds. Sloth bears are very fond of honey, hence their alternative name is honey bear. They sleep for about 12 to 15 hours each day. Sloth bears do not hibernate because they live in warmer tropical and subtropical climate where food is available year-round. They help control insect populations like termites and ants and act as seed dispersers in forest ecosystems. Sloth bears are endemic to the Indian subcontinent with small populations in Nepal and Sri Lanka. 90% of the species population is found in India. They are found in all parts of the country except Jammu and Kashmir and northeastern states. They are classified as vulnerable on the International Union for Conservation of Nature IUCN Red List. They are listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India 1972. The species has the same level of protection as tigers, rhinos and elephants. This is Sanyukta Yadav for Parikrama.
0: और श्रोताओं, यहाँ पर हम आपके साथ एक जरूरी सूचना जारी करना

0: चाहेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST में भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041 और 0112331444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: So let's begin with Delhi, where Union Minister Gajendra Singh Shekhawat today inaugurated the BRICS Theatre Festival 2026. The festival will be held till Wednesday. Talking exclusively to Akashvani News, Director of the National School of Drama, Chitranjan Tripathi, said that the three-day festival will feature 10 theatre groups presenting 11 plays.
2: आज से ये शुरू हुआ है, 12-13-14 तक के 3 दिन चलेगा। दिल्ली में NST का अपना सभागार अभिमंच तथा LTG कमानी श्रीराम सेंटर, वहाँ पर प्लेस चलेंगे। लगभग हर रोज़ 2-3 नाटक का मंचन होगा और भारत में 9 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो टैगलाइन है ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल का, शेयर्ड स्टोरीज। सो शेयर्ड स्टोरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अगर शेयर नहीं करेंगे अपनी अपनी सिविलाइजेशनल स्टोरी को, अपने अपने कंटेम्प्रेरी स्टोरी को, रियलाइजेशन को, तो हम वसुधैव कुटुंबकम बनने में असफल रहेंगे।
0: ये महोत्सव कलात्मक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक विविधता और साझा मानवीय अनुभवों का जश्न मनाने के लिए थिएटर डायरेक्टर, कलाकार, विद्वान, राजनयिक और ब्रिक्स के सदस्य व सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस, वियतनाम, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और इथियोपिया शामिल हो रहे हैं।
1: एंड नाउ वी टेक यू ऑल टू कोलकाता। Marking a major milestone in India's wildlife conservation efforts, the first phase of the tiger reintroduction program was launched on the 2nd of this month with the release of tigress in West Bengal's Baksa Tiger Reserve. We have more from our correspondent.
3: The initiative aims to restore a viable, self-sustaining tiger population in Baksa through scientifically guided interventions. Since 2018, the West Bengal government, with support from the National Tiger Conservation Authority, NTCA, and the Wildlife Institute of India, WII, has undertaken habitat restoration, pre-augmentation, and scientific monitoring under the Tiger Augmentation and Recovery Project. Officials said the translocated tigress will be closely monitored through telemetry, camera traps and field observations. Further augmentation will be undertaken only after scientific assessment of habitat pre-availability and population viability. Sushmita Mondol, Akashvani News, Kolkata.
0: और अब कोलकाता से चलते हैं रांची की तरफ। झारखंड का प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व 3 महीने के मॉनसून ब्रेक के बाद सैलानियों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया है। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शुरुआती 9 रिजर्वों में शामिल रहे इस वन क्षेत्र का वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक योगदान रहा है। आइए सुनते हैं पलामू टाइगर प्रोजेक्ट की समृद्ध विरासत और इसके बदलते स्वरूप पर केंद्रित हमारी खास रिपोर्ट।
4: छोटा नागपुर पठार की सुरम्य वादियों में फैला पलामू टाइगर रिजर्व देश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। करीब 1130 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य की ऐतिहासिक महत्ता और जैव विविधता पर प्रकाश डालते हुए वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर DK श्रीवास्तव का कहना है कि पलामू टाइगर रिजर्व का इतिहास सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के शुरुआती वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की नींव है।
5: शुरुआत तो 1970 के समय में हुई, जबकि पूरे कंट्री में टाइगर की गणना की गई और उस गणना में पाया गया कि पूर्व बिहार में, जो अभी पलामू टाइगर रिजर्व का भाग है, इसमें 22 बाघ थे। इस 22 के अलावा इसके बाहर भी 10-12 बाघ विचरण करते थे और यहाँ पर 9 जो टाइगर रिजर्व बना कंट्री में भारत, तो पलामू भी एक उससे जुड़ा। इस तरह से पलामू की महत्ता तो बहुत अधिक है।
4: उल्लेखनीय है कि इस नए पर्यटन सत्र में वन्य जीवों के दीदार के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं बाघों के कुनबे

0: को बढ़ाने के लिए रिजर्व में पुनर्वास कार्यक्रमों पर भी तेजी से काम चल रहा है। पर्यावरण विदों के अनुसार स्थानीय समुदायों का सहयोग और पर्यटकों द्वारा वन नियमों का अनुपालन ही पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के अस्तित्व को अक्षुण्ण रख सकता है। परिक्रमा के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह के साथ रांची से पूनम करकेट्टा।
1: And we have something from Shillong now. The second edition of the Reverse Bioseller Meet was held in Shillong with the aim of connecting MSMEs with domestic and international buyers. More than 300 entrepreneurs and 32 national and international buyers are participating in it. We have a report on this.
2: Meghalaya is home to a rich tradition of handicrafts, handloom and agri-produce. Taking these traditional products to wider markets, Shillong hosted the second edition of the Reverse Buyer-Seller Meet at the State Convention Center on October 8th and the 9th. This event brought local entrepreneurs face-to-face with national and international buyers. Held in collaboration with the Federation of Indian Export Organizations, this Buyer-Seller Meet brought together around 32 national and international buyers. Deputy Chief Minister Snyobha Langdhar inaugurated this two-day meet and highlighted its potential to create new business opportunities for this state's entrepreneurs. More than 300 entrepreneurs from all the 12 districts of Meghalaya participated in this meet. Traditional handicrafts, hand-woven textiles, Lakadong turmeric that is unique to Meghalaya, along with fruit wines, jams and honey were among the products on display. The two-day event gave local businesses an opportunity to showcase their products and connect directly with buyers while also exploring new markets. The initiative was aimed at taking Meghalaya's traditional craftsmanship beyond local boundaries, opening new avenues for its entrepreneurs in national and international markets. For Parikrama, Anumita, Akashvani, Shillong.
1: And Vaishnavi, Goa is set to host India's first Edge City, bringing together global experts in science, technology and innovation. The three-week initiative in Mandarim aims to promote collaboration and strengthen Goa's emerging identity as a hub for innovation and entrepreneurship. Our correspondent reports on this.
3: The Edge City India, a three-week pop-up village, will be held in Mandarim in North Goa from October 11th to November 1st. Around 800 delegates, including entrepreneurs, scientists, engineers and researchers from more than 60 countries are expected to participate. Information and Technology Minister Rohan Khante said the event would focus on technology, science and innovation. The government aims to establish Goa's identity not just as a tourist destination but also as a hub for innovation and entrepreneurship. The initiative will provide students, startups and local entrepreneurs in Goa with an opportunity to interact with global experts and explore new opportunities and avenues for collaboration. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
4: अब हम आपको पुणे की एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था के कार्यों से रूबरू कराएंगे जो समाज के उपेक्षित वर्गों विशेषकर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है।
5: पुणे का फ्रीडम फाउंडेशन रिमांड होम और सुधार गृहों में रहने वाली महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करता है। इन महिलाओं के पुनर्वास के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। फ्रीडम फाउंडेशन की मृदुला जी का कहना है,
6: ऐसे बताया जाता है कि जिस क्षण मनुष्य को लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, कोई समझ रहा है, उसी समय उसका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। और इसी तरह ये हीलिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है और हमारा अनुभव है कि जब हम उनकी बात बिना किसी आलोचना के, बिना किसी उनको सिखाए हुए या गलत या सही है ऐसे बताए हुए अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो वो ओपनली बोलती है, अपने मन के विचार व्यक्त करती है और ऐसे बात करते करते ही वो लॉजिकल कंक्लूजन भी उससे दिखाई देता है।
5: नवरात्रि के अवसर पर जब देश में हर जगह नारी शक्ति का उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में समाज के इन उपेक्षित महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए काम करने वाली संस्थाओं के प्रयास को, खासकर मृदुला जी जैसे महिलाओं के योगदान को सराहना भी आज प्रासंगिक होगा। परिक्रमा के लिए माधवी कुलकर्णी, पुणे।
1: And in the business news for the day, benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points to settle at 22,363. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
4: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
7: आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी, लेखक, चिंतक और राजनेता राम मनोहर लोहिया की। उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 में हुआ था। उनके पिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया का झुकाव आरंभिक जीवन से ही गांधीवादी दर्शन की तरफ हो गया था और 10 वर्ष की उम्र में वो सत्याग्रही बन गए थे।
8: लोहिया समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए और 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की। लोहिया ने जब 1 जून 1940 को गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से लेख लिखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। भारत को आंतरिक रूप से स्थिर करने के प्रयासों के अंतर्गत दिसंबर 1940 में अंग्रेजों ने अन्य नेताओं के साथ लोहिया को रिहा कर दिया।
7: 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब प्रमुख नेता जेल में थे तो लोहिया ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। स्वाधीनता सेनानी उषा मेहरा के साथ लोहिया ने बंबई में सीक्रेट रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित किए। उन्होंने कलकत्ता में आंदोलन को पुनर्जीवित किया और बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चले गए, लेकिन मई 1944 में उन्हें पकड़ लिया गया। लोहिया को लाहौर जेल ले जाया गया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया।
8: लोहिया ने अपने भाषणों और लेखों में विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों से एकजुट होने, अपने आसपास हिंसा की अनदेखी करने और अहिंसा के गांधी जी के आदर्श पर अडिग रहने की अपील की।
7: डॉक्टर लोहिया लगभग 650 भारतीय रियासतों के एकीकरण से बड़े राज्य बनाने का विचार देने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ऐसा विचार था जिसे बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक लागू किया। स्वतंत्रता के उपरांत लोहिया ने महान चिंतक और सांसद, अल्पसंख्यकों, निचले वर्ग के लोगों और महिलाओं के हितों के लिए लड़ने वाले के रूप में अमिट छाप छोड़ी।
8: जीवन के अंतिम दिनों में राजनीति के अलावा उन्होंने काफी समय भारतीय साहित्य, राजनीति और कला जैसे विषयों पर हजारों युवाओं के साथ चर्चा में बिताया। 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में लोहिया का निधन हो गया।
1: Today we are also remembering Kamini Roy, pioneering poet, educationist and women's rights advocate on her birth anniversary today. Her unwavering commitment to equality, education and women's empowerment continues to inspire generations to fight for justice. She is remembered as British India's first woman honours graduate and as a celebrated Bengali poet, a social reformer and a leader in the women's suffrage movement. She helped Bengali women win the right to vote in 1926. There was a famous quote by her which says, "Why should a woman be confined to home and denied her rightful place in society?" So that's why she's more famous as giving more power to women's empowerment and fight for their commitment to equality and education.
4: अनुजा, आजादी की लड़ाई में कुछ लोगों ने हथियारों और क्रांतिकारी विचारों से शुरुआत की तो कुछ ने सत्य और अहिंसा को अपना रास्ता बनाया। पेरिन बेन कैप्टन का जीवन इन दोनों धाराओं के बीच एक प्रेरक सेतु था। गुजरात के कच्छ में जन्मी पेरिन बेन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी और उन्होंने स्वदेशी, खादी, महिला जागरूकता और सामाजिक सुधार के कार्यों में भाग लिया। वर्ष 1921 में राष्ट्रीय स्त्री सभा के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1930 और 1932 में जेल भी जाना पड़ा था। देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1954 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: Today we also remember eminent Indian Urdu and Hindi poet, lyricist and dialogue writer Nida Fazli. It is his birth anniversary today. We remember him as a humanist voice who blended simple, accessible language with deep philosophical and Sufi sensibilities. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1998 for his Urdu poetry collection, Khoya Hua सब कुछ एंड द पद्मश्री इन 2013 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही इज नोन फॉर टाइमलेस क्लासिक्स लाइक होश वालों को खबर क्या फ्रॉम द मूवी सरफरोश एंड मेनी गुड सॉन्ग्स विच वर अडेप्टेड इन हिंदी मूवीज एंड लेट्स हियर अ सॉन्ग फ्रॉम वॉट ही हैड रिटन.

0: श्रोताओं, चश्मे के लेंस से लेकर वैज्ञानिक उपकरणों तक कांच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल ग्लास के स्वदेशी उत्पादन को मजबूत बनाने में एक भारतीय वैज्ञानिक की बड़ी भूमिका रही। उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जन्मे डॉक्टर आत्माराम एक प्रख्यात रसायनज्ञ थे। उनके नेतृत्व में भारत ने ऑप्टिकल ग्लास के स्वदेशी उत्पादन की तकनीक विकसित की। वर्ष 1959 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: And today we also pay tribute to an Indian sitarist who was an exponent of the, who is rather an exponent of Benares Gharana School of Indian Classical Music. He was formerly a lecturer of the head of the music department in Varanasi and was awarded the Padma Shri in 2022. He's the only sitar player from Varanasi to have received Padma Shri award after Ravi Shankar. Let's hear a sitar recital by him.

आज एहसान नूरानी अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। शंकर एहसान लॉय की मशहूर संगीतकार तिकड़ी का हिस्सा एहसान नूरानी ने गिटार की धुनों से हिंदी फिल्म संगीत को एक अलग पहचान दी। 14 साल की उम्र में गिटार सीखने शुरू करने वाले एहसान ने दिल चाहता है, कल हो ना हो और रॉक ऑन जैसे फिल्मों के संगीत में अहम योगदान दिया। फिल्म कल हो ना हो के लिए इस तिकड़ी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए आपको सुनाते हैं उनके फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140

0: स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उनके प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस अवसर पर श्री सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानवाधिकारों की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देशभर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वादे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said that every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant relief whatever is due under the law. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to the India Blog's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night, explaining why he was unable to meet them.
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी पिटीशन।
5: द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ओपन टू एवरीवन। एनी पर्सन, वेदर एन ऑर्डिनरी सिटीजन और अ मेंबर ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी, हैज द राइट टू अप्रोच अस। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज दिस राइट। वी विल हियर द ग्रीवियंसेस एंड एड्रेस देयर कंसर्न्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द लीगल फ्रेमवर्क। आई रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे एंड रिप्लाइड टू इट लास्ट नाइट एंड आई हैव साइटेड द रीजंस फॉर एक्सप्रेसिंग माय इनएबिलिटी टू मीट। आई हैव मेंटेन्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द लेटर।
4: लेटर के कंटेंट्स आप उनसे पूछिए, मैंने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है।

बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 5:11 5 सेकेंड और ये वक्त गाते गुनगुनाते का 80s और 90s के कुछ सुरीले नगमे चलिए पहुंचाते हैं आप तक। सुनते हैं गोल्ड, अंजलि है आपके साथ और सबसे पहले मैंने प्यार किया फिल्म से 1989 की ये फिल्म है जो सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित एक संगीतमय प्रेम कहानी रही। सलमान खान और भाग्यश्री लीड रोल में रहे इस फिल्म में, डेब्यू फिल्म भी कही जा सकती है इनकी। 1989 में रिलीज फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रही ये फिल्म मैंने प्यार किया और फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम उस दशक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम रहा। 35वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 6 पुरस्कार जीते थे इस फिल्म ने। मैंने प्यार किया सलमान खान के फिल्मी करियर की एक माइलस्टोन फिल्म कह सकते हैं इस फिल्म को। तो ये फिल्म बहुत ही, जैसे मैं बोलती हूँ, दर्शकों को और यंगस्टर्स को तो बहुत ही पसंद आई थी। इसी फिल्म से गीत पहुंच रहा है आपके आप तक, तो चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल्ली SIR से संबंधित सूचना है खास।
3: नोटिस मिला है तो चिंता कैसी, अब सुनवाई की प्रक्रिया होगी आसान।
2: ERO या AERO कार्यालय जाने की अब नहीं है आवश्यकता। BLO आएंगे आपके द्वार, दस्तावेज रखें तैयार।
3: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज अपने BLO को उपलब्ध कराएं।
4: मिलकर प्रक्रिया को आसान बनाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए गाते गुनगुनाते का ये सफर जारी रखते हैं आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। और अब जो गीत आप तक पहुंच रहा है, डर फिल्म से थ्रिलर रोमांटिक मूवी डर, यशराज बैनर तले बनी और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित, सनी देओल जूही चावला मुख्य भूमिकाओं में दिखे और शाहरुख खान फिल्म में नेगेटिव किरदार में दिखे। जैसा कि नाम से जाहिर है, अदाकारा के मन में और देखने वालों के दिल में खौफ सा बना रहता है मूवी देखते हुए। फिर भी बहुत एंटरटेनिंग रही मूवी। हनी ईरानी और जावेद सिद्दीकी ने इस स्टोरी को लिखा। शिव हरी म्यूजिक डायरेक्टर रहे फिल्म के और 1993 में रिलीज ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। तो ये गीत आप तक उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में है।

0: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसे ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
1: पूजा,
2: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो?
3: पता ये बात अब सबको पता चल गई।
0: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
4: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इवास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
6: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: और अब जो गीत आप तक पहुंच रहा है, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 पर, गाते गुनगुनाते तनुजा चंद्रा द्वारा निर्देशित 1998 में रिलीज हुई दुश्मन। इस फिल्म से गीत आप तक पहुंचेगा लता जी की आवाज में, कुमार शानू की आवाज में। एक थ्रिलर मूवी रही, संजय दत्त, काजोल, आशुतोष राणा मुख्य भूमिकाओं में रहे। मुकेश भट्ट और पूजा भट्ट फिल्म के निर्माता रहे। पूजा भट्ट प्रोडक्शंस के तहत बनी थी ये मूवी दुश्मन। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए आशुतोष राणा को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। काजोल को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही तनुजा चंद्रा को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का स्क्रीन पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म से सुन लेते हैं एक और गीत। इस गीत का आनंद लीजिए, लेकिन अंजलि को अब आप दीजिए अनुमति, दीजिए।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे हैं
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त।

0: लोगे।
1: पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हेलो फार्मर्स प्रोग्राम में, और जो कि हम लेकर आते हैं आपके लिए हर सोमवार को शाम 5:30 बजे। मैं हूं आपके साथ सुषमा शर्मा, और मेरे साथ है मेरे साथी
5: निरंकार, करिए स्वीकार
4: हमारा नमस्कार। बिल्कुल, और हमने नमस्कार कर दिया और हमारे किसान भाई जुड़ चुके हैं। और किसानों को बताने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं, खासतौर पर उनके लिए निरंकार जो पशुपालन करते हैं।
5: बिल्कुल, आपने सही कहा, जैसे कि हमें संतुलित आहार की जरूरत होती है अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, उसी तरह से हमारे पशुओं को भी अगर संतुलित आहार मिलता है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है
4: जी।
5: और हम जानते हैं कि जब चारा, हरे चारे की हम बात करते हैं, तो जई ऊर्जा और रेशा युक्त एक ऐसा चारा है जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ में बरसीम भी हमारे पशुओं को प्रोटीन की उपलब्धता कराने में बहुत भूमिका निभाती है, और इन दोनों को अगर हम अपने पशुओं को देते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जहां तक आपने बात की दुधारू पशुओं की, तो दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इन दोनों फसलों को चारे के रूप में हम किस प्रकार से उगाएं, क्या हम सिंचाई का इंतजाम रखें, किस तरह से उनको बोएं, कौन से बीज हों, इन सभी बातों की जानकारी आज हम लेंगे
4: डॉक्टर साहब से।
5: बिल्कुल, और वो हमारे बीच आज विशेषज्ञ हैं, आपके जाने पहचाने हैं डॉक्टर आरएस बाना जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में।
4: सर पूरा परिचय हो गया और हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, तो सर हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि जो हम चारा फसल की बात कर रहे हैं, उन्नत किस्मों की बात कर रहे हैं, तो आज आप क्या क्या बताएंगे अपने किसान?
6: क्योंकि खरीफ की फसलें कट चुकी है, हमारे खेत खाली हो रहे हैं, जो दीर्घकालिक फसलें थी उनके खेत थोड़े दिनों में खाली हो जाएंगे, तो ये सही समय है रबी की फसलों की बिजाई के लिए, अपने खेत तैयार करने का, जो जल्दी बिजाई वाली फसलें हैं उनकी बिजाई करने का। और जब तक बात जब चारा फसलों की आती है, तो चारे में हमारा सर्दियों के मौसम में चारा फसलों में नाम आता है जई, बरसीम और साथ में रिजका भी एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, विशेषकर हमारे जो शुष्क क्षेत्र हैं, लवणीय क्षारीय मृदाओं वाले क्षेत्र हैं वहां के लिए। तो ये जो तीन फसलें हैं हरे चारे की, और हरे चारे की आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा महत्व है, जैसे कि हमारे मानव जीवन में संतुलित पोषण या संतुलित भोजन का है, वैसे ही हमारे पशुधन को भी पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की आवश्यकता होती है, और अगर वर्ष भर हरा चारा मिलता रहे तो हमारे पशुधन का दूध उत्पादन बढ़ता है। तो न केवल ब्रीड या जो पशु की प्रजाति है वही मायने नहीं रखती, उसका सही पोषण होने से ही हम दुग्ध उत्पादन में हमारे किसानों का जो पशुपालन है उसको लाभप्रद बना सकते हैं।
5: डॉक्टर साहब, जो आपने चारे की कई किस्में बताई हैं कि जई है और जो है या बरसीम है
6: जी,
5: ये सारी जो हम इस तरह के चारे देते हैं, तो इनके पोषक तत्वों में क्या फर्क है?
6: जी, जो जई है वो एनर्जी और रेशे से भरपूर होती है, धान्य वर्गीय फसल है। इसके अलावा जौ की फसल भी, वैसे तो अनाज के लिए या उसका औद्योगिक महत्व है, परंतु कुछ ऐसी किस्में हैं जैसे कि पूसा संस्थान की एक पूसा लोसर किस्म है जो कि तो ये क्या होती है, एक बार उसको चारे के लिए कटाई कर लेते हैं, दूसरी बार वृद्धि होती है तो उसको दाने के लिए ले लेते हैं। तो ये जौ और जो जई है वो क्योंकि धान्य वर्गीय है, रेसे से भरपूर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स
5: चारा और दाना दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाती है,
6: दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ओट्स तो आजकल ब्रेकफास्ट में बड़ा उपयोगी फूड साबित हो रहा है, काफी जागरूकता आ रही है हमारे लोगों के बीच में। तो ये दो धान्य वर्गीय फसलें हैं जो चारे के लिए बड़ी ही उपयोगी है, पशुओं की ऊर्जा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां तक बात आती है प्रोटीन की, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और हमारे पशुधन को तो मिश्रित चारा मिले ताकि सभी प्रकार के पोषक तत्व उसको मिलते रहें। तो उसमें प्रोटीन युक्त चारे की जहां तक बात है, उसमें बरसीम और रिजका बड़े ही महत्वपूर्ण है। दोनों दलहन वर्गीय फसलें होने के कारण एक तो इनको पोषक तत्व जो उर्वरक हम डालते हैं उनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पशुओं को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलने से उन

0: जो पशुओं का सही पोषण हो पाता है, और न केवल पशुओं का पोषण होता है, उसमें मृदा का भी पोषण होता है, मृदा स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। कम मात्रा में रसायनों के उपयोग से हमारे जो पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद करता है, अगली फसलों में भी कम मात्रा में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे फसल खेतों में जहां बरसीम और रिज का लगाते हैं। तो ये एक तरह से पर्यावरण स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, तो जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसको सही मायने में ये साबित करने वाली फसलें हैं बरसीम और रिज का।
1: सुषमा जी, बहुत जानकारी हमें मिल रही है और विस्तार से डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हमारे जो श्रोता है उनके जहन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, बिल्कुल सवाल आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
2: बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और उनके लिए फोन नंबर बताना बहुत जरूरी है निरंकार। वो नंबर है, अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल करें तो हमें 011 जरूर लगाएं उस नंबर पर, और नंबर है 2342-1081, और दूसरा नंबर है 2342-1083। डॉक्टर बाना जी, एक बात आती है कि जब किसान भाई हमारे तैयारी करते हैं खेतों की, तो सबसे बड़ी चीज वही होती है कि कैसे उसकी बुवाई करें। कई एरिया हमारे देश के ऐसे होते हैं जो कि ड्राई होते हैं, कहीं गीली बिजाई भी की जाती है, कहीं सूखी बिजाई भी, तो वो क्या चीज है, वो क्या एक अवधारणा है सर, उसके बारे में बताइए।
0: क्योंकि ये जो विशेषकर बरसीम और रिज का है, इनके दाने छोटे होते हैं, तो खेत को ठीक से भुरभुरा बनाना जरूरी है।
2: हाँ।
0: उसके लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटाऊ हल से करके, उसके बाद हैरो या कल्टीवेटर की सहायता से 3-4 जुताई करें, और हर जुताई के बाद पाटा भी लगा दें ताकि ढेले वगैरह नहीं हो और जो मृदा की नमी है वो भी संचित रहे। और उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में अभी हाल ही में जो बरसात हुई है, उस बरसात की नमी का भी आपको सदुपयोग करना चाहिए, ताकि आपका जो भूजल है उसका बिना दोहन किए आप इसमें इस समय बिजाई कर सकें। बरसीम की जहां तक बिजाई का तरीका है, वो दो विधियों से करते हैं। पानी जहां पे पर्याप्त मात्रा में होता है वहां पर गाद बनाकर बार बार जुताई करके और पानी भर के उस पडलिंग करके और हल्का पानी भरने पे और लेवल करके, समतल करके, और फिर बीजों को छिटक देते हैं और उससे बिजाई करते हैं। और एक सूखी विधि होती है जिसमें आपको पहले ही खेत को तैयार कर लेना होता है, पानी नहीं देते हैं खेत में, और आपको सही तरीके से लेवल करने के बाद, क्यारी बनाने के बाद उसमें बीज डाल के और उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और बीज की गहराई अधिक नहीं हो ये ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर गहराई तक बीज जाए, और उसके बाद बहुत ही हल्की सिंचाई आपको करनी होती है ताकि बीजों का अंकुरण हो जाए। जहां तक बात है रिज का, की सामान्यतः ये सूखी विधि से ही इसकी बिजाई करते हैं। जई की बुआई करने के लिए भी खेत की तैयारी का तो तरीका वही है, 2 से 3 जुताई करें। आजकल शून्य जुताई विधि से, जीरो टिल सीड्रिल से या हैप्पी सीडर से भी बिजाई कर देते हैं। उसके अपने फायदे हैं, मृदा नमी संरक्षण, खरपतवारों का जमाव कम होता है, जुताई का खर्चा बच जाता है, डीजल और
1: समय भी बचेगा,
0: समय बच जाता है, तुरंत बिजाई हो जाती है। तो उससे भी शून्य जुताई विधि से भी कर देते हैं, और बुआई हमेशा कतारों में करें, और कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। अमूमन किसान मानता है कि जी ये तो चारा वाली फसल है, ऐसे ही छिटक के और छींटा मार के।
1: बरसीम को तो खासतौर पर ब्रॉडकास्टिंग विधि से ही बोते हैं, तो क्या उसे नमी में लाइन में बोना चाहिए या ब्रॉडकास्टिंग?
0: बरसीम में, क्योंकि यदि गाद से करते हैं तो लाइन में बोना बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर यदि सूखी विधि से बिजाई करते हैं तो उस दशा में उसको कतारों में बिजाई करने से ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि आपके जो आपस में फसलों में कंपटीशन होता है वो बच जाता है। और ऐसे ही रिजका में भी आप कतारों में बिजाई करते हैं तो ज्यादा लाभप्रद है, परंतु क्योंकि ज्यादातर हम अमूमन देखते हैं कि किसान के पास सीड ड्रिल या उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस दशा में छिटकवा विधि से भी बिजाई करी जा सकती है।
1: अच्छा, जो किसान भाई इन फसलों को लगाना चाहेंगे चारे वाली, उनकी बिजाई का समय और बता दीजिए कब वो बिजाई कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, और कौन कौन सी किस्में लें, क्योंकि उन्नत किस्में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सर।
0: बिजाई का समय तो अभी सही समय चल रहा है, वैसे तो जो बरसीम या रिज का है उसका सितंबर के अंतिम सप्ताह से ही बिजाई शुरू हो जाती है कुछ क्षेत्रों में तो, पर अक्टूबर का महीना सही समय है, और मध्य अक्टूबर बिल्कुल जो कहा जाता है कि इस समय बिजाई करी देनी चाहिए, सबसे उपयुक्त समय है। और देरी की अवस्था होती है, खेत खाली नहीं होते हैं, तो नवम्बर का प्रथम पखवाड़े तक इनकी बिजाई करी जा सकती है। कुछ खेत ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक खाली होते हैं, तो जो जई है वो थोड़ा देरी तक, नवंबर के अंत तक भी कुछ किसान बिजाई करते हैं और उसमें जो देरी वाली किस्में हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जहां तक बात आती है बरसीम में जो चारा वाली फसलें हैं, सभी में अमूमन किसान किस्मों का सही ध्यान नहीं रखता, तो उससे उनको उत्पादन

0: कम मिलता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये चारा ही है कुछ भी बोल दो, नहीं, उन्नत किस्मों का उपयोग करना है। यदि जई की बिजाई करनी है तो जैसे कि ये उत्तर भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पर HFO 114 है, HFO 906 है, HFO 1008 है, 1121 है, 1211 है, ये है। इसके अलावा जो बुंदेल जई है, बुंदेल जई 9 है, जवाहर जई 7-15 है, ये जो किस्में हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बरसीम है उसमें चतुर्गुणित और द्विगुणित दो प्रकार की किस्में होती है। तो जो भी बरसीम में वैसे तो पुरानी किस्में हैं जैसे कदरावी, चिंदवाड़ा, वो भी चल रही है, मस्कावी, परंतु जो नई किस्में हैं जैसे कि BL 10 है, BL 22 है, BL 180 है, BL 46 है, जो अभी कुछ समय पहले ही रिलीज हुई है, बुंदेल बरसीम है, तो ये जो किस्में हैं इनको उपयोग कर सकते हैं।
1: इसमें डॉक्टर साहब एक जानकारी हम चाहेंगे इन फसलों के अंदर, क्योंकि ज्यादा कटाई मिलेगी तो फायदा ज्यादा मिलेगा, तो कुछ ऐसी किस्में भी हैं जो ज्यादा बढ़ती हैं और कटाई ज्यादा मिलती हैं।
0: ज्यादा कटाई मिले, ज्यादा हरा चारा मिले, उसकी का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। बरसीम में चतुर्गुणित और द्विगुणित, उनका 1:3 का यदि रेशियो में बिजाई करते हैं, या फिर कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे कि सरसों है या जो करण राई है, इनका बीज मिलाकर यदि बिजाई कर देते हैं, तो जो पहली कटाई, क्योंकि शुरुआत में जो वृद्धि होती है वो बड़ी धीमी होती है, तो जो ग्रोथ अच्छी हो और पहली कटाई में हरा चारा मिल जाए, उसके लिए इसमें पहली बिजाई के लिए कुछ मात्रा में सरसों के बीज या जो करण राई है या जो चाइनीज कैबेज बोलते हैं, जो चीनी सरसों है, उस तरह के बीज मिला देते हैं, तो उसमें पहली कटाई अच्छी मिल जाती है और आपको उत्पादन अच्छा मिलता है।
2: बिल्कुल सर, और भी जानकारी लेंगे आपसे कि पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, सिंचाई क्या हो सकती है, लेकिन हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और नंबर डायल भी कर रहे हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं अभी अभी हमसे उनको फिर से दोहरा देती हूँ। नंबर सार 2342-1081 एंड द अदर नंबर इज 2342-1083। चलिए, एक कॉलर हमारे पास आ भी चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए।
3: जी, मैं अमित तेवतिया बात कर रहा हूँ, गांव नत्थुगढ़ी, जिला बुलंदशहर, यूपी से।
2: जी अमित जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार अमित जी।
3: डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो हमने खेत खाली किए हैं तो उसमें धान का कुछ अवशेष हमारा बाकी है, अभी वो डिकम्पोज नहीं हुआ पूरी तरह।
0: जी,
3: तो ऐसे में जो है हम जई बो सके हैं क्या, और बो में तो कौन सी ऐसी किस्म हो जो अच्छी हो जाए पशुओं के लिए।
0: जी अमित जी, अभी आपको धान की कटाई कर दी, तो जो पराली है उसको जलाना बिल्कुल नहीं है, खेत में रखना है और डिकम्पोज होने दो, उसको हो जाएगी। और जैसे हैप्पी सीडर अगर आपके पास हो तो उसकी सहायता से जो फसल अवशेष पड़े भी हों खेत में बिना डिकम्पोज हुए हैं, तब भी आपकी बिजाई हो जाएगी, तो उसमें आप जई की बिजाई कर सकते हैं। जो जई की उन्नत किस्मों की अगर हमने जो बात करी, वो अभी मैंने पहले भी बताया, जैसे कि बुंदेल जई 991 है, बुंदेल जई 2002 है, 2001-3 है, या HFO 114 है, HFO 906।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सही बीज कैसे करें, फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
1: कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: बिल्कुल, आप सुन रहे हैं हेलो फार्मर्स, मैं हूं सुषमा, मेरे साथ हैं निरंकार जी और आज डॉक्टर आरएस बाना जी हैं और हम बात कर रहे हैं जई और वसीम जो चारा फसलें हैं उनके उन्नत किस्में और बुवाई क्या है। सर, हमने काफी कुछ बात की लेकिन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। चारा फसल की बात करें तो उनके जो बीज है उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे उपचारित किया जाए, कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी है, इरिगेशन यानी सिंचाई कैसे की जाए, ये तीनों प्रश्न मैंने एक साथ आपसे पूछ लिए हैं और आपको बताना है जब तक मैं कॉल्स देख रही हूं। सर
7: जी ठीक है, जहां तक बीज की बिजाई की बात है तो बीज को उपचारित करके बोना बड़ा आवश्यक है। उपचारित करने का एक पद्धति है जिसको मैं आपको याद रखने के लिए तरीका बता देता हूं, FIR, यानी कि पहले आपको फंजीसाइड यानी कि जो कवकनाशी है, कवक मारने वाली दवाई है, उससे बीज को उपचारित करना है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से, और अंत में राइजोबियम कल्चर या जो जई की फसल है उसमें राइजोबियम तो उपयोग नहीं करते परंतु जो अन्य जो जैविक जो बायोफर्टिलाइजर है उनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें वो फॉस्फोरस गोलक या पोटेशियम सोल्युबलाइजर, इसके अलावा आजकल जिंक सोल्युबलाइजर, पूसा संस्थान का एक पूसा संपूर्ण करके एक कंसोर्सिया आता है जिसमें वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पौधों को ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराता है और आपके जो खाद और उर्वरक है उनकी 25% तक की पूर्ति करता है, तो जो किसान है उसकी लागत भी कम लगती है और उसका जो मुनाफा है वो बढ़ जाता है।
8: और कहते हैं टीके वैसे भी कम कीमत के आते हैं,
7: बहुत कम कीमत में आपको 1 एकड़ के लिए 30 से 40 रुपए में आपको एक टीका मिल जाता है, जिससे आपका करीब 25% के आसपास जो
8: उर्वरक
7: है उसका उपयोग बच जाता है। और जो टीके होते हैं वो उसी फसल के लेने चाहिए, जैसे बरसीम आप कर रहे हैं तो राइजोबियम ट्राइफोलाई नाम का एक टीका आता है, आप खरीदते समय बता दो कि मुझे बरसीम का टीका ही चाहिए। ऐसे ही राइजोबियम का यदि रिचका का लेते हैं तो राइजोबियम मेलिलुटाई का लेते हैं, गेहूं के लिए लेते हैं तो एजोस्पिरिलम का टीका लेते हैं। तो हर फसल का जो टीका आता है, जई के लिए एजोस्पिरिलम आप ले सकते हैं, फॉस्फोरस गोलक जो PSB बोलते हैं उसको, उसका टीका ले सकते हैं। तो ये आप टीका यदि इससे लगाते हैं और उससे बीज को उपचारित करते हैं, पर ये ध्यान रखें कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट करने के बाद ही राइजोबियम से या जो जैविक टीके से उपचारित करें।
6: एक कॉलर है सर, हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उनका प्रश्न ये था सर कि वो बिजाई तो करना चाहते हैं, उनके खेतों में एक वो नाम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि गांठ सी रहती है वो नीचे जड़ों में, तो वो खत्म नहीं हो पा रही है, वो खरपतवार है कोई ऐसी, वो क्या चीज हो सकती है?
7: हाँ, खरपतवार होता है जड़ों में, मोथा की शायद ये बात कर रहे होंगे। तो उसमें यही तरीका है कि गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करें ताकि वो खत्म हो जाए, या अभी खेतों में है तो उसमें ग्लाइफोसेट नामक जो शाकनाशी आता है उससे आप उसका यदि छिड़काव कर देते हैं 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, और लगभग आप उसमें 500 लीटर के आसपास पानी प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हुए यदि छिड़काव कर देते हैं तो जो गांठों तक, क्योंकि ग्लाइफोसेट ऐसा है कि पूरे प्लांट सिस्टम में जाता है तो गांठों तक पहुंच जाएगा और वो उसको नष्ट कर देता है
6: जी।
7: तो इस तरह के, और एक ना खेतों में ज्यादा सही पॉपुलेशन रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है प्लांट पॉपुलेशन जो पौधों की संख्या है वो बड़ी कम होती है तो उसमें जगह मिल जाती है, आराम से खरपतवार उगता रहता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि सही मात्रा में बीज का उपयोग करें। जई के लिए यदि बीज लगाते हैं तो जो मोटे दाने वाले हैं उसका 80 से 100 किलो तक बीज, और नहीं तो छोटे दाने वालों में 70 से 80 किलो बीज ले। बरसीम और जो रिजका है उसमें 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से आप उपयोग करते हैं तो खरपतवारों का थोड़ा प्रकोप वैसे भी कम हो जाता है,
8: क्योंकि पौधों की संख्या ज्यादा हो जाएगी
7: जी।
6: बिल्कुल, किसान भाई हमें जल्दी से जल्दी कॉल करिए क्योंकि समय बहुत कम है। एक छोटा सा हम अंतराल लेते हैं सर, फिर उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जानेंगे
7: जी।

0: बिल्कुल, शाम शहर करते हैं और शहर है हमारा दिल्ली, और दिल्ली से आप सुन रहे हैं फिल्म गोल्ड और प्रोग्राम का नाम है हेलो फार्मर्स। सर, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, आज का जो विषय है उसमें उर्वरक का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है और सिंचाई, जल्दी से बताइए, समय सीमा हमारे पास सीमित है।
1: जी, उर्वरक की जहां तक बात है, जैसे कि पशु पोषण है, मानव पोषण है, तो पौधों का पोषण भी जरूरी है
0: जी।
1: और पौधों का पोषण की बात आती है तो हमें मिट्टी में कितने उर्वरक हैं उसका पता होना बड़ा जरूरी है।
2: वो जांच से पता लगेगा
1: तो अपने खेत में
0: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नाइट्रोजन हमें डालनी है लगभग 15-20 किलो, 25 किलो तक, बहुत कमी हो मृदा में तो 25 किलो, नहीं तो 20 किलो से थोड़ा कम प्रति हेक्टर की दर से, और फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम तक, और इतनी ही मात्रा में पोटास। कुछ क्षेत्रों में बोरोन की बड़ी कमी हो जाती है, रिजगा वाले क्षेत्रों में, या जिंक की कमी वाले क्षेत्र हैं वहां पर बोरोन या जिंक सल्फेट से जिंक का उपयोग करें। और यदि बिजाई के समय नहीं डाला है तो जिंक, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो बाद में खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं, परंतु पोषक तत्वों की पूर्ति बड़ी जरूरी है। यदि इनसे उपयोग नहीं करते हैं तो जो गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जरूर डाल दें बिजाई से 15-20 दिन पहले। बात जहां तक इसकी जई की आती है उसमें 80 से 100 किलोग्राम, और यदि ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की कमी है तो 120 किलोग्राम तक नाइट्रोजन उपयोग करनी है, और वो सारी नाइट्रोजन बिजाई के समय नहीं देनी है, सिर्फ एक तिहाई मात्रा ही अभी देनी है, बाद बाकी जो पहली सिंचाई के पश्चात और दूसरी जो पहली कटाई है उसके पश्चात तीसरी खुराक देनी है। फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा वही 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, उसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल देते हैं तो जिंक की भी पूर्ति हो जाती है यदि आपके क्षेत्र में जिंक की कमी है।
2: लेकिन कई बार किसान भाई सोचते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा दे देते हैं।
1: जी उसके नाइट्रोजन जितनी संस्तुत है उतनी ही देनी है, ज्यादा मात्रा देने से उनको लगता है वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, परंतु वो इतना सकुलेंट पौधा हो जाता है कि उसमें कीट और रोगों का प्रकोप शुरू हो जाता है, तो एक तरह से आ बेल मुझे मार वाली बात है, कीड़े और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो कभी भी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं देनी है। और भारत सरकार ICAR सब प्रयासरत है, अभी खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य ही यही है कि आप खेतों में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करें, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नहीं डालनी है, ऐसा नहीं है कि कोई वृद्धि हो जाएगी तो हमें बहुत मुनाफा हो जाएगा, कीट और रोगों को निमंत्रण देते
2: हैं। डॉक्टर साहब सिंचाई की बात और करते हैं
1: शॉर्ट में, सिंचाई ये जो अभी जैसे ही बिजाई करते हैं उसके 3 से 4 दिन बाद हल्की सिंचाई करें, और उसके बाद 10-15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें, और सिंचाई विधियां यदि आधुनिक हो जैसे कि रेनगन है या ड्रिप है स्प्रिंकलर है उनकी तरफ जाएं तो हम ज्यादा अच्छा है, ताकि पानी बचाएं और भविष्य को बनाए रखें, और एक खरपतवार प्रबंधन का जरूर ध्यान रखें, शुरुआत में ही सही डेंसिटी में बिजाई करें, और आप जो यदि पेंडेमिथालिन नामक जो खरपतवार नाशी आता है उसका छिड़काव कर देते हैं तो खरपतवारों का जमाव नहीं होता है। तो ये एक इस तरह से एक समन्वित जल प्रबंधन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन करते रहते हैं तो इसका उत्पादन हमें मिलता है। एक लास्ट में एक चीज छोटी सी और बताना चाहूंगा कि हमें कटाई प्रबंधन का भी ध्यान रखना होगा। पहली कटाई ज्यादा जल्दी कर दी तो उत्पादन कम मिलेगा, और देरी से कर दी तो रेशे की मात्रा पौधों में ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारा पशु स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि 50-55 दिन की फसल हो तभी उसकी कटाई करनी है, और जो पहली कटाई करते हैं तो वो 5 से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक से करें ताकि पुनर्वृद्धि अच्छी हो, और कटाई के पश्चात पानी दे दें। दूसरी कटाई जब लेते हैं तो उसका अंतराल करीब करीब 4 से 5 सप्ताह का रखते रहें, और इस तरह से ज्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं।
2: आपने इतने सरल शब्दों में और इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल धन्यवाद सर, और हम भी आपसे इजाजत लेते हैं। हम सभी किसान भाइयों से अपना ख्याल रखें और अपने खेतों का भी अच्छे से ख्याल रखें। मैं सुषमा और मेरे साथी निरंकार आपसे कहते हैं नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार

0: जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागजी और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said that every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant relief for whatever is due under the law. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to the India Bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं।
4: द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ओपन टू एवरीवन। एनी पर्सन वेदर एन ऑर्डिनरी सिटीजन और अ मेंबर ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी हैज द राइट टू अप्रोच अस। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज दिस राइट। वी विल हियर द ग्रीवियंसेस एंड एड्रेस देयर कंसर्न्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द लीगल फ्रेमवर्क। आई रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे एंड रिप्लाइड टू इट लास्ट नाइट एंड आई हैव साइटेड द रीजंस फॉर एक्सप्रेसिंग माय इनएबिलिटी टू मीट। आई हैव मेंटेन्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द लेटर।
3: इस लेटर की कंटेंट साबुन से पूछिए, मैंने उसकी confidentiality maintained here.
2: The BJP has accused the Congress leader and the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, of weakening the constitutional institutions and tarnishing the image of the country. Briefing media in New Delhi today, senior BJP leader and party MP Anurag Singh Thakur alleged that whenever the Congress party suffers electoral defeat, it sometimes raises questions on electronic voting machines and sometimes on the election commission. Mr. Thakur said that Congress should produce evidence instead of making accusations only. He said Rahul Gandhi also could not submit any evidence when he met President Draupadi Murmu along with the opposition delegation regarding alleged irregularities in special intensive revision. Delhi police has designated 3 new venues for protests and demonstrations

0: that is Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground in East Delhi. In an order, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar announced that Jantar Mantar has been denotified as a designated protest site. The Union Home Ministry had constituted a committee to identify suitable alternative venues to ensure citizens' right to organize protests and demonstrations. Delhi Metro has informed that entry and exit gates of all metro stations of the Delhi Metro network are now open. The interchange facility at all the concerned metro stations is also available. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas and strong sense of purpose to policy making. Mr. Goyal was addressing the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. He highlighted India's resilience and growth trajectory despite global challenges. He further expressed confidence that India's economy would reach $30 trillion by 2047.
1: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. So, you are an aging population, I have a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I will remain below 30. So, from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing large economy. I tell every minister, this is a paper, you put any growth rate you want and calculate your GDP in the next 22 years, up to 2047. Let's put the two numbers side by side and then realize there's no country in the world which will probably double their GDP.
0: Defence Minister Rajnath Singh has said that over the past few years, the government has focused on achieving self-reliance and modernization across all sectors, from weaponry and technology to clothing, equipment and training. The Defence Minister was speaking during the signing of MOU between the Indian Army and the Food Corporation of India in New Delhi today. The centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Michael Woodford for developing macroeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, दालें हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरहर, मसूर, उड़द, मूंग और चना जैसी दालें शरीर को प्रोटीन देती हैं। खासकर उन लोगों के लिए दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो अपने भोजन में मांस या मछली का इस्तेमाल नहीं करते। यही कारण है कि दालों का संबंध केवल खेती और किसानों से ही नहीं बल्कि देश के पोषण और खाद्य सुरक्षा से भी है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बावजूद घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हमें कई बार दूसरे देशों से दालों का आयात करना पड़ता है। इससे देश को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बदलाव का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2025 को दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन क्यों महत्वपूर्ण है।
4: श्रोताओं, दालें भारतीय भोजन का अहम हिस्सा हैं। इनमें लगभग 20-25% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों के विकास और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। दालों में प्रोटीन के साथ साथ कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, इसीलिए दालों का पर्याप्त उत्पादन देश की पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में दालों की मांग बहुत अधिक है। देश की बड़ी आबादी अपने दैनिक भोजन में दालों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है ताकि लोगों को उचित कीमत पर दालें उपलब्ध हो सके और दूसरे देशों से आयात पर निर्भरता कम हो। श्रोताओं, इसी उद्देश्य से दलहन में आत्मनिर्भर निर्भरता मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत सरकार ने वर्ष 2030-31 तक दालों का कुल उत्पादन लगभग 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाकर 1130 किलोग्राम करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तूर यानी अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले और बदलते मौसम के अनुकूल बीज उपलब्ध कराने की योजना है। ऐसे बीजों से फसलों को मौसम की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। मिशन के तहत 6 वर्षों में 87,50,000 मुफ्त बीज किट वितरित करने का और 1,26,00,000 क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का क्षेत्र भी बढ़ाना जरूरी है। इस मिशन के तहत दलहन की खेती का क्षेत्र 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030-31 तक कुल 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती करने की योजना है। इसके लिए 489 जिलों में क्लस्टर आधारित व्यवस्था अपनाई जा रही है। आसान भाषा में कहें तो जिन क्षेत्रों में दालों की खेती की अच्छी संभावना है, वहां किसानों को समूह के रूप में जरूरी सहायता दी जाएगी। इससे बीज, खेती की तकनीक और उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। धान की कटाई के बाद खाली होने वाले खेतों में दालों की खेती को बढ़ावा देना भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रोताओं, केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के माध्यम से किसानों को मूल्य सुरक्षा देने पर जोर दे रही है। विपणन सत्र 2024-25 में उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,400 रुपए प्रति क्विंटल था। इसे वर्ष 2026-27 के लिए बढ़ाकर 8,200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए से बढ़कर 8,450 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 6,700 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
3: श्रोताओं, सरकार ने किसानों से दालों की खरीद के लिए भी व्यवस्था की है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड को इस मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। श्रोताओं, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य दालों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत देश में 1,000 दाल प्रसंस्करण इकाइयां यानी दाल मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन इकाइयों में दालों को साफ करने, छिलका हटाने, उनकी गुणवत्ता सुधारने और बाजार में बिक्री के लिए तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे। इससे दालों के प्रसंस्करण से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। श्रोताओं, अब सवाल है कि इस मिशन के लक्ष्यों की दिशा में भारत ने अब तक कितनी प्रगति की है और किसानों को इसका क्या लाभ मिल रहा है, आइए अब जानते हैं।
5: श्रोताओं, भारत में दालों के उत्पादन और खेती के क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2024-25 में देश में दालों का कुल उत्पादन 256,83,000 टन था। वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 274,09,000 टन हो गया। इसी अवधि में दालों की खेती का क्षेत्र 277,20,000 हेक्टेयर से बढ़कर 286,46,000 हेक्टेयर हो गया, यानी अधिक जमीन पर दलहन की खेती की गई और कुल उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। श्रोताओं, दालों की पैदावार में भी सुधार हुआ। वर्ष 2024-25 में प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 926 किलोग्राम था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 957 किलोग्राम हो गया। देश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल दालों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। श्रोताओं, दालों के आयात और निर्यात के आंकड़े भी इस क्षेत्र में हो रहे बदलाव की जानकारी देते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 46,428 करोड़ रुपए की दालों का आयात किया। वर्ष 2025-26 में ये राशि घटकर लगभग 31,794 करोड़ रह गई। इस तरह आयात के मूल्य में करीब 31% की कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर भारत से दालों का निर्यात भी बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में दालों का निर्यात लगभग 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 970 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत अपनी दालों का निर्यात प्रमुख रूप से चीन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, अमेरिका और श्रीलंका को करता है। श्रोताओं, इन आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सरकारी खरीद की भूमिका भी अहम है। NCCF के दाल खरीद डैशबोर्ड के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 17 जून 2026 तक 9 राज्यों में कुल 10,55,000 टन दालों की खरीद की गई। इसके लिए किसानों को सीधे 7,047 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान जारी किया गया। इस व्यवस्था से 4,69,000 किसानों को लाभ मिला। श्रोताओं, में बात करते हैं मिशन के अंतर्गत तैयार की जा रही प्रसंस्करण सुविधाओं की। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 1,000 दाल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके पहले चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 528 इकाइयां आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की सुविधा विकसित करने के लिए 23 दाल प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई। इनमें से 18 इकाइयों का काम पूरा हो चुका है।
3: श्रोताओं, इस मिशन में डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि मैपर नामक एप्लीकेशन के माध्यम से खेतों की स्थिति, खेती के समूह और फसलों के प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी जुटाने में मदद मिलती है। इसी तरह साथी यानी सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसिबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल का इस्तेमाल बीजों की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से बीज उत्पादन से लेकर प्रमाणन और बिक्री तक की जानकारी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के जरिए किसानों, खेतों और फसलों से जुड़े जानकारी को जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे खेती की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने और फसल उत्पादन का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ई समृद्धि और विस्तार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन खेती से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल अधिक दालें पैदा करना नहीं, बल्कि किसानों को सशक्त बनाना और देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुणदीप सिंह। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra Karyakram mein aapka swagat hai. प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें। कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभव रोहतगी।
0: थैंक यू अमित। Benchmark domestic indices decline, Sensex sheds over 500 points, Nifty settles at 22,363. Country's retail inflation rises to 5.54% in September this year, and global crude oil prices rise over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों का नुकसान, निफ्टी 22,363 के स्तर पर दर्ज। सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.45% दर्ज हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की तेजी।

0: And before we give you the economic details, the stories, very important announcement for you, our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार आज कारोबार की शुरुआत में मजबूती के साथ तो खुले, लेकिन शुरुआती बढ़त कायम न रह सकी। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट से 548 अंक गिरकर 71,925 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसए मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices failed to hold their initial gains and ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points, nearly 0.8%, to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points or 0.7% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The Mid-Cap 100 index edged up marginally and the Small-Cap 100 index gained 1.4%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, hospitals shed 2%, FMCG fell over 1.3% and PSU banks dropped 1%. In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3% and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined and shares of 281 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पे दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ मांगली दिल्ली से।
1: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है, तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो कालाबाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा, मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं? बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए सर।
1: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
3: जोशी साहब, देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्यौहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहाँ तक सवाल स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए, स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाएंगे, कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी,

0: बहुत ज्यादा कमी आएगी। लेकिन हाँ, उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ कीजिएगा, नवंबर के बाद जो है, 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी कीमतों में गिरावट आए।
1: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended, after 8 weeks that the market closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
0: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is the one of the big problems. So if you see the crude price is almost around $105 yes. a barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arab. That means the more disruptions possible in the crude oil market. Hmm. Then there was expectation that inflation is expected to go up, as we have seen that inflation is now 5.54%. And that is giving a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike. So this was the third one. And other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks. Yeah. So combination of all the bad news had an impact on the stock market. And market is still looking for some kind of positive news. But unfortunately, they are getting nothing. And that is why we are seeing lot of selling pressure in the market.
2: मुंबई से अगले श्रोता के तौर पर रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लड रिलेशन में मैं मेरे लड़के के नाम, मिसेस के नाम पर कर सकता हूँ क्या, ये सवाल है। और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे, ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहे?
0: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं? चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफर जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है। बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुंच जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेजी दिखेगी। जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में 3 हैं, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: या नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा।
0: गुड इवनिंग।
4: हाँ सर, एक सवाल अभी आप से सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75। अब वो पिछले 3-4-5 दिन से देयर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, which is adding to the core inflation for the consumers to buy.
0: Core inflation has nothing to do with the onion, because no,
4: core inflation,
0: is minus food and fuel. Yeah,
4: I know. What I meant by core inflation concerning the consumer's daily buying.
0: Please be clear on that, sir. Thank you, sir. Please go ahead.
4: And second, so the government ke jo right, jo government ke domain mein aati hain consumer items supply karna, unki supply to aise maahol mein thodi si regular honi chahiye. That's all my question.
0: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं, तो जो 5.54% महंगाई के आंकड़े हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफी ज्यादा है। और दूसरे अलावा और भी 3 सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ कीजिएगा भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और की बात करें, यानी कि टॉप 5 आइटम्स में 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति इसकी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। इस बार प्याज की पैदावार में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है। तो मदर डेयरी पे, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहां पर उपलब्ध है जहां तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी मैंने देखा है। और बाकी जो जिसको कहते ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी, वो भी चल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है, वहां से नई फसल जल्दी ही बाजार में आएगी। तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं,
2: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
0: और नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है।
2: जी शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में टिगर नहीं है, कच्चे तेल की कीमतों ने उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटीमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है। क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, हम कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहां से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा, या बाजार को वहां से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
0: देखिए, पॉजिटिव तो वहां से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है, और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
1: जी,
0: ब्याज दर बढ़ती है तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक में ही पैसा रखो, या ऐसे जगह पे रखो जहां आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है, और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफी ऊंची है, और भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है। अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है। अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे। दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, और उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ गई है।
1: शिशिर, यू नो, अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ triggers, but before I come take my question to you, we have the next caller with us online. Nitin is calling us from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
5: नमस्कार जी।
1: नमस्ते, अपना सवाल पूछें।
5: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में 1 साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, 1 साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे, तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनो के, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे, तो उस सिक्के को हम सेल लेंगे, तो जो वैल्यू हम लाएंगे, तो उसके बाद वो हमसे रिटर्न में लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरेते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है, और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे खरीद लिया है, तो 1 साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी।
1: शिशिर, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं, जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं।
0: मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला आपने अगर 1 साल के लिए ब्याज के लिए 1 साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है, और वहां पर आपने 1 साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपने देखा होगा कि आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको एक साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको तीन महीने में, छह महीने में, साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो तीन महीने छह महीने की बात नहीं। अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद पूरी होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा, तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे।

0: से साल में जाएंगे, तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर और उसे बेचने जाते हैं, तो किसे आप बेच रहे हैं, किसी एक संगठित जगह पे बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं, और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पे जाते हैं तो आपको नगद तो मिल जाता है जो उस समय आपके भाव है, गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आपको उससे कम मिले भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं।
1: जी, सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट एज यू नो अमित वाज सेइंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, they are not getting positive triggers from anywhere, but for an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because there's a, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices, in the stock market share prices, and so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
0: certainly, because market always needs money as well as the patience. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
1: Yes.
0: So what happens that when there is a correction in the market, we saw, oh, we are going to lose everything. Yeah. But those are the, I mean, something, most of the time it is the notional loss.
1: Yes.
0: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stake at a stock at a very low price, that's really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
1: Yes.
0: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices, and you should also have some money put into the mutual fund.
1: Yes.
0: And apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold, that would be really good.
1: Right.
2: अगले श्रोता के तौर पे महाराष्ट्र से के शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना सवाल पूछिए।
3: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: मेरा क्वेश्चन ये था कि टीयर टू जो सिटी है, मतलब टीयर वन में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या बड़ा सिटी, वहाँ बंदरगाह होता है, पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत जाता होता। टीयर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
0: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और आपको एक चीज़ बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट हम आपको बताएं कि आईटी कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पे खोले हैं जहां पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहां पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहां पर खोले हैं। तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई है या फिर वहां पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है। तो आप अगर छोटे शहर में है या मझोले शहर में है तो वहां पर आर्थिक परिस्थितियां और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
2: शिशिर, अगर रुपए की स्थिति पे आते हैं, रुपए ने तकरीबन आज 1 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी, हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद सीआरआर रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
1: सीआरआर रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने।
0: देखिए, अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ये असर कुछ समय तक बना रहेगा।
2: चलिए और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी और लंदन के शेयर बाजार 0.8% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
1: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated to 5.5 4% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83%

0: 5% recorded in August. According to the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas increased to 6.08%, while in urban regions it rose to 4.88%, and food prices continue to remain a key driver of inflation. A very brief comment from you.
1: Anubha, just one thing. It's a median target rate of 4%, which we have breached. In fact, that was breached last month itself. Now, the concern is that if it exceeds 6%, then there will be a bigger problem. So, and as of now, we are expecting that it will breach.
0: It will breach.
2: दिल्ली से श्री एनपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं. जी
3: सर, गुड इवनिंग टू द ऑल पैनलिस्ट. आई जस्ट वांट टू नो दैट इफ द इट्स अबाउट यूपीआई. इफ द यूपीआई अमाउंट इज 3000 एंड वी डिवाइड द पेमेंट इनटू 2000 एंड 1000 इन टू टाइम्स, सो देन आल्सो इट विल अट्रैक्ट द यू नो द सरचार्ज.
1: If it is less than 2000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2000 rupees and 1000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course it will. 2000, for the 2000 rupees it will, because 2000 or more.
0: Jee.
1: So it will attract MDR. But please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer, it is a shopkeeper who has to pay at the time of getting money from the bank or the institutions.
2: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है. यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है. भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया. हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही. इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया. हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए. इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं. जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
4: हेलो सर, नमस्ते. मैं आकाश बोल रहा हूँ. मेरे दो सवाल है. पहला सवाल, जैसे मेरी एफडी बनी हुई है, तो उसमें एक साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया. तो दूसरा सवाल, जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट करा है अभी, तो गोल्ड जैसे एफडी का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या एफडी में ही हमें बने रहना चाहिए? और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
1: देखिए, आपकी शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना है, उसी शर्त पे भुगतान होगा. ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है. रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही, तो आपको नुकसान होगा.
0: And let's move on to the next story. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Mike Woodford for developing microeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments and central banks' ability to respond to economic fluctuations. The Nobel Committee said the economists developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
5: Yeah, my quick question to Market Mantra team and Sarit. Sir, जो भी गलत हो सकता था वो शायद हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है. अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो have we touched the rock bottom? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आपका क्या ओपिनियन?
1: बाजार कितने स्तर पे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां.
0: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष

0: has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee in New Delhi today. The minister called upon businesses in both countries to translate the opportunities created by the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement into expanded trade, investment, partnerships and job creation. And let's move on to commodities now. Global crude oil prices reversed course and moved higher today amid skepticism over US President Donald Trump's announcement of energy ceasefire between Ukraine and Russia. Brent crude was trading 1.2% up at $105.99 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading over 1.2% higher at $92.98 per barrel at the time of writing this report.
1: घरेलू सराफा बाजार में सोना 0.9% की गिरावट से 1,48,061 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान से 2,20,295 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में, अगर दोनों चीजों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नजर आ रहा है।
2: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमजोर होगा, और कच्चे तेल की जहां तक बात करें, सऊदी अरब और उन जगह पर हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने, मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते
1: जी। शिशिर कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363। कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.54% इन सितंबर दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार बाधाओं को दूर करने और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी

0: बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के और संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान भी श्री राहुल गांधी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, मुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBT मैदान शामिल हैं। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries. The Commerce and Industry Minister also addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. Mr. Goyal has emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policy making. He expressed confidence that India's economy would reach $30 trillion by 2047.
2: All we have to do is to demonstrate the strength of 1.4 billion people. So, you are an aging population, I am a young population. My average age is below 30 years. For the next 30 years, I will remain below. So, from now until 2047, I will become a $30 trillion economy and the fastest growing large economy. I tell every minister, this is a paper, you put any growth rate you want and calculate your GDP in the next 22 years, up to 2047. Let's put the two numbers side by side and then realize.
1: Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to India Bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said that he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
3: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body, has the right to approach us. Every citizen of India has this right. We will hear the grievances and address their concerns in accordance with the law and the legal framework. I received the letter yesterday and replied to it last night, and I have cited the reasons for expressing my inability to meet. I have maintained the confidentiality of the letter.
1: Delhi police has designated 3 new venues for protests and demonstrations: Ramlila Ground, Murari Ground and CBD Ground in East Delhi. In an order, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar announced that Jantar Mantar has been denotified as a designated protest site. Delhi Metro has informed that entry and exit gates of all metro stations of the Delhi Metro

0: आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात की कमान संभाली, तब लक्ष्य यही था कि गुजरात की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, गुजरात का नाम भारत के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचाया जाए। गुजरात से लेके विश्व मंच तक का सफर, उभरता भारत, विश्व मंच पे डटा भारत, आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास विशेषज्ञों के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी आकाशवाणी समाचार में एम्बेसडर अशोक सज्जनहार का और श्री अतुल अनेजा का। दोनों ही हमारे पैनलिस्ट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे अपनी बात बहुत ही बखूबी से रखते हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है आकाशवाणी में। अम्बेसडर सज्जनहार, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर हम बात करें तो साल 2003 में शुरू हुआ ये समिट, एक इन्वेस्टर समिट के रूप में शुरू किया गया था। बीते सालों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म बन गया है जो सरकारों को, बिजनेसेस को, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और थॉट लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देता है, वहां पे सबको साथ लेकर आता है। अब इतने साल बीत गए और वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमीकंडक्टर्स, एआई, एरोस्पेस जैसी नई तकनीकों पर भी बात करता है। अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो उसका फोकस एरिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल ग्रोथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े बड़े विषयों पे चर्चा करेगा। और ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जो भारत का फोकस है विकसित भारत की ओर, उसकी तरफ भी चर्चा करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी एम्बेसडर सज्जनहार कि आपको लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने देश को एक दिशा दिखाई कि भारत के ग्लोबल स्टेज पे राइज का एक ये शुरुआती तार जोड़ा है? आप वाइब्रेंट गुजरात समिट को वैसे देखते हैं?
2: जी, बहुत धन्यवाद दीक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जैसे आपने अभी जिक्र किया, 2003 में इसकी शुरुआत हुई और हमें देखना होगा जो इसकी शुरुआत उस समय क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है जो 2002 में कम्युनल रायट्स हुए थे वहां पर गुजरात में हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके पहले हमने देखा है 2001 में भुज में बहुत ही भयानक वहां पर भूकंप आया था, उससे बहुत ही तहस नहस वहां पर हो गया था। गुजरात को एक नया प्रोफाइल देने के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, उसकी शुरुआत की गई 2003 में और तब से नए नए जो कार्यक्रम थे, नए नए जो आइडियाज थे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर वो ऑटोमोबाइल्स हो या फिर उस प्रकार के जो फॉरवर्ड लुकिंग तरीके बनाए गए हों, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय शुरुआत की। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई और फिर हर दो साल बाद उसको वहां पर आयोजित किया गया। तो अलग अलग तरीके से वहां पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ लेकर आए गए। 2003 के बाद 2005 को फिर से शुरुआत की गई। 2005 से 2007 में हर दो साल बाद इसका हुआ और अब अगर देखा जाए तो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी थे वहां पर, मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो केवल गुजरात में नहीं, अब हम देख रहे हैं जो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सब नए नए वाइब्रेंट अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स के लिए इसको आगे बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और आपने जैसे अभी कहा जो आगे ले जाते हुए दो साल के बाद फिर से ये वाइब्रेंट गुजरात होगा, तो उसमें ये बिल्कुल तार है विकसित भारत 2047 में आगे चलने का। और इसमें जो नए नए तरीके आए हैं, क्योंकि शुरुआत तो पहले की गई थी इन सभी क्षेत्रों से, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, फिर धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दहेज का, वो वाले सब वहां पर किए गए, परंतु अब इसको और बहुत ही विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नए तकनीक जो हैं, उनको भी साथ में लाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लाया जा रहा है साथ में, जिससे कि आगे चलते हुए जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है जो हम 2047 तक अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे, विकसित भारत को हम अचीव करके रहेंगे, वही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ जो वाइब्रेंट गुजरात की जो कड़ी शुरू हुई थी 2003 में, वो अभी तक चलती आ रही है और इसको बिल्कुल आगे ले जाते हुए न केवल गुजरात में परंतु पूरे देश में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं और पूरे देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
1: अम्बेसडर सज्जनार, आपने काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अगर हम G20 समिट की बात करें, G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत के 60 से ज्यादा शहरों में होस्ट की गई। G20 की अगर हम थीम की बात करें तो G20 की थीम भी भारत की प्रेसिडेंसी में थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले कि हम इस पे चर्चा करें, हम सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर समिट को होस्ट करते हुए क्या कहा।
3: एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
1: मिस्टर अनीजा, G20 समिट ने भारत की डिसाइसिवनेस को एक गति दी है और ये भी दर्शाया कि हम इंक्लूसिव भी हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी हमें दिखाया गया है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है?
4: देखिए, G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि भारत अपने आप को एक ब्रिज की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सका, जिसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ना था। और ग्लोबल साउथ को जोड़ने की अगर बात करें तो फिर जो है 56 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सदस्य बने G20 के, तो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव फील या एक इमेजिनेशन प्रदान की गई G20 को। साथ में बात हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जो इसकी मेन थीम थी कि आप अगर जोड़ना चाहते हैं देशों को या लोगों को, डाइवर्स लोगों को, तो उसकी एक बुनियाद सोच है जो है कि एक दुनिया, एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार है तो आपका उसमें दायित्व बनता है कि पहले परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको आगे लेके चले। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ये G20 में जो दर्शाया गया, जिससे आप एक वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पे आप ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को आप जोड़ सकते थे। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके पीछे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो G20 की थीम थी वो भी अभी आएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन या रशिया के बीच में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो। तो वे कॉमन थीम जो थी, जो शुरू होती है वाइब्रेंट गुजरात से और एक तरह से कल्मिनेशन पॉइंट या एक तरह से मेच्योर लेवल पे आती है G20 के अंदर।
1: अम्बेसडर सज्जना, G20 समिट में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया।

0: गया। और साथ ही साथ जो मैंने पहले भी कहा कि G20 को भारत ने दर्शाया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो एम्बेसडर सज्जनार, आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि अफ्रीकन यूनियन को इस फोल्ड में लाने के पीछे प्रधानमंत्री की कौन सी दूरदर्शी सोच रही होगी।
1: देखिए, जब से ये G20 की शुरुआत हुई थी 2009 में 2010 में, जबकि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो तब से ये था जो अफ्रीका के जो देश हैं उनकी कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। केवल साउथ अफ्रीका एक देश था जो कि G20 का एक सदस्य था, परंतु तब से बहुत सालों से हमेशा से अफ्रीकन यूनियन ये हमेशा कहता रहा जो उसको इसका सदस्य बनना चाहिए। हम जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन सदस्य है, यूरोपियन यूनियन 27 देश है उसमें, परंतु अफ्रीका के जो हैं वो 54 देश हैं, परंतु उनकी कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे याद है, तब जब बाली का समिट हो रहा था तो तब उन्होंने कहा था हम गारंटी देते हैं जो हमारे जब अध्यक्षता होगी तो हम जरूर अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्यता दिलाएंगे। और आपको याद होगा जो 9 सितंबर 2023 को जब पहले दिन ही ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उस समय पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया जो ये पूरी तरीके से सभी देशों को मान्य है, जो अफ्रीकन यूनियन को भी एक इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसे कहा जाए ग्लोबल साउथ, जो भी है विकासशील देश है, उनके जो भी क्षेत्र है उनको सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा जो जब भारत ने इसकी अपनी अध्यक्षता संभाली थी 1 दिसंबर 2022 को, और उसके एक महीने के अंदर ही हमने जिसे कहा जाए तो एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का ऑर्गेनाइज किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 11-12 जनवरी को, जो 125 देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज थे, विकासशील देश थे, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसमें शिरकत ली। और उसमें हर लेवल पर, चाहे वो राष्ट्रपति के स्तर पर हो, अलग अलग देशों ने उसमें सम्मिलित हुए, या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री या अन्य मंत्रियों के लेवल पर उन्होंने इसमें शिरकत की। और फिर जो भी उनसे पूछा गया जो उनकी क्या मंशाएं हैं इसमें, तो सभी के, चाहे वो डेट हो, चाहे उनका फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन लेड ग्रोथ हो, ये सभी चीजें इसमें जो G20 की बातचीत हुई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जैसे अतुल जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जो करीब 200 मीटिंग की गए, 60 शहरों में ये मीटिंग की गए, और ये जो सभी थे डेवलपिंग कंट्रीज के, विकासशील देशों के, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी इनको सबको लेकर आया गया। तो मैं समझता हूँ जो भारत ने ये बताया है, जो विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत उभरा है, हमारा जो इसमें थीम भी था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो था वसुधैव कुटुंबकम था, परंतु उसको और एक्सपैंड कर दिया गया और इस हिसाब से हमने इसको आगे लेकर जाएगा।
0: मिस्टर अनेजा, G20 समिट को लेके एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस पूरे समिट के अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी G20 के साइडलाइंस पे लॉन्च किया गया, और GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी इंटरनेशनली पसंद किया गया, सपोर्ट मिला, और अब इसके 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो मिस्टर अनेजा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च करने के पीछे की सोच क्या थी।
2: दीक्षा, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और कम से कम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो, ये एक ग्लोबल एक तरह से मिशन है भारत की, खास करके जो देश जिनके पास कच्चा तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। और खास करके हम देख रहे हैं जो ईरान में युद्ध हो रहा है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा फोकस है, तो एनर्जी के ऊपर, बिना ऊर्जा के, बिना क्लाइमेट चेंज को रोकते हुए, रिन्यूएबल्स के बिना हमारी आगे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बनेगी, ये हमारी एक बुनियादी सोच है। G20 में जो वासुदेव कुटुंबकम या जो दो स्लोगन्स उसके आए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अब अगर आप इनको देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सोच ये है कि भारत आइडियोलॉजी की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है, अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंगेजमेंट रही है G20 के अंदर, उसमें ये एक बड़ी खास बात थी कि भारत

0: एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो तो आपका एक खास दर्जा रहता है, और बाकी देशों को खास करके ग्लोबल साउथ को जोड़ने में उसमें तो आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एलिमेंट भी इसके अंदर गया था ये G20 के अंदर। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहूंगा बात, अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें तो भारत, आपको याद होगा इन्हीं दिनों में ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट होते थे, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा उन समिट्स में एक से ज्यादा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारा एक तरह से सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, एक विरासत है हमारी। तो वो आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से अलग होके आप डीपर जा रहे हैं, और आपकी अपनी सोच एक तरह से एक सिविलाइजेशन सोच और बढ़ रही है। और ये जो हमारी एंगेजमेंट्स, एक्सटर्नल एंगेजमेंट G20 हो या जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है कि शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से, और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बना है जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है, जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आपने काफी अच्छे से हमें समझाया पूरी जो इसके पीछे की सोच थी उसको। आगे बढ़ते हुए अब मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से बात करना चाहूंगी ब्रिक्स समिट के बारे में, और अम्बेसडर सज्जनार सबसे पहले मैं आप ही की राय जानना चाहूंगी। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, और हमने देखा है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखता है। और ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए अभी दिल्ली में ही पिछले महीने 12 और 13 सितंबर को लीडर्स समिट दिल्ली में ब्रिक्स का होस्ट किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री के कुछ इम्पोर्टेंट अंश जो उन्होंने ब्रिक्स समिट में लीडर्स समिट को एड्रेस करते हुए बोला।
2: भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: अम्बेसडर सज्जनार, ब्रिक्स की एक्सपैंडिंग मेंबरशिप और बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इस ग्रुपिंग को एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड और ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट जो हमने जिसकी बात भी करी कि प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाए, और इस प्रोसेस में भारत को किन कम्पीटिंग नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है?
3: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं इसको ब्रिक्स समिट जो हुआ है 12 और 13 तारीख को सितंबर को, और जो इससे पहले G20 हुआ 2023 में, मैं समझता हूँ जो चुनौतियां भारत के लिए दोनों समय बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अधिक थी, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी ही चुनौती थी जब एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में बिल्कुल ही पूरा जो विश्व था वो अलग थलग दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि एक तरफ उस समय रूस और चीन एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो सब खड़े थे, और ये भारत के ऊपर सब कुछ मयसर हुआ जो हम दोनों को साथ में लेकर आए और एक प्रकार का जो यूनानिमिटी अग्रीमेंट वहां पर लेकर आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, आपको मालूम है जो शुरुआत हुई थी 2001 में, पहली मुलाकात हुई 2006 में जब विदेश मंत्री मिले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, 2009 में सबसे पहली बार रूस के यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, परंतु अब पिछले कुछ सालों में क्योंकि हालात पूरे विश्व में इतने ज्यादा उथल पुथल हो गए हैं, जो बहुत देश चाहते हैं जो वो ब्रिक्स के सदस्य बने, और हमने देखा है जो 2023 में जोहानसबर्ग के समिट में, ब्रिक्स के समिट में यहाँ पर पहले 5 सदस्य थे, अब उससे 11 सदस्य हो गए हैं, और इसमें ये जो ब्रिक्स के देश हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब और भी बहुत देश हैं वो अपना हेजिंग चाहते हैं।

0: जितना ज्यादा सभी मिलकर ये देश मिलकर साथ में काम कर सके वैसा ही वो होना चाहिए। तो भारत ने ये ब्रिक्स का जो समिट है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि G20 में हमने किया था वैसा ही हमने अग्रीमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं, और मैं समझता हूँ जो आगे चलते हुए ये भारत ब्रिक्स को भी आगे लेकर जाएगा और सभी देशों को साथ में मिलाकर इनको आगे ले जाने में सफल हुआ है और आगे ये सफल होगा। एक चीज मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा, जो जब G20 की हम बात करते हैं थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा हमने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी उस समय ये शुरुआत की, और मैं समझता हूँ जो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये वाले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी देशों को साथ में लाने में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहेगा।
1: अम्बेसडर सज्जनहार की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अनीजा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी अम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि हम कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अगर कनेक्टिविटी और बाकी इसके अलावा अल्टरनेट रूट की भी तैयारी की जा रही है, और इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने वेस्ट एशिया में काफी समय तक अपना करियर बनाया है, वहाँ पे आप रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर अभी जो हम हालात देख रहे हैं वेस्ट एशिया के उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वहां से क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद हुआ तो काफी देशों को दिक्कतें आई, ना कि सिर्फ भारत को, तो अगर इस पूरे प्रकरण में भारत एक अल्टरनेट रूट और एक स्टेबल रूट बना के दुनिया के सामने रख पाता है तो उससे भारत

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 में श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। श्री गोयल ने आज ही नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूक

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: के पास हो जो किसी भी सरकारी विभाग के कामकाज को देखना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है और कुछ दस्तावेज पाना चाहता है। अब इसकी आवश्यकता तो बहुत पहले से महसूस हो रही थी। यदि हम इसके ऐतिहासिक पहलू पर जाएं, स्वीडन ऐसा देश था जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया था। 19वीं शताब्दी की बात है। जितनी ज्यादा लोगों के पास जानकारी होगी, जितना खुलापन होगा, जितनी पारदर्शिता होगी सरकारी कामकाज में, उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। इस बात की आवश्यकता भारत में भी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। स्वतंत्रता के बाद से ही मांग उठ रही थी कि भारत भी उन देशों में शामिल हो जहां पर सूचना का अधिकार हर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के साथ जुड़ जाए। शने शने ये प्रगति हुई और 2005 में जाकर के एक अधिनियम के रूप में ये सामने आया, संविधान में इसको शामिल किया गया। आज के दिन यानी 12 अक्टूबर की हम बात करें तो वो दिन था 2005 में 12 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर को छोड़कर के बाकी पूरे देश में इस कानून को लाया गया। लोकतंत्र में जब तक हमें पता नहीं होगा जिस सरकार को चुना है वो काम कैसा कर रही है, जो लोग काम करने वाले हैं वो किस तरह से काम कर रही है, तो ये सारी चीजें इसकी मूल भावना में चली जाती है, तो उससे जाकर के ही होता है लोकतंत्र मजबूत। तो इसकी आवश्यकता उसी वजह से महसूस हुई और उसके बाद में जैसे जैसे फिर ये आगे बढ़ा, आज की तारीख में बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है जिसकी वजह से सरकारी तंत्र में भी पारदर्शिता आई है और साथ ही साथ आम आदमी अपने आप को मजबूत महसूस करता है कि मैं सवाल उठा सकता हूँ और सवाल को कानूनी जामा पहनाते हुए मैं उसका उत्तर भी पा सकता हूँ।
2: मैं ये जानना चाहूंगी, अभी आपने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू हुआ था, आज जो है क्या भारत का कोई ऐसा हिस्सा है जहां सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता?
1: नहीं, अब ऐसा कोई नहीं है। कालांतर में जम्मू कश्मीर को भी इसका हिस्सा बना दिया गया, तो आज की तारीख में पूरा भारत कोई भी सरकारी विभाग या सरकारी अनुदान प्राप्त कोई संस्था भी है उससे जुड़ी हुई भी है, और जितने भी निगम हैं, जितने भी परिषदें हैं, जो सरकारी धन से जिनका पोषण हो रहा है वो सब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, कुछ विभागों को छोड़कर जो कि सीधे सीधे देश की सुरक्षा, कुछ इस तरह के सेंसिटिव रिसर्च में जुड़े हुए हैं, जो रक्षा अनुसंधान केंद्र होते हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि वो जानकारियां जो गोपनीय रखना देश के हित में जरूरी होती है।
2: मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? कैसे पूरा दिन जो है वो शिकायतों के बीच बीतता है, या फिर ऐसा है आपको लगता है कि ये जवाबदेही जो है वो आम जनता का भला करेगी?
1: थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि इस पद की क्या आवश्यकताएं होती है। तो जैसा मैंने सूचना के अधिनियम के बारे में बताया, तो उस अधिनियम में हर आम नागरिक के पास है कि वो किसी विभाग से जानकारी ले सकता है और उसके लिए जो भी लोक सूचना अधिकारी होते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने का एक निर्धारित समय होता है, 30 दिन का समय है। यदि वो सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आ रहा है तो 5 दिन और छुट जाते हैं, इस तरह से उसके कुछ प्रावधान है। 1 महीने के भीतर उनको वो जवाब देना होता है। यदि वो नहीं देते तो उसी विभाग का जो सीनियर ऑफिसर होता है जिन्हें की प्रथम अपीलीय अधिकारी कहा जाता है, 45 दिन के भीतर उनके पास जाकर के आवेदन

0: हो सकता है कि भाई मुझे जानकारी नहीं मिली, गलत मिली है, भ्रामक मिली है, अधूरी मिली है, इस तरह की कोई भी बात यदि उसको शिकायत है तो वो जा सकता है, वो होते हैं प्रथम अपील अधिकारी। अब यदि वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है, समय पे नहीं हो रही है, सुनवाई हो ही नहीं रही है या हो रही है लेकिन उसके बावजूद अपीलार्थी जो है वो संतुष्ट नहीं उस जानकारी से, तब उसके पास द्वार खुलता है राज्य सूचना आयोग का। हर राज्य में एक राज्य सूचना आयोग होता है द्वितीय अपील के लिए, जो आयुक्त के माध्यम से ये काम किया जाता है। हमारे पास ये सब शिकायतें आती है तो हम उसकी सुनवाई करते हैं। जब दो पक्ष सामने आते हैं तो एक पक्ष अपनी बात रखता है, दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, तो एक तरह से उसी को सुनवाई करने का ही काम होता है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी होता है यानी कि जो राज्य सूचना आयुक्त होते हैं उनका काम ही होता है सुनवाई करके नियम के अनुरूप और साथ ही साथ अपनी विवेक का उपयोग करते हुए उस सूचना के अधिकार अधिनियम की जो मूल भावना है, हर व्यक्ति को जो जानकारी दी जाना चाहिए वो पहुंचना चाहिए। कानून के अंतर्गत प्रावधान है 81J के अंतर्गत, 81A, 81B, 81C, बहुत सारी ऐसे सूचनाएं हैं जैसे मैंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, इस तरह के उसके क्लॉजेस होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी किसी की भी नहीं दी जा सकती उसके अंतर्गत, यदि वो लोकहित नहीं है तो लोकहित की क्या परिभाषा होती है ये आयुक्त महोदय के जुरिडिक्शन पर होता है, उनके अपने विवेक पर होता है। फिर जैसा भी कानून कहता है आयुक्त महोदय का जो विवेक होता है उसके बाद में एक निर्णय पारित होता है जो दोनों पर लागू होता है। निश्चित तौर पे सुनवाई कानून से बंधी हुई होती है, शिकायतें हर दिन सुनना होता है तो इस तरह से दिन शिकायतों के बीच निकलता है।
1: मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर अगर हम RTI का इस्तेमाल करना चाहें, सूचना के अधिकार का प्रयोग करना चाहें कोई जानकारी हासिल करने के लिए, सहज सरल और गरिमापूर्ण भाषा और तरीका क्या है?
0: हर नागरिक के पास ये जानकारी होना चाहिए कि हम किसी भी विभाग में RTI कैसे कर सकते। सिंपल है, बहुत आसान है, सादे कागज पर आप एक आवेदन बनाएं कि मुझे ये जानकारी चाहिए किसी भी विभाग से जो आप चाहते हैं लेना चाहते हैं। 10 रुपए का मात्र एक शुल्क होता है जो जमा करना होता है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे के यदि आपके पास में तो उसका सबूत देते हुए लगाएंगे तो वो 10 रुपए भी उसमें शुल्क नहीं लगता है। और सीधी भाषा में आप अपनी लोकल भाषा में जो आप भाषा आप जानते हैं समझते हैं आप उस भाषा में कर सकते। यदि उस विभाग में वो जानकारी नहीं मतलब समझ नहीं पा रहे हैं तो वो विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको ट्रांसलेट करवा ले। आप जिस क्षेत्र में आप उसी भाषा में लिख के दे दीजिए सादे कागज पे, कोई उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उस विभाग में जाएं, ऑनलाइन आप शुल्क जमा करके आप ऑनलाइन अपना क्वेश्चन कर दें। जो दस्तावेज विभाग में मौजूद है आप उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं, प्रमाणिक प्रतिलिपि मिलेगी आपको, सशुल्क मिलती है वो, आपको शुल्क जमा करना होगा उसके लिए। वो जब आप आवेदन करते हैं तो यदि वो उपलब्ध है तो आपको एक लेटर मिलता है कि भाई इतने पन्नों की है, 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से A4 साइज के आपको फोटोकॉपी करके और प्रमाणित करके वो उपलब्ध कराएं। ये लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है। जो जानकारी उपलब्ध नहीं है अन्य किसी विभाग की है, गलत विभाग में ही आपने जानकारी, तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी होगी। विभाग के अंतर्गत यदि है और किसी और छोटे से उसका सब विभाग के पास है तो वो विभाग के लोक सूचना अधिकारी, लेकिन हम जानकारी लेना चाह रहे हैं रेलवे की और हम अप्लाई कर रहे हैं PWD ऑफिस में तो स्वाभाविक है वो फिर अंतरित होकर के पहुंचने में वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बच्चे आप स्पष्ट लिखें क्या दस्तावेज आपको चाहिए, किस रूप में चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिकली चाहिए तो वो भी मिल सकता है। जितना आपका टू द पॉइंट होगा उतना आपको आपके आवेदन के ऊपर कार्रवाई करना आसान है। एक ही आवेदन में कई तरह के बिंदु ना दें, एक आवेदन में आप एक बिंदु के संबंधित एक बिंदु एक विषय के संबंधित 2-3 बिंदु दे सकते हैं। बट क्या होना, पता चले कि आपने उस एक योजना के बारे में जानकारी हासिल करी, फिर आपने दूसरी योजना भी डाल दी, फिर तीसरे में भी डाल दी, चौथे में फिर आपने किसी और चीज की जानकारी हासिल डाल ली, भले वो एक विभाग की है लेकिन एक ही आवेदन में इतने सारे यदि पॉइंट्स होंगे तो वहां पर भी जानकारी दिया जाना संभव नहीं हो पाता। दूसरा एक और आपके पास में सुविधा होती है आम आदमी पास में है कि वो अवलोकन भी कर सकता है, वो लिख सकता है कि मुझे अवलोकन करना है। अवलोकन करने का एक भी समय निर्धारित होता है, उसका निर्धारित शुल्क होता है, एक घंटे में आपको अवलोकन करना, अपने घंटे का आपने पैसा दिया, आपको फिर प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए वो भी आपको सशुल्क आपको प्राप्त हो जाएगी विद इन पीरियड में होगी।
1: आमतौर पर ये माना जाता है कि जब हमें किसी विभाग से कोई जानकारी चाहिए तो हम सीधे उस विभाग से वो जानकारी मांग सकते हैं और बार बार अनुरोध करने पर भी नहीं मिल रही तो हम RTI का उपयोग कर सकते हैं। एक सवाल ये आता है कि राज्य सूचना आयोग की आवश्यकता क्यों है, आप किन दो कड़ियों के बीच में एक सूत्र का काम कर रहे हैं, क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं?
0: राज्य सूचना आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लोक सूचना अधिकारी उस विभाग का है, प्रथम अपीलीय अधिकारी उस विभाग का है। हो सकता है कि कहीं किसी वजह से हिडन कोई कारण हो सकते हैं कि वो जानकारी को छुपाया जा रहा है। यदि कोई अथॉरिटी नहीं हुई तो सूचना का अधिकार अधिनियम समाप्त हो जाएगा। उसी से मांग रहे हैं, उसी की जानकारी मांग रहे हैं और वो जरे यदि उसको छुपाना चाह रहा है। अब जैसे राज्य सूचना आयोग का यहाँ पर रोल आता है तो वो विभाग अब थर्ड पार्टी के पास आ रहा है, एक ऐसी अथॉरिटी के पास आ रहा है जिसके अधीन सारे विभाग आ जा रहे हैं और उसका जो वर्डिक्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो

0: सूचना को दिलवाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अब राज्य सूचना आयोग का तो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना पहले पायदान पर लोक सूचना अधिकारी महत्वपूर्ण है, दूसरे पायदान पर प्रथम अपीलीय अधिकारी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है द्वितीय अपील करने वाला राज्य सूचना आयोग, क्योंकि वही फिर आखिरकार यदि किसी वजह से नहीं दी जा रही तो उस जानकारी को दिलवाने का काम फिर राज्य सूचना आयोग का, और वही कर पाता है। तो कानून बहुत खूबसूरती से बहुत ही अध्ययन के बाद बना है और उसके अंदर के जो प्रावधान है आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए।
1: आज का जो विशेष दिवस है सूचना का अधिकार दिवस, हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: श्रोताओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सूचना के महत्व को समझे और सूचना को पाने के सही तरीके को समझे, इसके लिए अपनी जागरूकता बढ़ाएं। कानून बनाने वालों ने कानून बना दिया, जैसी भी व्यवस्था है, हो सकता है कहीं आपको व्यवस्था में कोई कमी नजर आए, लेकिन हम सबको मिलकर के ही सारी कमियां दूर करते हुए इसकी मूल भावना को समझना है। ये समझना होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आपके लिए, हर नागरिक के लिए, लेकिन उसको हथियार दे देने से चला
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अधिकारों का उपयोग करते हैं उसी तरह से इसका भी सही तरीके से उपयोग करिए, जागरूकता बढ़ाइए। आयोग अन्य कई संस्थाएं भी लगातार प्रचार प्रसार जागरूकता बढ़ाने का काम करती हैं। सीखिए, समझिए, सब कुछ वेब पे अवेलेबल है, किताबों में अवेलेबल है, अध्ययन करिए और इस कानून का सही और पूरा कारगर प्रभावशाली उपयोग कीजिए। बस मैं अपने श्रोताओं से यह कहना चाहूंगा।
2: और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में अब मैं संदेश लेना चाहूंगी सभी सरकारी अधिकारियों के लिए, जो आरटीआई का जवाब देते हैं, उनका दायित्व है इसका जवाब देना, उनके लिए आपका क्या संदेश?
1: तीन घटक यहाँ पर हो गए, एक तो सूचना पाने वाला, एक सूचना देने वाला, और फिर आयोग जो होता है वो इस चीज की निगरानी करता है कि सही काम चल रहा है कि नहीं। कहीं दो की हमने बात की, ये जो दूसरा घटक है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों और हर विभाग के अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचाना चाहूंगा, आरटीआई कानून से घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि विभाग में जैसे ही किसी ने आरटीआई लगाई तो घबराहट का माहौल हो जाता है कि अरे जानकारी मांग ली। आप पारदर्शिता के साथ काम कीजिए। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई टेंडर निकालना हो, चाहे कोई नया काम करना है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी रूटीन वर्क भी हो रहा है, तो आप ये ध्यान रख के करिए कि ये इसकी जवाबदेही है मेरे पास
2: जी।
1: तो आप पहले से ही सारे दस्तावेज पारदर्शी रूप से काम करेंगे, सब व्यवस्थित रखेंगे, तो जैसे ही आपके पास कोई आरटीआई आती है आप तुरंत देने की स्थिति में रहते हैं। अपने पूरे दस्तावेज का पूरा व्यवस्थित बना करके रखे। हम अक्सर आयोग की तरफ से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते भी है, विभागों से भी हम कहते हैं, आदेश भी पारित करते हैं हम, कि अपने वेबसाइट पे अधिक से अधिक जानकारी जो पब्लिक डोमेन पे होना चाहिए उसको आप डाल दीजिए डोमेन पे, तो आपके वैसे ही आरटीआई आवेदन कम लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो चीज वो मांग रहे हो वो आपने पहले से ही दे दी। तो वो एक काम आप करते रहिए। दूसरा, रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करिए, आवेदन आने के साथ ही आप उसके ऊपर एक्टिव हो जाइए, क्योंकि 30 दिन का मात्र समय होता है आपके पास। कई जानकारी ऐसी होती है कि उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आप पहले दिन से ही आप सक्रिय हो जाइए, और यदि आप उसको 10 दिन के अंदर ही जवाब दे सकते तो जय करके आप उसको खत्म करिए, अपना बर्डन में लेके चलिए। तो आप ये तब कर पाएंगे जब आप काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी आरटीआई आ सकती है, और यदि आई तो मुझे क्या जवाब देना है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। आपने सिस्टम ऐसा बना लिया, हर चीज का लेखा जोखा आप व्यवस्थित रख रहे हैं, तो आपके लिए आरटीआई कोई इसमें परेशान करने वाला नहीं। दूसरा, हर आरटीआई का जवाब देना जरूरी नहीं है, इस बात को भी समझिए। इसके लिए कानून पढ़ लीजिए, कानून में स्पष्ट लिखा है कि कौन सी जानकारियां दी जा सकती है, कौन सी नहीं दी जा सकती, और जब दी जानी तो कितने समय में दी जानी है। जिस तरह से आपको अपने अन्य अधिकारी पता है, अपने कर्तव्य पता है, वैसे आप सूचना का अधिकार का कर्तव्य आपके माथे पर है, तो आपको उसका पालन करना है। तो आप पढ़ लीजिए एक बार, कई हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसको जानकारी को आप मना कर सकते थे पहले लेवल पर, लेकिन न पहले लेवल पे मना किया गया, न दूसरे लेवल पे मना किया, हमारे सामने आया, अब हम कह रहे हैं कि ये जानकारी तो देने योग्य नहीं है, तब लोक सूचना अधिकारी कह रहे हमें नहीं पता था। अननेसेसरी आपने इतना श्रम, पूरे सिस्टम का इतना बड़ा श्रम, आवेदक को भी परेशानी हुई, पहले की उसको कदम भी बताया जा सकता था कि ये इस क्लॉज के अंतर नहीं दिया जा सकता। सपोज के बाद वो हमारे पास आता तो हम एक ही पहली हियरिंग में इसका डिसीजन दे देते कि हाँ भाई ये हम समर्थन करते हैं लोक सूचना अधिकारी का। इसलिए पढ़िए और बिना घबराए काम करिए, स्पष्ट रखिए, जवाबदेही के साथ काम करिए, पारदर्शिता रखिए, तो आपको कभी आरटीआई बल्कि आपको सपोर्ट रहेगा, और आपकी जितनी आरटीआई आपके यहाँ लगती है और आप जिसका सुव्यवस्थित जवाब देते हैं वो आपके एक तरह से हित में जुड़ता है, वो आपके पक्ष में जुड़ता है कि आप पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बाद इस स्पष्टता के साथ जवाब देने के लिए। तो श्रोताओं, आरटीआई दिवस के अवसर पर ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। हम ये आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आरटीआई के अंतर्गत सवाल पूछने वाले और जवाब देने वाले दोनों पक्षों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्य बेहद सहज सरल तरीके से समझ में आए होंगे। और आज इस उद्देश्य के लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट जी को। राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने श्रोताओं से बात की, हमारे साथ ये बहुत जरूरी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम अलकानिया, अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियाई खेलों में तीनों सेनाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी प्रदर्शन खेल का उद्घाटन किया। भारत ने तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। रणजी ट्रॉफी एलिट क्रिकेट मुकाबला जारी, रविंद्र जडेजा और रिंकू सिंह ने लगाए शतक। माया राजेश्वरन ने W35 लागोस टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के सम्मान से, जहां रक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों का आज सम्मानित किया। खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में भारत का मान बढ़ाया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में मदद मिली। रक्षा मंत्री ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। उन्होंने खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें निखारने में मिशन ओलंपिक विंग प्रशिक्षकों और सहयोगी कर्मचारियों की भूमिका की भी प्रशंसा की।
1: एक मेडल के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं, कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, फिर भी आपका हौसला, आपका जज्बा बराबर बुलंद रहता है। आपके पूरे संघर्ष के पीछे आपके कोच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके सपोर्ट स्टाफ, आपके फिजियो और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और परिवार, सभी का योगदान है। मैं उन सभी का आज अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं।
0: श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार खेल सुविधाओं, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। श्री सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं के खिलाड़ी अगले ओलंपिक में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा कि एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने दिखा दिया है कि वे लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी प्रदर्शन खेल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल, खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों, तकनीकी अधिकारियों और सहयोगी संस्थानों ने भाग लिया। भारत ने इस प्रतियोगिता के लिए मलखम, योगासन और करी पट्टू को चुना है। भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स से जुड़े 10 देश इन खेलों में भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का एक दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन करना है।
2: ब्रिक्स कंट्री आपस में अपनी इंडिजिनियस गेम्स के बारे में परफॉर्मेंस बताएं।

0: और अपनी कंट्री में ट्रेडिशनल गेम्स को आगे बढ़ाए और उसका प्रचार प्रसार करे, इस उद्देश्य के साथ ये ब्रिक्स कंट्री इंडिजिनियस गेम्स डेमोंस्ट्रेशन आज अहमदाबाद में वीर सावरकर स्टेडियम में हो रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। ब्रिक्स कंट्री के बीच में ट्रेडिशनल गेम्स की एक पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्धता है।
1: डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके खेल को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रख रहा है। डॉक्टर मांडविया ने पारंपरिक और स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के तीन व्यावहारिक क्षेत्रों का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स के पारंपरिक और स्थानीय खेल न केवल ये दिखाने का मंच प्रदान करते हैं कि कोई खेल कैसा खेला जाता है, बल्कि उस इतिहास, मूल्यों और सांस्कृतिक संदर्भ को भी उजागर करते हैं जो हर परंपरा को अनूठा बनाते हैं।
0: मुझे भी खुशी है, भारत ने ही ब्रिक्स कंट्री के बीच में ट्रेडिशनल गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा था, ये प्रस्ताव को स्वीकार करा गया और भारत ने ही अपनी ही प्रेसिडेंसी के इयर्स के दरमियान ही ट्रेडिशनल डेमोंस्ट्रेशन गेम्स का अहमदाबाद वीर सावरकर स्टेडियम में आयोजित करके हमारी ब्रिक्स कंट्री के बीच में साझेदारी को महत्व दिया है, आगे बढ़ाया है।
1: तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेल के मैदान से लेकर पोडियम तक अवसर पैदा करके अपने खेल इकोसिस्टम को बदल रहा है। और जैसा डॉक्टर मांडविया ने भी बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट हो या फिर संडे ऑन साइकिल हो, इसमें 3 लाख से ज्यादा जगहों पर 50 लाख से अधिक लोग साइकिलिंग कर चुके हैं और संडे ऑन साइकिल का 94 आयोजन हो चुका है। तो ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो लगातार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में ही कड़ी चुनौती का सामना करेंगे। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: डेनमार्क ओपन BWF वर्ल्ड टूर का एक महत्वपूर्ण सुपर 750 स्तर का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगर प्रतियोगिता की बात करें तो पहले दौर में अनुभवी पीवी सिंधु का सामना विश्व की नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन एन से यंग से होगा। सिंधु को एन से यंग के खिलाफ अपने पिछले सभी 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। उधर पुरुष वर्ग में लक्ष्य को पहले दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त चौ तियन चेन की चुनौती से पार पाना होगा। हाल में पीठ की चोट से परेशान लक्ष्य चौ के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं आयुष शेट्टी अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पहले दौर में आयुष का सामना इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें हराया था। किदांबी श्रीकांत फ्रांस के अर्नाउड मर्कल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत की ओर से महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा भी चुनौती पेश करेंगी। तन्वी का पहला मुकाबला जापान की नात्सुकी नेदेरा से जबकि अश्मिता का बुल्गारिया की कालोयाना निलंबतोवा से होगा। देवी का थाईलैंड की 8वीं वरीयता प्राप्त पोन पावी चोचुवोंग के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी जबकि उन्नति का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अपना पहला मैच चीन की जोड़ी हे जी टिंग और रेन जियांग यू के खिलाफ खेलेगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनका पहला मुकाबला चीनी ताइपे के यान फी चेन और हिस हे पेई शान से होगा। वहीं ऋतुपर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा का मुकाबला चीन की बाओ ली जिंग और काओ जी हान की जोड़ी से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कल के टूर्नामेंट में अहम मौका होगा पीवी सिंधु के लिए भी। हाल ही में आर्कटिक ओपन में उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई थी। आयुष शेट्टी की अगर हम बात कर लिया, तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग, उन्नति हुड्डा और भारत के पुरुष डबल्स खिलाड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर भी सबकी निगाहें होंगी कि वो इस टूर्नामेंट में, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो अनुभवी खिलाड़ी के साथ साथ जो यंग खिलाड़ी है ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा पर भी सबकी निगाहें होंगी। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत ने वेस्टइंडीज को 5 मैच की T20 श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में 14 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 223 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विशेष। भारत ने कल बेहतरीन प्रदर्शन किया, 2-1 से श्रृंखला में आगे हो गई भारतीय टीम, लेकिन कल का भी मुकाबला अगर देखा जाए तो क्लोज एनकाउंटर 14 रन से महज वेस्टइंडीज हारी है। तो अब बाकी जो दो मुकाबले बचे उसमें कैसी तस्वीर नजर आ रही है विशेष?
3: प्रशांत, दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में भी देखा कि 250 रन चेस किए वेस्टइंडीज ने, हालांकि वो कंट्रोल में नजर आ रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उनको 209 रन पे रोक दिया। बचे हुए दो मुकाबलों की बात करें तो कांटे की टक्कर होने वाली है, भारत को एक मुकाबला जीतना ही होगा सीरीज बचाने के लिए।
1: बिल्कुल, और कल गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि एक तरफ उम्मीद लग रही थी कि जब 250 रन अगर वेस्टइंडीज बनाती, जिस तरीके से चेस किया था, 9 गेंद शेष रहते रांची में, उम्मीद की जा रही थी कि कल ये टारगेट जो वेस्टइंडीज को मिला था 224 रन का, इसको भी आसानी से चेस कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बाकी गेंदबाजों का कैसा रहा उनके साथ प्रदर्शन?
3: अर्शदीप सिंह ने कल प्रशांत 4 ओवर में 3 विकेट झटके, लेकिन उन्होंने 44 रन दिए, तो इकोनॉमी उनकी 11 की रही। लेकिन अगर साथ देने की बात करें तो मयंक यादव, युवा गेंदबाज, ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिए 8.5 की इकोनॉमी से। वहीं प्रिंस यादव ने भी 4 ओवर में 37 रन दिए। नमन धीर ने 2 विकेट लेकर काफी अहम योगदान दिया टीम में। वहीं अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया और नीतीश कुमार रेड्डी को भी 1 सफलता हाथ लगी। तो मिला जुला प्रदर्शन रहा भारतीय गेंदबाजों का,
1: और कल काफी बदलाव भी किया गया था टीम में। प्रिंस यादव को टीम में जोड़ा गया था, उन्होंने अपने बल्लेबाजी से भी अहम रन बनाए और गेंदबाजी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन एक बल्लेबाज है जो लगातार भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट हो उनका नाम सबसे पहले आता, अभिषेक शर्मा ने कल भी अर्धशतकीय पारी खेली, 69 रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन कल कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। कौन कौन से रिकॉर्ड है वो?
3: प्रशांत, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है, बराबरी की है सूर्य कुमार यादव के रिकॉर्ड की, पर उन्होंने लगभग हर 7वीं गेंद पर छक्का लगाया है। वहीं सूर्य कुमार यादव जो उनसे पीछे हो गए हैं, उन्होंने हर 9वीं गेंद पर छक्का लगाया, तो 68 छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो अभिषेक शर्मा ने अपने नाम कर लिया। वहीं अगर 2000 रन बनाने की बात करें टी20 आईज में, तो 1024 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 2000 रन पूरे कर लिए। इससे पहले यह रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के नाम था, जिन्होंने 1164 गेंदों में 2000 रन बनाए थे।
1: जी, अब उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही लय वो बरकरार रखे श्रृंखला के बाकी मुकाबले में भी। उधर रणजी ट्रॉफी का भी मुकाबला खेला जा रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026-27 सीजन में अलग अलग टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। सभी टीमों को 4 वर्ग ए बी सी डी में बांटा गया है। मुकाबले 11 अक्टूबर से खेले जा रहे हैं और 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है। विशेष, एक बार फिर घरेलू क्रिकेट श्रृंखला जो है अपने रोमांच पर है, और जहां हर राज्य की टीमें अपनी प्रतिस्पर्धा करती नजर आ रही है, 2 दिन का खेल समाप्त हो गया, क्या स्थिति है बाकी टीमों की?
3: प्रशांत, अगर बात करें ग्रुप ए के मुकाबलों की, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का मुकाबला जारी है, जहां 2 दिन का खेल समाप्त होते तक उत्तर प्रदेश के पास 496 रन की बढ़त है। पहली पारी में 540 रन उत्तर प्रदेश ने बनाए थे। वहीं दूसरे मुकाबले में बरोड़ा और गोवा के बीच मुकाबला चल रहा है, जहां गोवा 467 रन से पीछे है। अगर विदर्भ और पुडुचेरी के मुकाबले की बात करें तो पुडुचेरी 321 रन से पीछे है। वहीं मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में मध्य प्रदेश के पास 135 रन की लीड है और वो दूसरी पारी में मुकाबला कर रही है।
1: और कई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे, कैसा रहा है उनका इन 2 दिनों के बीच प्रदर्शन?
3: प्रशांत, अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली है। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ से रिंकू सिंह ने भी शतक लगाया है। जडेजा ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलते हुए 209 गेंदों का सामना किया और 102 रन की दमदार पारी खेली। वहीं बिहार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए रिंकू सिंह ने भी शतकीय पारी खेली, जिन्होंने 168 गेंदों पर 112 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और दिल्ली के खिलाफ 4 विकेट झटके।
1: ये काफी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। अभी जम्मू कश्मीर जो है वो उसके डिफेंडिंग चैंपियन है और लगातार जम्मू कश्मीर से कई खिलाड़ी टीम में आ भी रहे। औकिब नवी जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह बना चुके हैं और अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है ग्रुप ए बी सी डी में, जैसा कि हमने आपको बताया, और अच्छा प्रदर्शन अभी जारी है खिलाड़ियों का और देखना दिलचस्प होगा कि बाकी मुकाबलों में कैसा खेल प्रदर्शन होता है। अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पंजाब में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होगा। मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष टीम अपना 6ठा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: जालंधर और मोहाली में खेले जाने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में भारत इस वर्ष की शुरुआत में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक सफलतापूर्वक बचाने के बाद अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगा। साल 2011 में पहले संस्करण को जीतने के बाद से भारत ने अलग अलग परिस्थितियों में महाद्वीपीय खिताब जीता है, जिसमें शूटआउट में जीत, फाइनल में करीबी जीत, संयुक्त चैंपियनशिप और घरेलू मैदान पर मलेशिया के खिलाफ वापसी शामिल है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले गए पहले संस्करण को अपने नाम किया था, जहां फाइनल में

0: ने पाकिस्तान को शूट आउट में 4-2 से हराया। रेगुलेशन समय में फाइनल गोल रहित रहने के बाद ये जीत मिली थी। इस जीत ने भारत को टूर्नामेंट का पहला चैंपियन बनाया जिसमें 6 टीमें शामिल थी। 5 साल बाद भारत ने मलेशिया के क्वांटन में साल 2016 के फाइनल में पाकिस्तान को 3-2 से मात देकर अपना दूसरा खिताब जीता था।
1: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। पुर्तगाल में भारतीय टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन ने W35 लागोस टूर्नामेंट अपने नाम किया। ये उनका पहला पेशेवर खिताब है। माया ने कल खेले गए फाइनल में स्पेन की सेलिया सर्विनो रुइज को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराया। इस जीत से ये 17 वर्षीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा के बाद पेशेवर सिंगल्स खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने

0: केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष

0: श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
2: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
1: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
3: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
4: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
1: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे भारत की कर क्रांति वस्तु और सेवा कर जीएसटी की। साथियों, पहली जुलाई 2017 को वो तारीख थी जब भारत ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार देखा। रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष से एक नारा गूंजा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी से पहले देश में 17 तरह के अलग अलग टैक्स और 23 तरह के सेस लगते थे। हर राज्य की सीमा पर ट्रक घंटों खड़े रहते थे। जीएसटी ने उन सभी सीमाओं को मिटाकर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। तो क्या जीएसटी सच में आम आदमी, व्यापारी और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का विषय है वस्तु और सेवा कर, भारत की कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindiAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अभी हाल में हुई और उसमें बहुत सारे कर सुधार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इनको बहुत बड़ा परिवर्तनकारी गेम चेंजर बताया।
1: जी, इस बार जो 57वीं काउंसिल पे हमारा फोकस था जीएसटी प्रोसेस रिफॉर्म्स पे।
0: जी,
1: 56वीं काउंसिल पे रेट पे फोकस था, 57वीं पे प्रोसेस रिफॉर्म्स पे, जो कि डे टू डे हर बार जैसे कि बिजनेस की लाइफ साइकिल में उसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, लिटिगेशन, वो सब वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो वो सारी उसको सारे जो इश्यूज उसको आते हैं उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है।
0: बहुत अच्छा।
1: इसमें
0: तो क्या क्या ऐसे सुधार रहे जिनसे इस जो बैठक थी इसमें क्या ऐसे निर्णय रहे जिससे कि आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को लाभ हुआ?
1: जैसे मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो पहली चीज थी रजिस्ट्रेशन।
0: जी,
1: जब वो अप्लाई करता है तो अक्सर उसे बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
0: जी,
1: तो उसे हमने सरल किया। न सिर्फ उसके लिए अधिकारी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इश्यू किए हैं पर हमने फॉर्म भी अपना चेंज किया।
0: जी,
1: फॉर्म में जो उसको डॉक्यूमेंट देने हैं वो फॉर्म में ही ड्रॉप डाउन से हमने कर दिए।
0: जी,
1: तो उससे ये हो जाएगा कि उसको पता है कि क्या देना है, क्या
0: आसान हो गया।
1: कई चीज जहां पर वो सिस्टम रिस्क टू रेवेन्यू नहीं है कि वो रेवेन्यू को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां हमने ऑटोमेट कर दिया है। वो खुद डिक्लेयर करेगा और वो खुद ही हमारा सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा।
0: जी,
1: सो एक ट्रस्ट दी टैक्स पेयर का हमारा वो हमने एक शुरू किया है।
0: जी, इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए इस जो सुधार हुए हैं 57वीं परिषद में, इसमें क्या क्या ऐसे सुधार हुए जो अलग अलग लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं?
1: जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल।
0: जी,
1: एक्सपोर्टर्स को रिफंड अप्लाई करना पड़ता था, रिफंड अप्लाई करता है तो वो अधिकारी के पास जाता है, उसमें समय लगता है अधिकारी को। अब जो है आगे चल के हम रिफंड को ऑटोमेट कर देंगे। अगर वो लो रिस्क है, सिस्टम ने देखा रिस्क है, लो रिस्क है, तो उसको 100% रिफंड एक्सपोर्टर को तुरंत

0: सिस्टम से मिल जाएगा।
1: वेरी गुड।
0: तो उससे बहुत जो अभी 60 दिन लगते थे वो होके 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा।
1: बहुत बड़ी सुविधा,
0: बड़ी सुविधा। ऐसी कैश लेजर का रिफंड होता है, छोटा व्यापारी ईसीओ से सप्लाई करता है, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है वो करता है, वो अपना रिफंड अप्लाई करेगा तुरंत हाथों हाथ उसे रिफंड हो जाएगा, और ये 1 नवंबर से ही हो जाएगा चालू। सो ऐसी कई चीजें छोटे व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, या जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, की इनपुट का रेट ज्यादा है आउटपुट का कम है, तो उसका रिफंड भी हमने ऑटोमेट कर दिया। 90% रिफंड उसको अप्लाई करने के 10 दिन में शुरू में, आगे चल के वो इमीडिएट जब सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हाथों हाथ मिल जाएगा।
1: बहुत बड़ी,
0: तो उससे बहुत आराम हो जाएगा व्यापारियों को।
1: और इसके अलावा कुछ सजा के प्रावधान हुआ करते थे, टैक्स समय पे नहीं भर पाए या कुछ, तो इस तरह से उनमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है।
0: जी, अरेस्ट को बिल्कुल हटा दिया गया जीएसटी से, तो आगे चल के जब लॉ चेंज हो जाएगा तो कोई अरेस्ट जीएसटी में अधिकारी अरेस्ट नहीं कर पाएगा किसी को। दूसरा, हमने प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में जहां हम अपील फाइल करते हैं किसी के अगेंस्ट को वो करने को, तो उसके भी हमने कई कानून जो जहां पर वो इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं वो हमने हटा दिए हैं, तो आगे चल के प्रोसिक्यूशन में आदमी को ये तकलीफ नहीं होगी गलत इंटरप्रिटेशन, गलती हो गई और मुझे कोर्ट में उन्होंने वो कर दिया, फौजदारी का मुकदमा कर दिया,
1: वो मुकदमेबाजी से अब छूट
0: मिल जाएगी।
1: जी, और हमारे श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, पहले श्रोता हरिद्वार से हैं, रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर जी।
1: जी पूछिए।
2: विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: सबसे पहले मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, आगामी सभी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अभी हाल ही में जो दिवंगत अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी, उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी।
1: रवि जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ सर, अब की बार जो 57वीं बैठक हुई है उसमें क्या क्या कर सुधार हुए हैं, और सर मैं जानना चाहता हूँ कि अब की बार अरेस्ट से किस किस सजा को हटा दिया गया है, ये मेरा सवाल रहेगा सर।
0: अरेस्ट बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट का पावर नहीं रही है जीएसटी में। सो आगे चल के कोई भी ऐसा वो नहीं है ऑफेंस जिसपे आपको अरेस्ट, जिसको किसी को अरेस्ट किया जा सके।
1: तो आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि अगर समय पे कर नहीं चुकाया या कम कर चुकाया या और भी कोई हुई तो गिरफ्तारी की जो तलवार लटका करती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में जो कर प्रणाली थी
0: जी
1: कैसी थी, और उससे जीएसटी ने उसको किस तरह से चेंज किया?
0: जीएसटी के आने से पहले 17 कुछ कर थे जो जीएसटी ने अपने में समेट लिए हैं, उसमें एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय उत्पाद कर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, वो एक अलग, उसको रिटर्न फाइल करना अलग कंप्लायंस था, वैट का रजिस्ट्रेशन लेना था, वैट का अलग कंप्लायंस था, एक स्टेट में ही उसका दायरा था, तो एक स्टेट में ही उसका क्रेडिट था और एक स्टेट में ही सब था। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर भेजता था, अपना सामान बेचता था, तो उसे क्रेडिट नहीं मिलता था
1: जी।
0: तो जीएसटी ने क्या किया, ये जो और अलग अलग टैक्स ऐसे ही करके कुछ 17 टैक्सेस में वो रजिस्टर्ड था, जीएसटी ने वो खत्म करके एक टैक्स ले लिया है, प्लस एक पूरा देश एक ही उसमें कर दिया है, तो वन नेशन वन टैक्स का अर्थ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी वो देश में व्यापार करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं रहेगा कि मैं इस स्टेट में नहीं हूं
1: जी।
0: तो जीएसटी ने उसे हर स्टेट में एक, उसको एक जैसा कर दिया, उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक मार्केट हो गया।
1: तो कुल मिला के वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का जो जीएसटी का नारा था वो कितना सफल हो सका है?
0: काफी हो गए, बहुत सफल हुआ है। अगर आप देखिए जीएसटी में, जब हम जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 66 लाख हमारे टैक्स पेयर्स थे, करदाता थे, अब वो 1,70,00,000 हो गए हैं 9 साल में,
1: लगभग 3 गुना से भी अधिक हो गए
0: जी। तो जी, जो कितने नए व्यापार आए जो जीएसटी में आ गए, कितने छोटे व्यापारी, जो हो सकता है टर्नओवर जो हमारा थ्रेशोल्ड है 40 लाख और 20 लाख उससे नीचे हैं, वो भी जीएसटी में आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का उन्हें फायदा दिख रहा है,
1: लाभ मिल रहा है जी। और एक और श्रोता हमारे साथ हरियाणा के हिसार से जुड़ गए हैं, राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
3: नमस्कार जी मुकेश जी, और
1: नमस्कार
3: जी
1: सवाल पूछिए।
3: जो एक विकिल शुक्ला जी उनके बारे में बता रहे थे, तो उनका मैं भी उनके सुन के बड़ा अफसोस हुआ है, तो मैं उनको भगवान को उनको आत्मा को शांति दे।
1: जी राजी,
3: सवाल ये

0: जी, जब जीएसटी की बैठक होने को होती है तो कभी काफी मार्केट में रेट जो सामान के वो बढ़ जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बैठक होनी थी, उसके बाद सामान के कुछ रेट बढ़ जाते थे, इसके बारे में जीएसटी विभाग क्या करता है, इसके बारे में जानना। नमस्कार।
1: देखिए, जीएसटी विभाग तो रेट नहीं वो डिसाइड करता, वो तो मार्केट डिसाइड करता है। पर ये स्पेकुलेशन की होता है कि लोगों ने अपने कि अंदेशा किया कि रेट घट सकता है या बढ़ सकता है, तो लोग अपना वो कर देते हैं। परंतु इस पे जीएसटी विभाग कुछ नहीं वो कर सकता है। जीएसटी विभाग रेट्स डिसाइड नहीं करता, वो मार्केट करता है।
2: तो कुल मिला के जीएसटी डिपार्टमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो केवल मार्केट में ही होता है और दुकानदार या जो भी उत्पादक हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी आने के बाद आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई पर क्या असर पड़ा है?
1: कि जीएसटी की खासतौर पर 56वीं काउंसिल जो पिछली काउंसिल हुई थी इससे पहले सितंबर 2025 में, उसमें हमने 4 से 2 रेट कर दिए, 5% और 18% का रेट रहा, 12 और 40% का रेट
2: समाप्त कर दिया।
1: सो रेट इसलिए किया गया, और फिर सरकार ने ये भी वो कोशिश की कि वो बेनिफिट जो है, लाभ है, वो ग्राहकों को पहुंचा जाए, कि व्यापारी खुद ना रख लें रेट कम का लाभ। वो जी गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया, गवर्नमेंट ने कम कंज्यूमर हेल्पलाइन भी बनाई कि व्यापारी कि ग्राहक अपनी समस्या बता सके, रेट कोई पास ऑन नहीं कर रहा है। सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंश्योर किया कि जब भी रेट कट हो रहा है वो रेट कट ट्रांसफर होता है कस्टमर को।
2: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहां पर आ रही थी कि जीएसटी का लाभ जो पिछली 56वीं काउंसिल में जो हुआ था, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, कितने लोगों ने खरीदारी की कारों पर और दूसरे वाहनों पर, इसके अलावा टीवी, फ्रिज, इन सब पे कितनी सारी फायदा हुआ था।
1: जी, अगर आप देखिए हमारा रेवेन्यू, हमने रेट कम किया पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। अब हमारा ऐसा रेवेन्यू आ गया कि हम 2 लाख करोड़ से कम आता है तो हमें महीने का तो लगता है कि कम आया इस बार रेवेन्यू। तो जी, तो क्या हुआ है, रेट कम होने से लोगों की खरीदारी बढ़ गई, जिसकी वजह से रेवेन्यू,
2: परचेज पावर बढ़ी, उससे रेवेन्यू बढ़ा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज जानना चाहेंगे कि बहुत सारे, जब 56वीं काउंसिल की बैठक हुई थी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया। जी, वो ऐसा, ये किस तरह के प्रोडक्ट्स थे जिन पे
1: जनरली फूड आइटम्स थे, जो कि खाने पीने की लोगों की वो चीजें थी, उसको उस पे 5 से 0 कर दिया गया रेट। दवाइयों पे, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है, जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उन पे हमने 5 से 0, काउंसिल के रिकमेंडेशन से 5 से 0 हुआ, ताकि लोगों को फायदा हो जाए। उसके साथ स्टेशनरी की चीज, स्टेशनरी जो बच्चे स्कूल रहते हैं, स्कूल की पेंसिल,
2: वो स्टेशनरी,
1: कॉपी, नोटबुक, उन सब का दाम 0 कर दिया, कि क्योंकि आगे चलते क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरी था, इसलिए सरकार काउंसिल ने डिसाइड किया कि उनके रेट्स 0 कर दिए।
2: कुल मिला के आम लोगों के लिए उसमें काफी ऐसे लाभदायक निर्णय थे जो उनको फायदा पहुंचाया। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एनपी सिंह। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत सवाल है आपका।
3: सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। मेरे 2 क्वेश्चन है।
2: जी बोलिए।
3: सर, पहली बात तो ये है कि अगर वो कोई जीएसटी अधिकारी सरप्राइज विजिट पे आ जाता है
2: जी,
3: तो क्या उसे क्या चीज मांगी जाए जिससे वो पता लगे कि हाँ, ये वाकई में हमारे पास इसी चीज के लिए आया
2: जी।
3: और दूसरा मेरा एक बड़ा सरल सा बड़ा मतलब आंसर आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारा इंटरस्टेट सारा परचेज है
2: जी।
3: जैसे हमारी पंजाब से आती है दिल्ली के लिए, तो हमारे पास IGST तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है
2: जी,
3: लेकिन जब हम इधर सेल करते हैं लोकल करते हैं तो आधा IGST आधा CGST हो जाता है। तो IGST इकट्ठा आया तो वो हमें जब 1 साल के बाद हमें जो बच जाता है वो रिफंड मिलना चाहिए
2: जी।
3: ये 2 क्वेश्चन है सर
1: जी। पहला जो सवाल है अधिकारी वाला, अधिकारी जब आपके पास आता है तो वो एक ऑथराइजेशन एक उसे एक ऊपर अपने अधिकारी से, जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी से उसको एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो एक चिट्ठी लेकर आएगा, उस लेटर पे DIN होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप CBIC वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, सही में अधिकारी ने इशू किया है कि ये ऐसे ही इसने खुद बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर कर सकते हैं, जब अधिकारी आए उसे पूछिए आपको क्या कोई परमिशन है आपके पास आने की, वो देखिए आप, उसका आई कार्ड चेक करिए कि वो एक सही में अधिकारी है कि नहीं, आई कार्ड चेक कीजिए, उसकी परमिशन देखिए, फिर उसमें एक डिन नंबर होगा, DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको चेक करिए। CBIC की वेबसाइट पे हमने लिंक दिया हुआ है, गूगल करेंगे DIN तो आपको आ जाएगा, वहां चेक करिए।

0: सही में वो अधिकारी है कि नहीं। जो आपका दूसरा सवाल है, आईजीएसटी क्रेडिट आएगा, तो आईजीएसटी क्रेडिट और आपकी लोकल सप्लाई है दिल्ली में, पंजाब से आपके पास आ रहा है आईजीएसटी का, आप पेड आपके पास इनपुट आ रहे हैं, तो उसको आप आईजीएसटी को यूज कर सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आईजीएसटी क्रेडिट को यूज करिए, सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट जो दिल्ली में आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ये जवाब उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनकी जो क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं थाने से, महाराष्ट्र के थाने से, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: जी सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना था मतलब जो स्टेट के जो छोटे मोटे समझो जो टैक्स थे वो खत्म करके एक ही बना दिए, तो जो मतलब ये जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मतलब उनके इसमें, तो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये महीने का महीने या साल भर में मतलब इनको कैसे फंडिंग किया जाता है? और बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो कंप्लेंट रहता है कि टाइम पे मिलता नहीं है, और मतलब किस किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है मतलब कैसे तय होता है, थोड़ा बताइए।
0: जैसे गुरुनाथ जी आपने महाराष्ट्र में कोई चीज खरीदी, आप महाराष्ट्र में ही आप थाने में जाके किसी दुकान से आपने चीज खरीदी, तो अगर आप बिल देखें तो उसमें उस चीज की वैल्यू कितनी रहेगी, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी सीधे दिखेगा कितना। मान लीजिए उस पर 5% टैक्स है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% स्टेट जीएसटी आपको दिखेगा, तो वो जो स्टेट जीएसटी है वो सीधे जीएसटी स्टेट को जाता है। दूसरा है जैसे आपसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा था, पंजाब से उनको दिल्ली में आया, तो पंजाब से दिल्ली में आया तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। अब क्या होगा कि जब वो दिल्ली में आया उनके पास, या आपके पास, मान लीजिए आप ही कोई चीज दिल्ली से लेते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र में लेते हैं, तो आपके पास महाराष्ट्र में आया तो उस चीज का कंजम्पशन महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उस चीज को उपयोग आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, तो उसका जो जीएसटी रेवेन्यू जो भी जीएसटी है उस चीज पे, उसे 50% वो स्टेट को सेटल होता है। जो वो स्टेट्स का इशू है वो सेटलमेंट वाला इशू है, क्योंकि उसमें कई सारी सप्लाई का पता नहीं रहता, क्योंकि सही से डिक्लेयर नहीं होता, टैक्स पेयर ने अगर सही से डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसमें वो डिस्प्यूट आता है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। पर आगे चल के जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो सेटलमेंट देखता है, और जीएसटीएन जो सेटलमेंट का सिस्टम वाला सेटलमेंट देखता है, दोनों लोगों ने इस पे काफी काम किया है और कई एक एसओपी बनाया है ताकि आगे चल के हम इसको हम आगे चल के इसको सुधार सके, ताकि सेटलमेंट वाला जो इश्यू है, जो राज्य का पैसा है, वो इश्यू रिजॉल्व हो सके।
1: तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम वस्तु और सेवा कर भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये है मनोज। मनोज ने सवाल किया है कि जीएसटी क्या छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी है, और जीएसटी को साल में कितने बार भरना होता है?
0: जीएसटी देखिए, जीएसटी में एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, एक लिमिट है, उसके नीचे हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, आप ले सकते हैं चाहें तो, पर आपके लिए अनिवार्य नहीं है। वो है 40 लाख रुपए अगर आप गुड्स पे डील करते हैं, माल में वो करते हैं, और सेवा में करते हैं तो 20 लाख रुपए आपकी वो थ्रेशोल्ड है। छोटे व्यापारी अगर उससे नीचे हैं तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, पर वो लेना चाहे तो ले सकता है। लेने से ये फायदा है क्योंकि उसको जितना उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका उसे इनपुट वो जो भी उसने चीजें खरीदारी की उस पर टैक्स पे किया, उस टैक्स का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर अपनी आगे की जीएसटी जो पे करना है उसमें वो यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उस क्रेडिट को। रिटर्न है जीएसटी में, आपके पास हर महीने एक रिटर्न होता है, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका वो किसी से आप टैक्स सप्लाई करते हैं, उसे टैक्स लेते हैं, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपसे सामान खरीदता है। पर जीएसटी में छोटे व्यापारी के लिए जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, जहां वो 3 महीने में एक बार एक रिटर्न फाइल करेगा पर मंथली टैक्स अपना पे करेगा, दूसरा, इस काउंसिल में एक कॉन्सेप्ट नेट को मंजूरी मिली है काउंसिल से, जिस पे अभी काम करके अगली काउंसिल में हम उसके वो डिटेल्स लेकर जाएंगे कि कैसे करना है। उसमें प्रपोजल था कि एनुअल रिटर्न, मतलब साल में एक रिटर्न फाइल करेगा और क्वार्टरली 3 महीने में एक पेमेंट करेगा। तो अभी जो 12 साल में

0: हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी जगह साल में एक करेगा, और जो हर महीने पेमेंट कर रहा है उसका तीन महीने में एक बार पेमेंट करेंगे, तो उससे काफी सरल हो जाएगा रिटर्न छोटे व्यापारी के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम दुकानदार से सामान लेते हैं
1: जी,
2: तो हमें GST देना पड़ता है, तो अब हमें ये पता कहाँ कैसे चलता है कि दुकानदार हमें GST रेट पे दे रहा है, हमें पता कैसे चलता है कि कितना GST हमें हमसे लिया जा रहा है।
0: देखिए अगर आप बिल देखें, जब दुकानदार को जब आपको चीज बेचता है उसे बिल देना अनिवार्य है, तो बिल देता है, बिल में आपको चीज की उस वस्तु की वैल्यू जो होगी वो मूल्य बताएगा, मूल्य के ऊपर GST रेट। अगर कोई चीज आप लेते हैं इसमें 18% GST है, तो 9% CGST और 9% SGST दिखाएगा, तो आपको उसमें क्लियरली दिखेगा आपकी जो इनवॉइस है रसीद में कि उसमें GST कितना उसने आपसे चार्ज किया है और कितना एग्जैक्टली उसकी कितना वैल्यू था, कितना रेट था, वो सब उस रसीद पे लिखा रहेगा।
1: गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, GST ने केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधों को कैसे बदला है, क्या ये सच है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये उदाहरण है?
0: जी, GST आप सोचिए एक कानून है जो कि हर स्टेट अलग से अपना अपना वैट चलाता था, उससे पहले सेल्स टैक्स था
1: जी,
0: कानून एक ही था पर सब स्टेट्स अपना अपना अलग एडमिनिस्टर करते थे, सेंटर अपना अलग करता था। GST में सबने अपनी पावर्स दी, सबने एक साथ बैठ के हर निर्णय एक साथ होता है, आप सोचिए 57 में मीटिंग्स हो गई, 57 मीटिंग्स में काउंसिल मीटिंग्स में सिर्फ एक बार वोटिंग हुई लॉटरी पे
1: जी,
0: वरना कभी वोटिंग नहीं होती, हर निर्णय
1: सर्वसम्मति
0: से होता है, कंसेंसस से होता है, जहां हर स्टेट अपनी बात रखता है, हर स्टेट को अपना बात बोलने का मौका मिलता है, वहां तक यहाँ तक कि जब काउंसिल से पहले मीटिंग्स होती है कमेटी की, उसमें भी स्टेट के मेंबर्स होते हैं
1: जी,
0: तो उसमें भी स्टेट्स अपने अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके बाद ही सर्वसम्मति से काउंसिल में जाता है। तो काउंसिल का एक सबसे बड़ा वो है कि एक साथ बैठ के एक चीज पे डिसाइड करना, एक चीज पे सर्वसम्मति से डिसाइड करना, वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का GST का अनुभव सबसे अच्छा योगदान है।
1: सबसे बड़ा योगदान ये रहा, और इसके अलावा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए GST वरदान साबित हुआ है।
0: GST ने छोटे व्यापारी के लिए खासतौर पे छोटे व्यापारी का कंप्लायंस आसान कर दिया GST में, उसको पता है कि जितना उसने टैक्स दिया उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना आगे कर भुगतान कर सकता है। छोटा व्यापारी जो ECO के माध्यम से अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान बेचना चाहता है देश में, पर उसके लिए हमने और इस बार बहुत सरल कर दिया, वो ECO का जो वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो कर सकता है उस स्टेट में जहां पर उसके खुद का ऑफिस नहीं है, तो उससे उसे क्या होगा, वो आराम से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा और अपना अपना कर भुगतान कर पा अपना सप्लाई करेगा और सप्लाई कर भुगतान आराम से कर पाएगा। तो GST ने उसको एक बड़ा आसान तरीका दे दिया है अपना व्यापार स्टेट से बढ़ा के पूरा देश में उसे करने का, वन नेशन वन टैक्स के तरह।
1: एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ दिल्ली में थोक मार्केट से कुछ सामान खरीदता है और वो सप्लाई करता है कुछ जगहों पर, क्या उसको भी GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?
0: अगर उसका 40 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड से उसका टर्नओवर
1: बिक्री हो जाती है,
0: बिक्री अगर साल की 40 लाख से ऊपर है तो उसको करना अनिवार्य है
1: जी, और उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जब अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा
0: जी। पर अगर आप देखें उसको, उसने जब चीज खरीदी तो उस पर उसने टैक्स पे किया
1: जी,
0: उसके लिए अच्छा है वो रजिस्ट्रेशन ले ले ताकि उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना कर भुगतान कर दे और वो जो टैक्स उसने सामान लेते हुए खरीदा है उसमें उसको इस्तेमाल
1: खाते में आ जाएगा
0: तो उसको पर लाभ है उस GST में रजिस्ट्रेशन लेकर, अगर नहीं लेगा तो पूरा वाला टैक्स जो उसने पूरा इनपुट
1: वो सारा बेकार चला गया
0: वो
1: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को GST को लेकर आपकी क्या सलाह है?
0: नए स्टार्टअप्स के लिए GST पहला तो रजिस्ट्रेशन सरल होना है, रजिस्ट्रेशन हमने सरल कर दिया उसके लिए, हमारे GST सिस्टम में आना उसके लिए बहुत आसान कर दिया इस काउंसिल के बाद। दूसरा, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसका रिफंड हमने सरल कर दिया, रिटर्न उसका टर्नओवर कम है तो रिटर्न्स हमने उसके लिए कम कर दिए,
1: लिमिटेड
0: रिटर्न्स हो गए, एक टर्नओवर से नीचे रहेगा। देन उसका जो लिटिगेशन, मान लीजिए डिस्प्यूट होता है कोई टैक्स का कुछ होता है, तो उसके लिए हमने प्रोसेस बड़ी बड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी, 10,000 रुपए से कम का नोटिस नहीं देंगे उसको, तो छोटे अमाउंट के नोटिस

0: कम हो गए उसके लिए, जो लिटिगेशन प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक इशू किया है, पूरा एक सर्कुलर इशू करने जा रहे हैं कि कैसे करना है, तो एक ट्रस्ट रहेगा सिस्टम पे उसे कि जो हो रहा है सही हो रहा है मेरे साथ।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रामाशंकर वाजपेयी जी। रामाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जीएसटी में कटे हुए पैसा अगर कहीं गलत हाथों या गलत उससे जाता है तो हम उसकी शिकायत कहाँ करें?
0: देखिए, जीएसटी में अगर आपको लग रहा है कहीं चोरी हो रही है, कहीं बेईमानी हो रही है, तो आप अपने एक अपने अगर डीजीजीआई को बोल सकते हैं। डीजीजीआई जो है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो केंद्र सरकार का सीबीआईसी का इंटेलिजेंस विभाग है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। आप लोकल कमिश्नरेट में कर सकते हैं शिकायत कि ऐसा हो रहा है चोरी, एंड वो लोग उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें आगे क्या कैसे कार्रवाई की जाए। तो ऐसे करके आप शिकायत बता करके अपना वो बता सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारा एक और सवाल आपसे है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और ई वे बिल से व्यापार करना अब कितना आसान हुआ है?
0: ई वे बिल हर एक ट्रांसपोर्टेशन में, जब 50,000 से ऊपर का सामान एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में जाता है
1: जी,
0: सो ई वे बिल अनिवार्य है। ई वे बिल में शिकायतें आती थी कि चेकिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा उसमें डिले होता है, हरासमेंट होता है, तो इस काउंसिल ने इस बार देखा इसको, इशू को। अब क्या काउंसिल ने किया है, ट्रांजिट स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली से सामान जा रहा है केरला
1: जी,
0: बीच में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
1: कई
0: स्टेट पड़े, तो कोई सिर्फ दिल्ली और केरल ही उसे चेक कर पाएंगे, बीच वाले
1: कोई चेक नहीं कर। बहुत बड़ी सुविधा,
0: बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ थी ट्रांसपोर्टर्स के लिए और ट्रेड छोटे व्यापारियों के लिए कि कोई भी चेक कर लेता था और फिर वो डिले होता था, समय लगता था चेकिंग में और सब में, तो वो चीज बंद कर दी इस बार काउंसिल ने। और सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सड़क पे खड़े होकर जो आ रहा है उसे चेक करेंगे, अब आपको बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए कि इस ट्रक में चोरी है, आपके पास पहले इंटेलिजेंस होनी चाहिए, संयुक्त आयुक्त रैंक के ऑफिसर एक अप्रूवल चाहिए आपको कि वो अप्रूव करेंगे तभी आप जा सकते हैं, आपके पास क्लियर इंटेलिजेंस होनी चाहिए यही ट्रक में चोरी है
1: जी,
0: तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा ई वे बिल की उसमें।
1: गौरव जी, एक और सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जीएसटी ने भारत को विदेशी निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया है?
0: जी, जीएसटी ने एक सर्टेनिटी दिलाई है विदेशी निवेशकों को कि जीएसटी है तो पूरे देश में एक ही टैक्स है
1: जी,
0: अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होंगे। एक जीएसटी काउंसिल है जो कि जब भी उनकी समस्याएं आती हैं तो जीएसटी काउंसिल उनको सुनता है। जीएसटी काउंसिल ने 250 से अधिक सर्कुलर्स इशू किए हैं जहां भी ट्रेड को दिक्कत होती थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो जीएसटी एक सर्टेनिटी, जो टैक्स सर्टेनिटी चाहिए निवेशक को
1: जी,
0: वो जीएसटी ने दिलाई है।
1: और इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है कि कई अर्थशास्त्री कहते थे कि जीएसटी ने छोटे कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया है।
0: सर, अब हमारे यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन हमारे 67 लाख से बढ़ के 1.7 करोड़ हो गए हैं
1: जी,
0: तो छोटे आदमी बहुत सारे जीएसटी में आए। जीएसटी ने एक फॉर्मलाइज कर दिया इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी काफी कैश बेस थी, काफी वो थी, बिखरी हुई थी, उसको हमने फॉर्मलाइज करके जीएसटी ने एक फॉर्मल चैनल पे ले आया जीएसटी।
1: तो श्रोताओं, जीएसटी ने साबित कर दिया है कि जब एक देश एक सोच से चलता है तो परिवर्तन जरूर आता है, सुधार की ये यात्रा जारी है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों को इतने आसानी से दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: तो बीच में 40।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों के शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने

0: भार दोगुना करने का लक्ष्य। मंगोलिया ने अपनी महत्वपूर्ण तेल शोधन परियोजना में भारत के अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तालिबान ने पाकिस्तान पर समाधान वार्ता प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाते हुए इसे उसकी विफल नीति बताया और अमरीकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इस वर्ष के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। उन्होंने कहा कि व्यापक समझौते ने व्यापार विस्तार, नए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और नए उत्पाद श्रृंखलाओं को शुरू करने के कई अवसर प्रदान किए हैं। विश्व दर्पण के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुक उखना ने आज दोरनू गोबी प्रांत के अल्तान शिरेसूम में तेल शोधन परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भारत के निरंतर सहयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
2: उलान बतार स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुक ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस रिफाइनरी के शुरू होने से मंगोलिया में ही परिष्कृत ईंधन का उत्पादन संभव हो सकेगा। उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने में मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गुदसुर्वे की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 में मंगोलिया यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा मंजूर की गई थी। मंगोलिया सरकार ने इस राशि का उपयोग दोरनू गोबी प्रांत में अपनी पहली तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए करने का फैसला किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने आज पाकिस्तानी अधिकारियों पर समाधान वार्ता को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी समाधान खोजने के बजाय दुष्प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान का अपनी विफलताओं के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच आपातकाल लागू किए जाने के बाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पीटीआई के साथ अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ता जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाति और पीटीआई के प्रांतीय अध्यक्ष जुनेद अकबर भी शामिल हैं। पुलिस ने स्वाबी में पीटीआई के 56 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को बढ़ते आतंकी हमलों और संवैधानिक व्यवस्था के ठप होने का हवाला देते हुए प्रांत में आपातकाल

0: लागू किया था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारियों में फेरबदल किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले सप्ताहांत हुए घातक हमले के बाद उड़ानों के परिचालन पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकारी हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच कर रहे हैं।
1: सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों के साथ हवाई अड्डे की सुरक्षा और परिचालन क्षमता की जांच पूरी होने तक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। 10 और 11 अक्टूबर को हुए हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हमलों के बाद कई विमानन कंपनियों ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ान रद्द या निलंबित कर दी है। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के आधिकारिक प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के खतरे का पता लगाया गया है और उसे निपटने की कार्रवाई की जा रही है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि हमले में मारे गए भारतीय नागरिक मोहम्मद यूसुफ अली के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार रियाद में ही करने का फैसला किया है। दूतावास इसमें परिवार की मदद कर रहा है। दूतावास के अनुसार घायल भारतीयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूतावास ने कहा है कि वह घायलों के परिजनों के संपर्क में है और उन्हें आवश्यक सहायता दे रहा है। इस बीच हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विश्व दर्पण के लिए दुबई से मनीष सेवा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अजीत वर्मा।
0: रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि यूक्रेन के साथ ऊर्जा युद्ध विराम के मुद्दे पर उनके पास अभी कुछ भी कहने को नहीं है। संभावित ऊर्जा युद्ध विराम केवल तेल शोधन संयंत्रों या अन्य सुविधाओं पर लागू होगा या किनके साथ विशेष रूप से संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं, इसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में बुधवार तक चलने वाले ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने बताया कि 3 दिन के इस महोत्सव में 10 नाट्य दल 11 नाटकों का मंचन करेंगे।
2: आज से शुरू हुआ है, 12-13-14 तक के 3 दिन चलेगा। दिल्ली में NST का अपना सभागार अभिमंच तथा LTG कमानी श्रीराम सेंटर, वहाँ पर प्लेस चलेंगे। लगभग हर रोज 2-3 नाटक का मंचन होगा और भारत में 9 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो टैगलाइन है ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल का, शेयर्ड स्टोरीज। सो शेयर्ड स्टोरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अगर शेयर नहीं करेंगे अपनी अपनी सिविलाइजेशनल स्टोरी को, अपने अपने कंटेम्प्रेरी स्टोरी को, रियलाइजेशन को, तो हम वसुधैव कुटुंबकम बनने में असफल रहेंगे।
0: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। IBCA एक संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना विश्व की 7 बिग कैट, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगवार और प्यूमा के संरक्षण के लिए की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। मंगोलिया ने अपनी महत्वपूर्ण तेल शोधन परियोजना में भारत के अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और अमरीकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इस वर्ष के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK, targets doubling bilateral trade by 2030. Mongolia thanks Prime Minister Narendra Modi for India's unwavering support for its strategically important oil refinery project. Taliban accuses Pakistan of sabotaging negotiation process solutions, describing it as Islamabad's failed policy. And American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, that is JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said, this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
4: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
3: India and the European Commission have agreed to strengthen cooperation on carbon markets and the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism or CBAM. The understanding emerged during a meeting between Power Secretary Pankaj Agarwal and Yerasimos Thomas, Director General of Taxation and Customs Union in New Delhi today. Discussions focused on India's carbon market development, carbon pricing mechanisms and monitoring, reporting and verification systems. Both sides expressed willingness to continue technical engagement on recognizing carbon pricing frameworks, sharing expertise and building capacity, while continuing dialogue on CBAM-related methodologies. Mongolian President Ukhnagi Khurelsukh today visited the oil refinery construction site at Altanshiri Som in Mongolia's Dornogobi province and thanked Prime Minister Narendra Modi for India's unwavering support for the strategically important project. According to the Indian Embassy in Ulaanbaatar, Khurelsukh expressed satisfaction with the progress of the strategically important project, which is expected to enable Mongolia to produce its own refined fuel. During Prime Minister Modi's visit to Mongolia in 2015, a line of credit, that is LOC, of $1 billion was approved for development of infrastructure, which the government of Mongolia decided to utilize for the construction of its first ever oil refinery in Dornogobi province with a capacity of 1.5 million metric tons per annum. Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid today accused Pakistani authorities of trying to sabotage the negotiation process and said that its senior officials are focused on propaganda instead of finding solutions, describing it as Islamabad's failed policy. Mujahid said that Pakistan blaming Afghanistan for its own failures is no solution to any problem and said that Islamabad is facing political, security, social and economic challenges, which is a matter of serious concern. Mujahid urged Pakistan to take constructive steps to address its domestic challenges and respect the views and rights of its politicians and people. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Michael Woodford for developing macroeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said, their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments and central banks' ability to respond to economic fluctuations. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. The prize carries an award of 12 million Swedish krona, which will be shared equally between the two laureates. This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Saudi Arabia has extended the suspension of operations at King Khalid International Airport in Riyadh as authorities continue safety inspections following deadly attacks over the weekend. Saudi Arabia also reported a fresh threat involving

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। वक्त हो गया है 10:31 हर श्रृंगार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। तो चलिए आज का हर श्रृंगार शुरू करते हैं इम्तिहान फिल्म के गीत के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर।

0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, ये तो सच है कि प्यार कहीं रुकता नहीं है। प्यार एक नदी की तरह बहता चला जाता है, कभी धीरे तो कभी तेज। और इसे बहने दो, इसे रुकने मत दो। क्यों? क्योंकि ये प्यार ही तो है जो आपको आगे बढ़ते रहने का एक हौसला देता है। और आपको लगता है कि जिसे हम चाहते हैं, जिसे हमें मोहब्बत है, वो शख्स हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। अगला गीत है रंग फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 10:54 और 7 सेकंड हो चुके हैं। बाकी फिल्म से अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार, आपके अपने
1: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, प्यार में जीवन फीका नहीं होता, जबकि प्यार के बिना जीवन फीका जरूर हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। प्यार हमेशा सच्चा हो, अब ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है, प्यार जीवन के लिए जरूरी बहुत है। जैसे हम और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और जुड़े रहते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz के जरिए। अगला गीत आप सुनेंगे दिल तेरा आशिक फिल्म से। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर होंगे समाचार। 10:55 और 19 सेकंड हो चुके हैं। 11:10 पर होगा

0: गिट मंत्रा का पुनः प्रसारण 11:40 पर होगा। गीत मेरे मनमीत संग्रहूंगी आपके मैं अर्पणा। फिलहाल आप लीजिए इस गीत का आनंद और गीत के बाद जरूर सुनिएगा एफएम गोल्ड पर समाचार।
1: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार बाजरा रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है जिनका उपयोग रोटी दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है।

0: नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आई एम अनुभा रोहतगी विद माय को-एंकर अमित गोयल।
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2331-4444-2331-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें। कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा रोहतगी।
0: थैंक यू अमित। Benchmark domestic indices decline, Sensex sheds over 500 points, Nifty settles at 22,363. Country's retail inflation rises to 5.54% in September this year, and global crude oil prices rise over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों का नुकसान, निफ्टी 22,363 के स्तर पर दर्ज। सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.45% दर्ज हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की तेजी।

0: And before we give you the economic details, the stories, very important announcement for you, our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार आज कारोबार की शुरुआत में मजबूती के साथ तो खुले, लेकिन शुरुआती बढ़त कायम न रह सकी। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट से 548 अंक गिरकर 71,925 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices failed to hold their initial gains and ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points, nearly 0.8%, to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points or 0.7% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The Mid-Cap 100 index edged up marginally and the Small-Cap 100 index gained 1.4%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेज ऑन द बीएसई 17 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड डाउनवर्ड। अमंग द टॉप लैगर्ड्स हॉस्पिटल्स शेड 2%, एफएमसीजी फेल ओवर 1.3% एंड पीएसयू बैंक्स ड्रॉप्ड 1%। In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3% and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined and shares of 281 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पर दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ नांगली दिल्ली से।
1: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन है, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर

0: दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है, तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो काला बाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा, मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं? बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए सर।
1: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
2: जोशी साहब देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्यौहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहाँ तक सवाल स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाएंगे, कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी, लेकिन हाँ उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ कीजिएगा, नवंबर के बाद जो है 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी कीमतों में गिरावट आए।
3: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended, after 8 weeks that the market closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
2: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is the one of the big problems. So if you see the crude price is almost around $105 yes. per barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arab. That means the more disruptions possible in the crude oil market. Then there was expectation that inflation is expected to go up, as we have seen that inflation is now 5.54%. And that is giving a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike. Yes. So this was the third one. And the other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks. Yeah. So combination of all the bad news had an impact on the stock market. And market is still looking for some kind of positive news. But unfortunately, they are getting nothing. And that is why we are seeing lot of selling pressure in the market.
1: मुंबई से अगले श्रोता के तौर पर रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लड रिलेशन में मैं मेरे लड़के के नाम, मिसेस के नाम पर कर सकता हूँ क्या, ये सवाल है। और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे, ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहे?
2: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं? चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफर जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है। बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुंच जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेजी दिखेगी। जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में तीन हैं, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा।
3: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा।
2: गुड इवनिंग।
5: हाँ सर, एक सवाल अभी आपसे सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज

0: अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75. अब वो पिछले तीन चार पांच दिन से देयर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, विच इज एडिंग टू द कोर इन्फ्लेशन फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय. एटलीस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल.
1: सर जस्ट अ मिनट, कोर इन्फ्लेशन हैज नथिंग टू डू विद द ओनियन, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन इज माइनस फूड एंड फ्यूल. या
0: आई नो, व्हाट आई मीन बाय कोर इन्फ्लेशन कंसर्निंग द कंज्यूमर्स डेली बाइंग.
1: नो, प्लीज, सो प्लीज बी, या प्लीज बी क्लियर ऑन दैट सर. थैंक यू सर, प्लीज गो अहेड.
0: एंड सेकंड, सो द गवर्नमेंट के जो राइट, जो गवर्नमेंट के डोमेन में आती हैं कंज्यूमर आइटम सप्लाई करना, उनकी सप्लाई तो ऐसे ऐसे माहौल में थोड़ी सी रेगुलर होनी चाहिए. दैट्स ऑल माय क्वेश्चन.
1: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं, तो जो 5.54% महंगाई के आंकड़े हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफी ज्यादा है. और दूसरे अलावा और भी तीन सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ कीजिएगा, भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और नींबू की बात करें, यानी कि टॉप 5 आइटम्स में 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं. अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति इसकी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है. इस बार प्याज की पैदावार में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है. तो मदर डेयरी पे, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहां पर उपलब्ध है जहां तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी मैंने देखा है. और बाकी जो जिसको कहते हैं ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी, वो भी चल रहा है. लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है. एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है, वहां से नई फसल जल्दी ही बाजार में आएगी. तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं.
2: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
1: और नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है.
2: जी शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में टिगर नहीं है कच्चे तेल की कीमतों ने, उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटीमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है. क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, हम कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहां से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा, या बाजार को वहां से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
1: देखिए, पॉजिटिव तो वहां से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है. और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है.
2: जी,
1: ब्याज दर बढ़ती है तो हम आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक से पैसा, बैंक में ही पैसा रखो या ऐसे जगह पे रखो जहां आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है, और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफी ऊंची है. और भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है, अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है. अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे. दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे. शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे. लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आती है.
3: शिशिर, यू नो, अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ triggers, but before I come take my question to you, we have the next caller with us online. Nitin is calling us from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: Namaskar ji.
3: Namaste. अपना सवाल पूछें.
4: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में 1 साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, 1 साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड रहेगा. दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे, तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनो के, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे, तो उस सिक्के को हम सेल करेंगे, तो जो वैल्यू हम लाएंगे, तो उसके बाद वो कौन से

0: लेता है कि नहीं लेता है, ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरेते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है, और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे ले लिया है, तो एक साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी।
2: शशिल, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं, जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं।
1: मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला आपने अगर एक साल के लिए ब्याज के लिए, एक साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है और वहां पर आपने एक साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज, जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपने देखा होगा कि आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको एक साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको तीन महीने में, छह महीने में, साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो तीन महीने छह महीने की बात नहीं, अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद पूरी होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा। तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर और उसे बेचने जाते हैं, तो किसे आप बेच रहे हैं? किसी एक संगठित जगह पे बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं? और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पे जाते हैं तो आपको नगद तो मिल जाता है जो उस समय आपके भाव है। गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आपको उससे कम मिले भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं।
2: जी, सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट, एज यू नो, अमित वाज सेइंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर, एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, they are not getting positive triggers from anywhere, but for an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because there's a, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices, in the stock market share prices, and so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
1: certainly, because market always needs money as well as the patience. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
2: Yes.
1: So what happens that when there is a correction in the market, we say, oh, we are going to lose everything. But those are the, I mean, something, most of the time it is the notional loss.
2: Yes.
1: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stake at a stock at a very low price, that's really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
2: Yes.
1: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices, and you should also have some money put into the mutual fund.
2: Yes.
1: And apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold, that would be really good.
2: Right.
3: अगले श्रोता के तौर पे महाराष्ट्र से के शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना सवाल पूछिए।
4: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: मेरा क्वेश्चन ये था कि टीयर टू जो सिटी है, मतलब टीयर वन में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या बड़ा सिटी, वहाँ बंदरगाह होता है, पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत ज्यादा होता है। टीयर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
1: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और आपको एक चीज़ बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट हम आपको बताएं कि आईटी कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पे खोले हैं जहां पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहां पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहां पर खोले हैं। तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई है या फिर वहां पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है। तो आप अगर छोटे शहर में है या मझोले शहर में है तो वहां पर आर्थिक परिस्थितियां और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
3: शिशिर, अगर रुपए की स्थिति पे आते हैं, रुपए ने तकरीबन आज 1 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग

0: के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी। हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद सीआरआर रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
1: सीआरआर रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने।
2: देखिए अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ये असर कुछ समय तक बना रहेगा।
0: और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा।
1: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated to 5.54% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83% recorded in August. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas increased to 6.08%, while in urban regions it rose to 4.88%, and food prices continue to remain a key driver of inflation. A very brief comment from you.
2: Anubha, just one thing. It's a median target rate of 4%, which right. we have breached. In fact, that was breached last month itself. Now the concern is that if it exceeds 6%, then there yes. will be a bigger problem. So, and as of now, we are expecting that it will breach.
1: It will breach.
0: दिल्ली से श्री एनपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी
3: सर, गुड इवनिंग टू द ऑल पैनलिस्ट। आई जस्ट वांट टू नो दैट इफ द इट्स अबाउट यूपीआई, इफ द यूपीआई अमाउंट इज 3000 एंड वी डिवाइड द पेमेंट इनटू 2000 एंड 1000 इन टू टाइम्स, सो देन आल्सो इट विल अट्रैक्ट द यू नो द सरचार्ज।
2: If it is less than 2000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2000 rupees and 1000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course it will. 2000, for the 2000 rupees, it will, because 2000 or more. So it will attract MDR. But please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer, it is a shopkeeper who has to pay at the time of getting money from the bank or the institutions.
0: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है। यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया। हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही। इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया। हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं। जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
4: हेलो सर, नमस्ते। आकाश बोल रहा, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल, मेरी एफडी बनी हुई है तो उसमें एक साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया, तो दूसरा सवाल जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट करा है अभी, तो गोल्ड जैसे एफडी का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या एफडी में ही हमें बने रहना चाहिए, और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
2: देखिए, आपकी शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना, उसी शर्त पे भुगतान होगा। ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है। रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही, तो आपको नुकसान होगा।
1: And let's move on to the next story. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Mike Woodford for developing microeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments and central banks' ability to respond to economic fluctuations. The Nobel Committee said the economists developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
5: Yeah, my quick question to market mantra team and Sarit. Sir, जो भी गलत हो सकता था वो शायद हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है. अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो have we touched the rock bottom? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आपका क्या ओपिनियन? रिबाउंड
2: बाजार कितने स्तर पे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां.
1: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर डबलिंग इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड बाय 2030. मिस्टर गोयल सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द बिजनेस प्लीनरी अंडर द 16th सेशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी इन न्यू दिल्ली टुडे. द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन बिजनेसेस इन बोथ कंट्रीज टू ट्रांसलेट द अपॉर्चुनिटीज created by the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement into expanded trade, investment, partnerships and job creation. And let's move on to commodities now. Global crude oil prices reversed course and moved higher today amid skepticism over US President Donald Trump's announcement of energy ceasefire between Ukraine and Russia. Brent crude was trading 1.2% up at $105.99 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading over 1.2% higher at $92.98 per barrel at the time of writing this report.
0: घरेलू सराफा बाजार में सोना 0.9% की गिरावट से 148,061 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान से 2,20,295 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. बहुत संक्षेप में अगर दोनों चीजों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नजर आ रहा है.
2: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमजोर होगा. और कच्चे तेल की जहां तक बात करें, सऊदी अरब और उन जगह पर हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते.
0: जी शिशिर, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363. कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.54% इन सितंबर दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

11:40 और 55 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है गीत मेरे मनमीत और आज आपके संग है अर्पणा। शुरू करते हैं गीत मेरे मनमीत के लता जी की आवाज के

साथ मशरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, और इसके बाद किशोर कुमार की आवाज होगी और आनंद बख्शी का लिखा गीत होगा, आर टी बर्मन का संगीत होगा, फिल्म का नाम है अलग अलग। तो बैक टू बैक इन दो फिल्मों का आप गीतों का आनंद लीजिए, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 7.1 मेगाहर्ट्ज़, गीत मेरे मनमीत में।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, और संगीत जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, दो रास्ते फिल्म से ये गीत होगा। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए भी सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं। इनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। एस्टोनिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में एस्टोनियाई संसद भवन रीकी कोगू में पद की शपथ ली। उन्होंने श्री अलार कारिस का स्थान लिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है जीने की राह।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। ये जो यादें होती हैं ना, उनमें से कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी तारीख की, किसी मौके की जरूरत नहीं होती। जैसे एक खुशबू, एक गीत और एक मौसम। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनसे कि अगर कोई भी अच्छी याद जुड़ी हो तो पूरा का पूरा अतीत सामने आ जाता है, एक तस्वीर बन जाती है। बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू भी कभी कभी किसी पुराने आंगन तक ले जाती है। और यादों की तो अपनी कोई घड़ी भी नहीं होती, वे जब आती हैं तो अपने साथ पूरा समय लेकर आती हैं। कभी मुस्कुराहट देती हैं, कभी आंखें नम कर देती हैं, लेकिन हर याद का मतलब लौटना नहीं होता। कुछ यादें हमें ये भी बताने आती हैं कि हमने कभी किसी पल को पूरी शिद्दत से, बहुत प्यार से जिया था। इसलिए आज जो याद आए उसे प्यार से याद कीजिए और फिर उसे उसकी जगह रहने दीजिए और रात को आगे बढ़ने दीजिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है हमशक्ल।

ठीक जैसे यादों की कोई घड़ी नहीं होती, वैसे ही जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो अक्सर शब्दों में नहीं कही जाती। अगर शब्दों में दिल की बातों को बांधने की कोशिश करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो या तो किसी गीत की धुन में उतरती है, या किसी खुशबू में लौट आती है, या अचानक किसी पुराने नाम के साथ यादों में उतर जाती है। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये भी थोड़े अजीब से होते हैं। इसे जितना हम छिपाने की कोशिश करते हैं उतने ही भीतर से गहरे होते चले जाते हैं, और रात उन्हें आवाज देकर बहुत पास बुलाती है। शायद इसलिए देर रात सुने गए गीत, देर रात कही गई कोई बात सीधे दिल पर दस्तक देती है। दिन हमें व्यस्त रखता है और रात हमें संवेदनशील बनाती है। तो आज अगर आपका भी दिल आपसे कुछ कहना चाहता हो तो उसे रोकने की कोशिश जरा भी मत करिए। उस हर एक भावना का, हर एक सेंटिमेंट, हर एक इमोशन का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। बस उसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी रात जो खुद के साथ गुजारनी होती है उसकी जरूरत होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अगला गीत फिल्म मन की आंखें से आपके लिए।

और आज निशिगंधा में जब हम बात कर रहे हैं रात की, मन की और रात के संगीत की, यादों की, तो फिर एक और बात याद आती है जो सीधे रात से जुड़ी हुई है। रात दिन की थकती हुई कहानियों का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलने का सबसे खूबसूरत वक्त है। जब शहर की आवाजें कम हो जाती हैं, तब भीतर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। किसी को नींद की तलाश है, किसी को किसी के अपने की याद की तलाश है। किसी के पास यूं तो कहने को बहुत कुछ है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बिल्कुल खाली है। और रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अनजान लोगों के बीच भी बहुत सारी कहानियों के

साथ उपस्थित रहता है। तो इस रात अपने लिए कुछ पल जरूर संभाल कर रखिए और कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। आज की रात ये कहती है कि आप अपने आप को महसूस करना सीखिए, खुद के साथ ठहरना सीखिए और हमारा एफएम गोल्ड यानी कि ये रेडियो स्टेशन जो हमारे मन का रेडियो है, ये सबके साथ ठहरता है, आपसे आपकी बातें आप तक भी पहुंचाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निशिगंधा। निशिगंधा के बाद हमारे और भी कार्यक्रम होंगे। फिलहाल सुनते हैं एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ हूं मैं जयति। निशिगंधा में अगला गीत आप सभी के लिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है नया दौर।

ये जो रात की चाय होती है ना, जी हाँ रात की चाय, बात जब रात की हो रही है, रात की यादों की हो रही है, तो रात की चाय को कैसे भूल सकते हैं। जो रात की चाय होती है ना, वो जाने क्यों दिन भर के बातों में घुल जाती है। पहली चुस्की जैसे कहती है, अब थोड़ा और अपने पास लौटो, और कभी इसी प्याले के साथ किसी का इंतजार किया था, याद है। मोबाइल की स्क्रीन बार बार देखना और फिर खुद ही मुस्कुरा देना, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। कभी कोई सामने बैठा होता था और चाय ठंडी हो जाती थी, पर जनाब बातें नहीं थमती थी। आज वही प्याला अकेला है, मगर स्मृति अब भी गर्म है। शायद चीजें नहीं, उनसे जुड़े हुए पल हमें बार बार आकर छू जाते हैं। इसलिए अगली बार अगर चाय बनाइए जनाब, तो जल्दी जल्दी मत पीजिएगा। एक घूंट बीते कल के नाम और एक आज के नाम जरूर रखिएगा, और आखिरी चुस्की उस व्यक्ति के नाम रखिएगा जिसने कभी आपकी साधारण सी शाम को भी बेहद खास बना दिया था। क्योंकि स्वाद जो है वो जीभ से उतर जाते हैं, लेकिन बातें और यादें सीधे जाकर स्मृति में घुल जाती हैं, बस जाती हैं। और ये जो बातें हैं ना रात के साथ, ये बार बार याद आकर मन के दरवाजे पर हौले हौले दस्तक देती रहती हैं। और अब अगला गीत निशिगंधा में मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरे सनम।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि फिर थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाएं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए

0: लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतर खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने कल सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु को महिला सिंगल्स के शुरुआती दौर में कोरिया की एन से यंग के विरुद्ध कठिन चुनौती का सामना करना होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी खेल 2026 के क्वार्टर फाइनल से बाहर होकर खिताब का बचाव करने से चूकने के बाद पहली बार कोर्ट पर वापसी करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
3: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
2: The Commerce and Industry Minister addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi yesterday. Mr. Goyal emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policymaking. Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes, and strengthen trust in healthcare services. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava has written a letter to the chief secretaries of all the states and

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो आप पहला गीत सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये बातें हमने कई बार की हैं कि प्रेम को लिखना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। प्रेम की व्याख्या को शब्दों में बांधना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम और या फिर सबसे आसान काम। प्रेम कभी किसी अनुबंध की पंक्ति में नहीं होता, वह तो उस सुगंध की तरह होता है जो फूल से अनुमति नहीं मांगता फिर भी उसके साथ बना रहता है। उसका जन्म किसी नियम पुस्तिका में नहीं बल्कि मन के अंदर धड़कते हुए विश्वास में होता है, जहां देना किसी गणना का विषय नहीं रहता। और ये प्रेम जो है ना, जब कर्तव्य का वस्त्र पहन लेता है तब मुस्कुराहटों पर एक अदृश्य बोझ उतर आता है। हम साथ तो चलते हैं किंतु उनकी उष्मा धीरे धीरे अनजानी होने लगती है। नेत्र मिलते हैं पर उनमें वह आर्द्र चमक नहीं उतरती जो बिना कहे समूचा आकाश पढ़ लेती थी। कर्तव्य आवश्यक है पर जीवन व्यवस्था संभालता है, घर को आकार देता है, रिश्तों को आधार देता है, किंतु प्रेम केवल आधार पर नहीं टिका करता।

उसे चाहिए एक सहज स्पर्श की निष्कपटता, एक प्रतीक्षा की मधुर लय, एक स्मरण की भीगी गर्माहट और वह अपनापन जो किसी कारण का मोहताज नहीं होता, जहां प्रत्येक स्नेहिल व्यवहार सिर्फ इसलिए निभाया जाए कि निभाना आवश्यक है, वहां भावों की धरती धीरे धीरे बंजर होने लगती है। और अब अगला गीत, फिल्म का नाम है जीने की राह, आवाज है मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है कभी कभी।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। मैंने तुम्हें किसी गुलदान में नहीं रखा, ना ही किसी चमकते कोने में सजाया, जहां ऋतुएं बदलते ही रंग अपना परिचय खो बैठते हैं। मैंने तुम्हें रखा था एक ऐसे पन्ने के पास जहां अक्षर अभी भी अपने जन्म की गर्माहट संभाले हुए थे, जहां एक अधूरी पंक्ति प्रतिदिन अपना अर्थ बदलती थी और एक विराम चिन्ह पूरे आकाश की जितना विस्तृत लगता था। कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती, कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती, किंतु मुझे सदैव लगा कि उनका जाना ही उनकी पराजय नहीं होती। कुछ चीजें अपने रंग से नहीं, अपने स्पर्श की छाप से जीवित रहती हैं। इसलिए मैंने किसी उपहार की चमक से अधिक विचारों की रोशनी को चुना, क्योंकि कागज पर दर्ज एक अनुभूति वर्षों बाद भी उतनी ही ताजा मिल सकती है जितनी किसी पहली दोपहर में थी, जितनी किसी पहली दोपहर में थी। और अगला गीत, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है मोहम्मद रफी की।

जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं, तो घर याद आता है। जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं, तो घर याद आता है। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है गूंज उठे शहनाई। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रज मोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए तकनीक और परंपरा को साथ चलना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में निरामयता, दक्षिण एशियाई ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निरामयता व्यक्ति, समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंधों की सभ्यतागत समझ की खोज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रतजगों का क्या होगा, अब मेरे रतजगों का क्या होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहां था, ये जब न गुजरा था तब कहां था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहां है, कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है। और आज सुरमई में अगला गीत, फिल्म का नाम है आसपास, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती।

बेरुखी का सारा हिसाब। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अगला गीत, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज है उदित नारायण और लता मंगेशकर।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। कभी आना, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की हर सुबह शाम और रात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की हर सुबह शाम और रात होगी। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी, फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अगला गीत फिल्म का नाम है अभिनेत्री, आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं, चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो फिर सुनते भी हैं, चलो फिर सुनते भी हैं। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है, तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लोफर।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ और फिर मिलने के वादे के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया। ये स्वदेशी तकनीक प्रदर्शित करने और उद्योगों द्वारा उनके हस्तांतरण अपनाने तथा व्यवसायीकरण को सुगम बनाने के लिए विवरण सूची अनुसंधान और उद्योगों के बीच की दूरी पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला राष्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
3: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected path towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
2: Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes, and strengthen trust in healthcare services. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava has written a letter to the chief secretaries of all the states and UTs in this regard. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. The meeting held a discussion on various issues concerning sugarcane farmers, including ground-level challenges, discrepancies in recovery figures reported by sugar mills, weighing procedures, wastage, laboratory testing and crop insurance. This committee will comprise representatives from the central government, state governments of Karnataka and Maharashtra, farmers' organizations and sugar mills, as well as subject matter expert scientists. President Draupadi Murmu has appointed governors for six states. Mr. Om Prakash Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Kerala. He will replace the current governor of Kerala, Mr. Rajendra Vishwanath Arulekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Odisha, Dr. Sida Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dhar Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. Uttar Pradesh government yesterday provided Rs. 493 crore in financial assistance to direct benefit transfer DBT as an agricultural input subsidy to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstorms and cyclones. In the function organized in Gorakhpur,

तेरी आवाज में मेरी आवाज का मिल जाना, जैसे किसी ख्वाब का हकीकत बन जाना। तो एक गीत की पहली सी पंक्ति बन जाए, मैं उस गीत का हर लफ्ज गुनगुनाऊं। नमस्कार दोस्तों, रात के इस सुहाने पहर में मैं अर्चना गोयल आपका स्वागत करती हूं। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अपने बेहद खास कार्यक्रम हमराही में। दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। आज हम अकेले गुनगुनाने वाले गीत नहीं, बल्कि अपनी महफिल सजाएंगे जिसमें दो आवाजें हैं या किसी का साथ है, दो दिल हैं, दो एहसास हैं और एक खूबसूरत सी मोहब्बत है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं बहुत ही सुंदर गीत के साथ।

साहिब, बीबी और गुलाम। इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले और सखियों को। क्या आपने कभी ऐसा गीत सुना है जिसमें मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक वादा बन जाती है? प्यार में वादे करना आसान है लेकिन उन वादों को निभाना शायद वही सच्ची मोहब्बत की पहचान है। क्या आपने कभी किसी से ऐसा वादा किया है जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? कोई ऐसा वादा जो सालों बाद भी आपके दिल में उसी तरह महकता है? तो सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

हरियाली और रास्ता फिल्म में ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। मोहब्बत का ये अंदाज भी कितना प्यारा है ना। कभी एक रूठता है तो दूसरा मनाता है, कभी एक शिकायत करता है तो दूसरा मुस्कुराकर उस शिकायत को भी प्यार में बदल देता है। और सच कहें तो रिश्तों में अगर थोड़ी नोक झोंक ना हो तो शायद प्यार की कहानी में कुछ कमी सी रह जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूठने में भी अपनापन है और मनाने में भी सम्मान, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां दोनों एक दूसरे के दिल की कद्र करें।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म सूरज से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।

दोस्तों, जिंदगी का सफर अकेले भी तय किया जा सकता है, लेकिन किसी अपने का साथ मिल जाए तो मुश्किल रास्तों पर भी चलने का हौसला आ जाता है। एक अच्छा हमसफर वो नहीं जो खुशियों में आपके साथ हंसे, बल्कि वो है जो आपकी खामोशी समझे, आपकी थकान को समझे और बिना कहे ये एहसास दिला दे कि आप अकेले नहीं हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग अनजान रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मंजिल का पता पूरी तरह नहीं।

0: मालूम, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। रास्ते की अनिश्चितता अब उन्हें डरावनी नहीं लगती, क्योंकि साथ है एक दूसरे का।
1: हुस्न जब जब इश्क

रात गहराती जा रही है और इस रात के साथ हमारे गीतों का सफर भी और खूबसूरत होता जा रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि रात के समय कुछ गीत दिन के मुकाबले ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं? शायद इसलिए कि दिन भर की भागदौड़ के बाद रात हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है, उन बातों को याद करने का समय देती है जिन्हें हम अपनी व्यस्तता में कहीं पीछे छोड़ आए थे। ठीक कहा ना मैंने?

चांद निकले तो तेरा ख्याल आता है, दिल चुप रहे फिर भी सवाल आता है। कौन कहता है दूरियों से मिट जाता है प्यार, कभी कभी फासलों में भी कमाल होता है। और वह एक ऐसा गीत जिसमें सुरों की मिठास के साथ प्रेम की एक नर्म सी दुनिया बसती है। सुनिए और महसूस कीजिए उस पुराने सिनेमाई रोमांस को जिसका जादू आज भी कम नहीं हुआ। लव मैरिज फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

0: दोस्तों, हर बात को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी की आंखों में देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। कभी मुस्कान बता देती है कि दिल में कोई खास जगह बना चुका है, और कभी एक नजर इतनी गहरी होती है कि याद बरसों तक चलती है। मोहब्बत का यही तो जादू है जो साधारण से पलों को भी असाधारण बना देता है। जो रिश्ते दिल में बसते हैं उनमें दिखावे से ज्यादा अहमियत सच्चाई की होती है। आइए सुनते हैं ऐसा युगल गीत जो अपने सहज रोमांस और मधुर धुन के कारण आज भी दिलों में है।
1: बिजली गिरा के आप खुद

देखते ही देखते ये संगीतमय रात बहुत खूबसूरती के साथ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आज हमने उन गीतों को याद किया जिसमें दो आवाजें थीं, लेकिन एहसास एक था। ऐसे गीत जो हमें बताते हैं कि प्रेम केवल कहने की चीज नहीं बल्कि हर दिन निभाने का नाम है। रात ढले तो यादों का कारवां निकले, दिल से दिल तक प्यार का रास्ता निकले। गीत खत्म हो, धुने खामोश हो जाए, मगर दिल में मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे।

और अब इस गीत के साथ ही अर्चना गोयल आपसे विदा चाहती है कार्यक्रम हमराही से। 4:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रिजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु पुदुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
3: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
2: Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes and strengthen trust in healthcare services. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava has written a letter to chief secretaries of all the states and UTs in this regard. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Prahlad Joshi, held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. The meeting held discussion on various issues concerning sugarcane farmers, including ground-level challenges, discrepancies in recovery figures reported by sugar mills, weighing procedures, wastage, laboratory testing and crop insurance. This committee will comprise representatives from the central government, state governments of Karnataka and Maharashtra, farmers' organizations and sugar mills, as well as subject matter expert scientists. President Draupadi Murmu has appointed governors for six states. Mr. Om Prakash Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Kerala. He will replace the current governor of Kerala, Mr. Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Odisha, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. Uttar Pradesh government yesterday provided 493 crore rupees in financial assistance through direct benefit transfer (DBT) as an agricultural input subsidy to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstones and cyclones. In the function organized in Gorakhpur for this purpose, Chief Minister Yogi Adityanath said that within just 8 to 10 days, the double engine government has made arrangements to provide compensation to our food providers, farmers with damage to their crops, houses and livestock. CM stated that 493 crore rupees is being transferred directly to the bank accounts of 9,18,091 farmers in the state. In Jammu and Kashmir, four terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba commander, were killed in a landmine blast along the line of control LOC when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The group of terrorists were trying to sneak across the LOC in the Nangitakri area of Krishna Ghati sector late yesterday when they triggered a mine. The powerful blast killed all four terrorists on the spot. India Meteorological Department has forecast thunderstorms.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आप सभी को सुबह की पावन बेला में बहुत बहुत नमस्कार। एक नई सुबह, एक नया दिन, नई उम्मीदें और जीवन को एक बार फिर से खूबसूरती से जीने का एक नया अवसर लेकर हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आज की इस सुबह हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे माँ दुर्गा के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पण करके। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से करते हैं।

आज नवरात्रि का पावन अवसर है। चारों ओर भक्ति का वातावरण है। कहीं माँ के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं मंदिरों में आरती हो रही है, कहीं घर के आंगन में दीपक जल रहा है, तो कहीं कोई भक्त आंखें बंद करके बस इतना कह रहा है, हे माँ मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहते भी हैं जब भी मन के आंगन में अंधेरा छा जाता है, माँ का नाम लेते ही विश्वास लौट आता है। राहें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, माँ का आशीष हो तो हौसला बढ़ जाता है।

माँ दुर्गा ये नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। एक और माँ का ममतामयी स्वरूप जो अपने बच्चों को स्नेह से संभालता है, और दूसरी ओर उसका दुर्गा स्वरूप जो अन्याय और बुराई

के सामने अडिग होकर खड़ा रहता है। माँ हमें सिखाती है प्रेम करना भी शक्ति है और गलत के विरुद्ध आवाज उठाना भी शक्ति है। दूसरों के आंसू पोंछना भी पूजा है और अपने भीतर के डर को हराना भी साधना है।

दोस्तों, नवरात्रि में मां के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप हमें जीवन का एक सुंदर संदेश देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मां की भक्ति केवल सर झुकाने से उनके में नहीं बल्कि उनके गुणों को जीवन में अपनाने से है। दीपक जलाना ही आराधना नहीं, किसी के अंधेरे में उजाला बन जाना ही सच्ची साधना है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और अरुणिमा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:34 और 32 सेकंड।

दोस्तों, पूजा में हम माँ को फूल अर्पित करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हमारे स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है? किसी बुजुर्ग को हमारी 2 मिनट की बातचीत चाहिए, किसी बच्चे को हमारा प्रोत्साहन चाहिए, किसी मित्र को हमारी बात सुनने वाला भरोसेमंद साथी चाहिए, किसी परेशान को सिर्फ इतना चाहिए कि घबराइए मत, मैं आपकी

क्यों ना आज एक छोटा सा संकल्प लें, हम किसी की आलोचना करने से पहले उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रियजनों को केवल उनकी कमियां नहीं बताएंगे बल्कि उनकी अच्छाइयों की सराहना भी करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने प्रति भी थोड़े दयालु बनना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर गलती के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना है।

के इस कार्यक्रम में हम कुछ पल अपने मन के नाम करते हैं। यदि आप इस समय किसी शांत स्थान पर बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए और सहज भाव से मन ही मन माँ का स्मरण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर विश्वास का दीपक जल रहा है। ये दीपक आपको याद दिलाता है कि आप हर परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब समय है आज की इस सुंदर और भक्तिमय सुबह को विदा कहने का। आज अरुणिमा में हमने माँ की महिमा को याद किया, उनके स्वरूपों से मिलने वाली प्रेरणा पर बात की और समझने की कोशिश की कि सुबह की सकारात्मक सोच किस प्रकार हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। माँ का नाम हो होठों पर, मन में नया उजाला, हर मुश्किल से लड़ने का हो अपने भीतर विश्वास, हर सुबह एक नई उम्मीद, हर दिन एक नई उड़ान, माँ की कृपा से रोशन रहे जीवन का हर आयाम।

0: बैठक आज नई दिल्ली में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में शामिल होने वाले सभी गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर श्री शाह ने कहा कि ये बैठक आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद कार्यक्रम में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय अब ये तय करेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान अलग अलग की जा सकती है या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। विस्फोट का सटीक स्थान नांगी टकरी क्षेत्र में सतवाल नाकी है, जहां से सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल हालिया क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन कर रहा है। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में ओलंपिक चैंपियंस और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The center has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. Uttar Pradesh government has provided 493 crore rupees in financial assistance to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstones and cyclones. In the function organized in Gorakhpur, Chief Minister Yogi Adityanath said, within just 8 to 10 days, the double engine government has made arrangements to provide compensation to the food providers for damage to their crops, houses and livestock. The CM stated that the subsidy is being transferred directly to the bank accounts of over 9 lakh farmers in the state. The Election Commission of India has extended the deadline for filing claims and objections to Maharashtra's draft electoral rolls to 26th of this month. The draft electoral rolls are published on 31st August. According to the revised schedule, the disposal of claims and objections will be completed by 10th of November, while the final electoral rolls will be published as scheduled on 16th November. The Chief Electoral Officer has urged eligible citizens and new voters to use the extended period to enroll, correct existing entries or file objections wherever necessary. India and the European Commission have agreed to strengthen cooperation on carbon markets and the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism, or CBAM. The understanding emerged during a meeting between Power Secretary Pankaj Agarwal and Gerasimos Thomas, Director General for Taxation and Customs Union, in New Delhi yesterday. Top officials of India and Iran held talks yesterday and exchanged views on the latest regional and international developments and issues of mutual interest. The Iranian embassy in New Delhi said in a social media post that Secretary of Iran's Supreme National Security Council, Mohsen Rezaei, held a telephone conversation with National Security Advisor NSA Ajit Doval last evening. In Jammu and Kashmir, four terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba elite commander, were killed in a landmine blast along the line of control LOC when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The group of terrorists was trying to sneak across the LOC in the Nange Takri area of Krishna Ghati sector late yesterday when they triggered a mine. In Chhattisgarh, security forces achieved a significant success in the ongoing anti-Naxal campaign by recovering a large cache of automatic weapons, live ammunition and explosives from the Naxalite dump hidden in the dense forests of Sukma district. Acting on vital intelligence provided by surrendered Naxalites, a joint team of the district force, district reserve guard and Bastar fighters conducted an area domination and search operation in the hilly forest terrain of village Palchalma under Kistaram police station limit. President Draupadi Murmu has appointed governors for six states. Om Prakash Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Kerala. He will replace the current governor of Kerala, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Odisha, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. The center has informed the Supreme Court that it has decided to regulate trade margins on anti-cancer medicines by capping them at 30% of the maximum retail price, while the Apex Court called for a broader review of medicine pricing across the pharmaceutical sector. Appearing for the Union Government, Solicitor General Tushar Mehta told a bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta that the centre would notify a list of cancer drugs to which the trade margin cap would apply. The development comes after repeated questioning by the Apex Court regarding the substantial disparity between the price at which medicines are supplied to retailers and the maximum retail price printed on them. In badminton, PV Sindhu and the men's doubles duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will lead India's campaign at the Denmark Open, which begins today. Sindhu will face a formidable opening round challenge against Olympic champion and world number one An Se-yong of Republic of Korea in women's singles. India Meteorological Department has forecast thunderstorms and lightning conditions today over parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab. And that is the end of this news bulletin.

सुहानी। सुबह के 5:11 हो चुके हैं और आपके साथ कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुबह की प्यारी सी छटा में आप सभी को एक नई सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी बात से आज की शुरुआत करना चाहूंगी। हर सुबह अपने साथ एक नया पैगाम लाती है, कभी उम्मीद, कभी हौसला, कभी मुस्कान लाती है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, नई सुबह जीवन को फिर से जीने का बहाना लाती है। तो आइए अपनी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं अच्छे विचारों, मधुर संगीत और सकारात्मक भावनाओं के साथ, भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ।

दोस्तों, आपने कभी सुबह के शांत वातावरण को ध्यान से महसूस किया है? जब आसमान धीरे धीरे अपना रंग बदलता है, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं और पक्षियों की आवाजें वातावरण में संगीत घोल देती हैं, तब लगता है प्रकृति हमें कोई सुंदर संदेश दे रही हो। प्रकृति कहती है, ठहरिए, कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने आसपास बिखरी सुंदरता को देखिए।

साथियों, हमारा विचार है कि अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, शुक्रिया से कीजिए। जरा सोचिए, सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे पास एक नया दिन होता है, सांसों का साथ होता है, कुछ नया सीखने का अवसर होता है और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की संभावना होती है। फिर क्यों ना हम सबसे पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे पास ही हैं। साथ ही अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे।

आ दैया गाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत देन चलैया जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूत सुहानी और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:27 दोस्तों, सुबह का समय अपने भीतर झांकने का भी समय है। जब संसार धीरे धीरे जाग रहा होता है तब कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताना मन को अद्भुत शांति देता है। प्रार्थना वो भावना है जिसमें हम अपने मन का बोझ हल्का करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेते हैं। आइए कुछ पल मन ही मन ईश्वर को याद करें।